0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज़ मांझा कभी ना अपनाए।
4: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल है। स्वागत है भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, यह हम सभी जानते हैं। कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी कदम कदम पर मुश्किलें सामने आती हैं, लेकिन जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है, रास्ता चाहे जैसा हो, सफर रुकना नहीं चाहिए। जीवन चलने का नाम है। ये सिर्फ एक गीत की पंक्ति नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक खूबसूरत पैगाम भी है। कभी थकान महसूस हो तो थोड़ा ठहर जाएं, लेकिन हार मत मानिए। कभी कोई सपना अधूरा रह जाए तो नया रास्ता तलाशिए, क्योंकि हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है, एक नई रोशनी लेकर आती है। याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सफर जारी रखते हैं। गिरना कोई हार नहीं, गिरकर फिर उठना ही असली हिम्मत है। तो चाहे सुबह हो या शाम, अपने ख्वाबों की तरफ एक कदम रोज बढ़ाते रहिए। कल क्या होगा इसकी फिक्र मत कीजिए, आज को पूरी ईमानदारी और मुस्कान के साथ जीना सीखिए, क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं चलते रहने का नाम है। चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सफर पर यकीन रखिए, कामयाबी जरूर मिलेगी।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है। हम इस दुनिया में आते हैं, कुछ रिश्ते बनाते हैं, कुछ यादें छोड़ जाते हैं और फिर एक दिन इस सफर से आगे निकल जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं आदमी मुसाफिर है। ये ख्याल हमें याद दिलाता है कि जिंदगी हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, इसलिए जो पल आज हमारे पास हैं उन्हें शिकायतों में नहीं मोहब्बत और मुस्कान में बिताइए। कभी हम मंजिल की तलाश में इतने बेचैन हो जाते हैं कि रास्ते की खूबसूरती देखना भूल जाते हैं। याद रखिए, असली जिंदगी सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि उस सफर में छुपी है जहां हमें लोग मिलते हैं, रिश्ते मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं और अनुभव हमारी दास्तान बन जाते हैं। इसलिए किसी से नाराजगी है तो आज ही दूर कर लीजिए, किसी को धन्यवाद कहना है तो देर मत कीजिए, और कोई सपना दिल में है तो उसकी तरफ एक कदम आज ही बढ़ाइए, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता। हम सब इस दुनिया के मुसाफिर हैं, आते हैं, कुछ पल ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। तो सफर छोटा हो या लंबा, इसे प्यार, अच्छाई और खुशियों से भर दीजिए इस नगमे की तरह।

रफ़ी साहब और लता जी की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फ़ेरोज़ को अब दीजिए बहुत सुहानी से इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी हमारी मुलाकात। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब हम आपको ये बताते हुए आगे बढ़ें कि इस सभा में हमारे साथ आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं।

अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं। छह बजकर 10 मिनट का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का, जिसे लेकर आपके बीच रहेंगी शीतल। और 6:44 पर आप सुनेंगे श्री राम चरित मानस गान, जिसमें आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 24 और इसे लेकर आपके दरमियान रहेंगी शीतल। छह 6:55 का वक्त रहेगा संस्कृत में समाचारों का और 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे।

0: 7:10 पर वक्त होगा गोल्ड सुप्रभात का। जिसे लेकर आपके बीच रहेंगी शीतल। और 7:30 पर आप सुनेंगे आज सवेरे। 8 बजे का समय होगा समाचार प्रभात का। और 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार मॉर्निंग न्यूज। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। 6 बजने वाले हैं, अब सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
2: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने 1 दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति

0: मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The nation celebrated its 80th Independence Day yesterday. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag from the ramparts of the Red Fort and made several important announcements. Addressing the nation, the Prime Minister said, over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
2: Koi bhi rashtra tab mahaan banta hai jab apne sapnon, apne sankalpon aur apne samarthya ke dam par aage badhta hai. Bade sapne हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Stressing on the empowerment of youth and women for a Viksit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign. Launched from the High Commission of India in Fiji, the relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. Union Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of a new dairy plant at the Alwar Saras Dairy Complex in Alwar, Rajasthan today. The Ministry of Cooperation informed that at the event, the e-foundation stone will be laid and various development works worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be e-inaugurated. Additionally, appointment letters will be distributed to more than 10,500 newly appointed personnel under the Rozgar Utsav. Vice President C.P. Radhakrishnan will be on a two-day visit to Tamil Nadu beginning today. During the visit, he will participate in a series of academic, commemorative and literary events in Chennai, Chengalpattu, Thiruvarur and Thanjavur. Today, Mr. Radhakrishnan will attend the 22nd convocation of the SRM Institute of Science and Technology in Chengalpattu. He will also attend the first death anniversary function of former Governor of Nagaland, Manipur and West Bengal in Chennai. National Testing Agency NTA will release the provisional answer keys for UGC NET June 2026, CSIR NET ICAR All India Entrance Examination for Admission and All India Competitive Examination for PhD programs today. In a social media post, NTA said the provisional answer keys will be published on its official website. It advised candidates to rely only on official communication from the NTA. Amrit Udyan will be open to the general public from today till the 15th of next month. Our correspondent reports the garden will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. It will remain closed on Mondays for maintenance. The Delhi government has extended the existing paper-based pink ticket facility for women passengers in Delhi Transport Corporation or DTC buses till the 31st of this month. A Transport Department order states that women eligible for free bus travel can continue to use paper-based pink tickets in DTC and Delhi cluster buses. In hockey, India defeated Wales 3-1 in a Group D match of the FIH Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands yesterday. And in men's cricket, India will resume their first innings at the overnight score of 288 for 2 against Sri Lanka on the second day of the first test at the Gale International Stadium today. Devdutt Padikkal remained unbeaten on 131, while Rishabh Pant was on 27 when the stumps were drawn yesterday evening. KL Rahul retired hurt on 77. The game was cut short to 73 overs due to two rain breaks yesterday. Earlier, India won the toss and opted to bat first. And that is the end of this news bulletin.

भीतर आती हर एक सांस से जीवन को नया विस्तार मिलता है और बाहर जाती सांस के साथ सारा तनाव और भार निकल जाता है। यही सांसों का आना जाना है जो हमारी इस जिंदगी का सबसे बड़ा आधार है। जब तक ये डोरी चल रही है तब तक ये पूरा संसार हमारा है, इसीलिए बस एक पल रुके, अपनी इन सांसों को महसूस

भूल जाते हैं तो सिर्फ इस श्वास के महत्व को। तो आइए एक बार फिर प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हुए उन्हें शुक्रिया अदा करें कि हम जिस चीज का ख्याल नहीं करते वो हर एक क्षण हर एक पल श्वास के जरिए हमें अपने होने का एहसास कराते रहते हैं।

वो परमपिता परमात्मा तो हम सभी के हृदय में पहले से मौजूद है, और जब कभी हम उसे महसूस करना चाहते हैं तो हमें बाहर से ध्यान हटाकर अंदर की तरफ मुड़ना होता है। लेकिन हम अक्सर न जाने बाहर के इन उलझनों में उलझे रहते हैं कि हमें ये लगता है कि बाहर से ही सारी चीज़ों की प्राप्ति होगी, परंतुतः हमें मुड़ना होता है। जीवन में जब हम हर कहीं से निराश होकर के ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य अब बाकी नहीं रहा, अब इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, तब ये आती जाती सांसें हमें एक बार फिर उस उद्देश्य को याद दिलाती हैं कि नहीं, अभी इस जीवन का बहुत बड़ा काम बाकी है। अपने इस जीवन में उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना, उन्हें इस जीवन में जीवित रहते हुए महसूस करना, हम उसी का अंश हैं। देखिए ना, हम याद रखें ना रखें, फिर भी ये श्वास निरंतरता से चल रही है। और

ये छोटी सी हवा जब इस शरीर से निकल जाती है तो यही शरीर रहता है, पर सब कुछ ठप, सब काम करना बंद। पर जब तक ये सांस आ रही है, जा रही है, पर क्या हम इस सांस के महत्व को समझ पाते हैं? नहीं ना, तो थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। सुबह सुबह इस दिन की शुरुआत में उस प्रभु को धन्यवाद करने की ज़रूरत है कि हमें अगर आपने सांस लेने की जिम्मेदारी दी होती तो शायद हम भूल जाते सांस लेना और न जाने कितने क्षणों में, कितने मिनटों में हम इस जीवन का अंत कर चुके होते। ये आप हैं जो हमारे लिए सांस को चलाते हैं। आइए उनका नाम लें, उनका ध्यान करें, उनको आभार व्यक्त करें।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
3: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

6:27 और 2 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है अर्पण, आज अर्पण में आपके साथ हूँ मैं शीतल। हमारे जीवन में हमारी चाह होती है कि हर क्षण हर एक पल हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होता रहे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हम चाहते हैं कि दिन यूं ही बना रहे, लेकिन रात का आना भी तय होता है। पर जैसे रात आती है उसका जाना भी तय होता है। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक आदमी एक विद्वान के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा बहुत प्रिय घोड़ा खो गया है। जो विद्वान होते हैं वो कहते हैं, चिंता मत करो, क्या तुम्हें लगता है ये बुरा है? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, ये तो बहुत बुरा है, क्योंकि मुझे वो अपना घोड़ा बहुत प्रिय था। तो विद्वान व्यक्ति कहता है कि चिंता मत करो, इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। कुछ हफ्तों के बाद वो घोड़ा उस मालिक के पास लौट आता है और अपने साथ

एक और बेहतरीन घोड़े को लेकर आता है। जब वो व्यक्ति देखता है कि मेरे पास अब एक नहीं दो घोड़े हैं, तो विद्वान के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि इसके पीछे कुछ अच्छाई छिपी है, कि वो खुद तो खोया लेकिन वापस आया तो मेरे पास एक और घोड़ा हो गया। विद्वान ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि ये बहुत अच्छी घटना है? उसने कहा, हाँ मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छी बात है, दोनों बहुत खूबसूरत घोड़े हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि हो सकता है ये समय ना रहे, बुरा कुछ हो। वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और कुछ दिनों के बाद उस घोड़े पर उसके बेटे को बिठाकर वो घुड़सवारी सिखा रहा था और उसका बेटा गिर जाता है और उसकी टांग बुरी तरह से टूट जाती है। वो व्यक्ति एक बार फिर उस विद्वान के पास पहुंचता है और कहता है कि घोड़े से गिरकर मेरे बेटे की टांग टूट गई है। विद्वान व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये अच्छी है या बुरी बात है? वो कहता है ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि मेरे बेटे की टांग जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से टूट गई है, बहुत दिन लगेंगे उसे ठीक होने में। वो कहते हैं चिंता मत करो, बुरा हुआ है तो कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा। अब कुछ दिनों में उस राज्य के ऊपर विदेशी शक्तियां आक्रमण कर देती हैं और राजा आदेश दे देता है कि जितने भी नौजवान हैं उन सबको सेना में आना ही होगा। ऐसे में उस घोड़े वाले का जो बच्चा है, बेटा है, वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तब वो उस विद्वान व्यक्ति के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि हाँ आपने कहा ये ठीक है, कि ये अच्छा रहा कि मेरे बच्चे के पैर में चोट लगी थी और वो युद्ध में नहीं गया। इसके साथ वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये अच्छी बात है? तो कहता है कि हाँ मुझे तो लगता है अच्छी बात है। तो कहता है कि इंतज़ार करो, हो सकता है ये समय भी बदले। बिल्कुल इसी तरह जब तक हम जीवित रहते हैं हमारे जीवन में भी ये क्रम यूं ही चलता रहता है। अगर आज हमारे जीवन में खुशियों भरा समय है तो हमें इस खुशियों भरे समय में बहुत ज़्यादा खोना नहीं है, तैयार रहना है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारी खुशियों में खलल डाल दे। वहीं अगर हमारे जीवन में दुख का समय चल रहा है तो वक्त बदलने वाला है और खुशियों का समय आने वाला है। तो याद रखें दुखों से ज़्यादा विचलित ना हो। इंतज़ार करें, ईश्वर हर आनंद को हमारे भीतर भरना चाहते हैं।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारे लिए या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक। क्या ये सच है? नहीं, जीवन में होने वाली चीजें तो बस हो रही हैं। ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम उन्हें सकारात्मक होकर के समझते हैं या नकारात्मक घटनाएं समझते हैं। जीवन में इन घटनाओं से हम अपने जीवन को एक नया मोड़ भी दे सकते हैं, नई सीख भी दे सकते हैं, और फिर चाहें तो इन बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के होने से हम अपने आप को बिना प्रभावित हुए भी एक तरफ रख सकते हैं, यानी सारा आधार हम हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम स्वयं को पीछे कर देते हैं और दूसरों को आगे कर देते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि सामने वाले को क्या पसंद है, हमें वो करना है। और एक अनुसंधान हुआ, जिस अनुसंधान में बहुत से लोगों ने अपने जीवन के अंतिम समय में ये बात स्वीकार की कि उन्होंने जीवन भर दूसरों की वैल्यू बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, दूसरों की अपने बारे में जो राय थी उसको ज़्यादा वैल्यू दी, अपने आप को कम। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है, हमें नहीं पता कि हमारे जीवन का कौन सा क्षण अंतिम होने वाला है। अपने आप को सबसे पहले रखिए। अपने आप को पहले रखने का अर्थ ये नहीं कि हम स्वार्थी बन जाएं। अपने आप को पहले रखने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को पहचान पाएं कि हम क्या हैं, ये जीवन हमें किस लिए मिला है।

6:44 और 17 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये वक्त है रामचरितमानस से पाठ का, आइए सुनते हैं।

अपने स्वामी के साथ रहकर वन प्रवास के सारे कष्ट सीता जी की कल्पना में उस पीड़ा से कम दुखदायी होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी। यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहलों का भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पति वियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी की विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठपूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़ देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी। अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ठीक 7:10 पर आपका और हमारा साथ होगा गोल्ड सुप्रभात में। आज अर्पण यहीं तक, आप सुनिए संस्कृत में समाचार।

0: विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थायाः द्वाविंशतितम दीक्षांत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। सः चेन्नई नगरे नागालैंड मणिपुर पश्चिम बंगाल राज्यानां पूर्व राज्यपालस्य प्रथम पुण्यतिथेः कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। ततः परं उपराष्ट्रपतिः चेन्नई नगरे इकोज ऑफ अ नेशनलिस्ट माइंड इति पुस्तकस्य विमोचन कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली परिवहन निगमस्य बसयानेषु महिला यात्रिणां कृते प्रचलितायाः कागद निर्मित पाटल चटिका व्यवस्थायाः अवधि अस्य मासस्य 31 दिनांक पर्यन्तं विस्तृतः अस्ति। परिवहन विभागस्य आदेशानुसारं निःशुल्क बसयात्रायै महिलाः डीटीसी अथ दिल्ली क्लस्टर इत्येतयोः बसयानेषु कागद निर्मित पाटल चटिकायाः उपयोगं निरन्तरं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रथमवारं आयोजिता सूर्यपथ त्रिरंग वैश्विक यात्रा ह्यः सम्पन्ना। इयं यात्रा पश्चिमदिशि फिजी देशादारभ्य संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यन्तं 45 देशेषु बहुषु च कालक्षेत्रेषु सम्पन्ना। अमृतोद्यानम् अद्यारभ्य आगामि मासस्य 15 दिनांक पर्यन्तं सामान्य जनेभ्यः उद्घाटितं भविष्यति। अस्माकं वार्ताहरानुसारं उद्यानं प्रातः 10 सायं 6 पर्यन्तं उद्घाटितं भविष्यति। अन्तिम प्रवेशः सायं 5 पर्यन्तमेव भविष्यति। अनुरक्षणकार्याय उद्यानं प्रत्येकं सोमवासरे पिधानं भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमरीका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव

0: मनाया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार निःशुल्क बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। यह योजना आज से लागू हो गई है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुई हवाई हमलों की वीडियो इस बात का प्रमाण है। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। वर्षा के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का ही हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: Stressing on empowerment of youth and women for a Viksit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west across 54 countries and multiple time zones. External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign. Launched from the High Commission of India in Fiji, the relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. Union Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of new dairy plant at the Alwar Saras Dairy Complex in Alwar, Rajasthan today. The Ministry of Cooperation informed that at the event, the e-foundation stone will be laid and various development works worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be e-inaugurated. Vice President C.P. Radhakrishnan will be on a two-day visit to Tamil Nadu beginning today. During the visit, he will participate in a series of academic, commemorative and literary events in Chennai, Chengalpattu, Tiruvarur and Tanjavur. Today, Mr. Radhakrishnan will attend the 22nd convocation of the SRM Institute of Science and Technology in Chengalpattu. He will also attend the first death anniversary function of former Governor

रविवार की मीठी धूप और सुहानी सी ये भोर, चिड़ियों की चहकार गूंजे फिजाओं में है शोर। सपनों से आंख खुली तो चेहरे पर मुस्कान आई, लगता है आज कुदरत ने फिर कोई एक नई सौगात हिलाई। चाय की गर्म प्याली और खिड़की से आती हवा सप्ताह भर की थकान मिटा दे, ऐसा इसका जादू नया। न भागने की जल्दी है न कोई फिक्र का साया, सुकून के इन पलों ने जैसे सारा जहां है सजाया। हर सांस में घुली है देखो एक अनोखी सी रवानी, रविवार की सुबह ने क्या खूब है बात कही कि हंसते गाते बीत जाए दिन, ये प्यार भरा सारा दिल से यही दुआ निकले। हर दिन हो ऐसा ही प्यारा और हम यही चाहते हैं कि दिन रात सुबह शाम बहुत ही खूबसूरत रहे और हमारी जिंदगी यूं ही मुस्कुराती रहे, खिलखिलाती रहे और हम आपके साथ यूं ही बने रहें। हम हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर जिसे आप सुन रहे हैं और ये वक्त है गोल्ड सुप्रभात का। गोल्ड सुप्रभात में आज आपके साथ हूं मैं शीतल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारी सी सुबह में, इस प्यारी सी जिंदगी में और आज थोड़े से अलसाए से रविवार में। हालांकि बहुत से लोगों को काम पे जाना होता है, बहुत से लोग आज के दिन और दिनों के मुकाबले ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे थोड़ा सा वक्त अपनी मोहब्बत के लिए भी निकाल के रखिए।

हमें लगता है कि चैन जो है वो कहीं बाहर से मिलने वाला है। जी नहीं, चैन की अगर हमें ज़रूरत है तो वो हमें हमारे दिल से मिलने वाला है। लेकिन इस बाहरी चैन का क्या करें, जो कभी गर्मी है, कभी पसीना है, बरसात है, और कभी कभी आजकल हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा अलग सिचुएशन है कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या करना चाहिए। तो ज़रूरत ये है कि मौसम के अनुसार तैयारी पूरी रखनी चाहिए। घर से बाहर जाएं तो छाता ज़रूर लेकर के जाएं, और कोशिश करें कि चश्मा भी ज़रूर रख लें, क्योंकि बारिश की मर्जी है, हो ना हो सकता है बहुत तेज़ धूप आ जाए। साथ ही कोशिश करें कि ऐसे में अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखें। मौसम की अगर बात करें तो आज का तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास की उम्मीद जताई जा रही है, और बारिश भी हो ही सकती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि घर से अगर बाहर जा रहे हैं तो तैयारी में निकलें, और अगर घर में रह कर के आप कुछ खास करना चाहते हैं तो उस खास को करने के लिए ज़रूरत है कि आप थोड़ी सी योजना बना लें, थोड़ी सी प्लानिंग कर लें कि क्या खास आप कर सकते हैं।

7:19 हुए हैं। कल ही हमने अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मनाया और इस स्वतंत्रता दिवस में ख़ास बात ये थी कि हमने 9 तारीख से लेकर 27 तारीख तक जो एक प्रण लिया है हर घर तिरंगा अभियान का, उसके लिए हम सभी तिरंगा.com पर अपनी तिरंगे के साथ फ़ोटो अपलोड भी कर रहे होंगे, घर घर, गांव गांव, जगह जगह। ऐसे में हम ये ज़रूर ख्याल रखें कि इस बीच तिरंगे का हम जो है अपमान ना करें। हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना है। कितनी कड़ी मेहनत के बाद ये तिरंगा हम सबको मिला है। हम जानते हैं कि तिरंगा फहराने के भी अपने नियम हैं और इन सारे नियमों का हमें पालन करना है, और अगर हम इन सारे कानून और नियमों को नज़रअंदाज करते हैं तो तिरंगे का अपमान करने के आधार पर हमें बहुत सी सज़ाएं जो है वो भुगतनी पड़ सकती हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि हम अपने देश के झंडे का सम्मान करें, और ख़ास तौर से जब हम अपने झंडे को फहरा रहे हैं तो ध्यान रखें कि झंडा वही होना चाहिए जो लिखित है, कानून में दिया हुआ है। और हम देखते हैं हरा, सफ़ेद और केसरिया, बीच में नीले रंग का 24 तीलियों वाला चक्र, यही वो एक आदर्श झंडा है जो हम फहराएं। साथ ही में जब हम देखें कि हमारा तिरंगा अगर फट जाए या मैला हो जाए या हम उसे उपयोग न कर रहे हों तो हमें क्या करना है। हम भारतीय ध्वज संहिता में दिए हुए 2 तरीकों से इसका हम सम्मान पूर्वक जो है उपाय कर सकते हैं। पहला है भू समाधि यानी बरिंग। किसी साफ और पवित्र स्थान पर जमीन में गड्ढा खोदें, तिरंगे को से सम्मान फोल्ड करें और साफ सफ़ेद कपड़े में इसे लपेट दें और पूरे सम्मान के साथ इसे मिट्टी में दबा दें, और बिल्कुल ऐसे जैसे किसी सम्मानित व्यक्ति को अंतिम विदाई दी जा सकती है। दूसरा तरीका है अग्नि संस्कार यानी बर्निंग का। बर्निंग स्वच्छ और एकांत स्थान पर हमें करनी चाहिए। पवित्र अग्नि जलाकर तिरंगे को पूरे सम्मान और आदर और मौन के साथ अग्नि को समर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे ध्वज को कभी भी आपत्तिजनक तरीके से आग में नहीं फेंका जाता। अग्नि प्रज्वलित कर सम्मान पूर्वक अग्नि के बीच में बिल्कुल मध्य में रखें, और पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें गरिमा बनाए रखनी होती है। तो जिस तिरंगे को हम जितने सम्मान के साथ लहराते हैं उतने ही गौरव और सम्मान के साथ हमें उसे विदा भी करना चाहिए। देश की जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है, और हमें क्या करना है, हमें इस देश को प्रेम से, प्यार से भरना है।

जिंदगी में अगर सबसे खूबसूरत कुछ है तो वो यही है कि हम अपने जीवन में किसी के लिए एक ऐसा कंधा बन पाएं जहां वो अपने जीवन के दुख दर्द और खामियों को पूर्ण समझ पाए। और जिंदगी में सबसे खूबसूरत यही होता है कि आप

किसी के लिए अपने बन पाएं। प्यारी सी सुबह, प्यारा सा दिन और हमारी ढेर सारे शुभकामनाएं कि ये दिन यूं ही खूबसूरती से आपके जीवन में खुशियां भरता रहे। गोल्ड सुप्रभात का ये पड़ाव जो कह रहा है कि अब इजाजत लेने का वक्त है, लेकिन याद रखिएगा कि गोल्ड सुप्रभात हर दिन आता है, लेकिन हर दिन अपने जैसा विशेष। और आज के दिन की विशेषता यही रही कि हम आपस में प्यार की बात करें, मोहब्बत की बातें करें और अपने साथ भी थोड़ा सा वक्त बिताएं। ठीक 7:30 बजे आप सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। और अब गोल्ड सुप्रभात से मैं शीतल चाहती हूँ इजाजत। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। कल देश भर में यौम आजादी का जश्न मनाया गया और सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज की हसीन सुबह ने फिर हमें याद किया। और लीजिए हाजिर हैं हम लेकर आपका अपना कार्यक्रम आज सवेरे। क्यों सायरा?
1: बिल्कुल नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे। और ज्यादा फ्रेश लग रहा है क्योंकि कल ही आपने कहा ना जश्न आजादी हम लोग ने मनाई एंड ऑफ कोर्स वी आर हियर अगेन ऑन संडे टू गिव यू द परफेक्ट स्टार्ट टू योर डे। एंड ऑफ कोर्स सिंस इट्स अ संडे सो प्रोबब्ली यू आर नॉट रशिंग टू योर वर्क बल्कि आराम से आप अपने पार्टनर के साथ फैमिली के साथ चाय पीते हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे,
0: खाते हुए आप अपना प्रोग्राम सुन सकते हैं।
1: दैट्स राइट एंड यस एज ऑलवेज वी ब्रिंग यू पॉपरे ऑफ न्यूज एंड ऑफ कोर्स इन आवर मेट्रो न्यूज सेक्शन वी विल गिव यू न्यूज फ्रॉम योर वेरी ओन सिटी। वी विल गिव यू अ वेदर अपडेट ताकि आपको पता लगे कि आज आपको छाता लेके निकलना है कि नहीं, क्योंकि दो ही सूरतें हो सकती है, मानसून में या तो बारिश थोड़ी होगी या बहुत
0: उमस है सारा। दो दिन से बहुत उमस है, बारिश जरूरी है।
1: दैट्स राइट बट अच्छा हुआ कल नहीं हुई बारिश बिकॉज एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया द होल रिचुअल ऑफ काइट फ्लाइंग ऑन।
0: बिल्कुल बहुत सारे बच्चे जो है वो अपनी छतों पर मुझे दिखाई दिए कि पतंगे बहुत प्यारी प्यारी रंगीन पतंगे जो है वो आसमान में लहरा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था।
1: तो अच्छी बात है कल बारिश नहीं हुई और लोग अपना अच्छे से उन्होंने जश्न आजादी मनाया। So well, let's start with the headlines first, Farhat.
0: जी सायरा, सबसे पहले आपके पास क्या है?
1: Well, let's begin with a beautiful place in the heart of the national capital. We are talking about Amrit Udyan at Rashtrapati Bhavan. It will be open to the general public from today till the 15th of next month. The garden will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. It will remain closed on Mondays for maintenance. We have a report for more details.
2: The garden trail will cover several attractions including Balvatika, Plumeria Garden, Banyan Grove, Bonsai Garden, Babbling Brooks, Central Lawn, Long Garden and Circular Garden. Indigenous and native flowering plants known for their vibrant colors and ecological significance are a major attraction of the summer annual edition. The indigenous collection includes Balsam, Gulmehndi, Aparajita, Kulfa, Rukmini, Barsha Phool, Morshikha, Dubaria, Lal Sag, Kalihari and Nagfan. Showcasing India's rich floral heritage and enhancing the biodiversity of the gardens. Entry to Amrit Udyan is free for all visitors. However, visitors are required to book their slots online through the Rashtrapati Bhavan website. No on-the-spot booking facility will be available. For the convenience of the visitors, drinking water stalls, first aid posts, rain shelters and restrooms will be provided along the visitor route. A shuttle bus service will also be available between Central Secretariat, Metro Station and the entry point to Amrit Udyan. This service will operate at intervals of 30 minutes from 9:30 a.m. to 6 p.m. with Sakleen Akhtar, Nitika Gupta, Akashwani News, Delhi.
0: और अब सायरा फूलों की खूबसूरती से निकलते हैं और चलते हैं सिनेमा की दुनिया में जहां देशभक्ति की कहानियां बड़े पर्दे पर लोगों तक पहुंच रही हैं। मुंबई में 3 दिवसीय पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल हर घर तिरंगा आज समाप्त होगा। इसका आयोजन

0: झारखंड नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा ने दादा साहेब फाल्के चितनगिरी के साथ मिलकर किया था और इस फेस्टिवल के जरिए आजादी की लड़ाई, देशभक्ति और भारत की विरासत को फिल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आज फेस्टिवल के आखिरी दिन भारत के इतिहास की बात होगी, देश प्रेम की बात होगी और फ्रीडम स्ट्रगल में दिए गए बलिदानों पर आधारित फिल्मों की स्क्रीनिंग भी होगी। खास बात इसमें ये है कि सभी स्क्रीनिंग्स के लिए एंट्री फ्री है और आम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य खास तौर पर यंग जनरेशन को यानी यूथ को सिनेमा के जरिए देश की संस्कृति से पहचान करवाना है। देशभक्ति की बात हो और तिरंगे का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और अब चलते हैं उस यूनिक ग्लोबल जर्नी की ओर जिसने तिरंगे को दुनिया के अलग अलग टाइम जोन से जोड़ा।
1: Yes, of course, Farhad, the first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west across 54 countries and multiple time zones. The External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign. Launched from the High Commission of India in Fiji, the relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. The relay ended with the flag hoisting by the Consulate General of India in San Francisco. The relay witnessed overwhelming participation and response from the members of the diaspora, underscoring the deep emotional connect with the Tiranga.
0: बिल्कुल सारा, और यही भाव देखने को मिला कल देश के अलग अलग हिस्सों में भी। और रुख करते हैं करगिल का, जहां आकाशवाणी करगिल ने कल बारू परिसर में उत्साह के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। कार्यालय प्रमुख अभियंता जमुना प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह में अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवारजन और आसपास के क्षेत्रों के बच्चे उत्साह पूर्वक शामिल हुए। और अपने संबोधन में जमुना प्रसाद ने उन वीरों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को याद किया और कहा कि अहिंसा बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने का प्रभावी माध्यम हो सकती है। आकाशवाणी करगिल और इसके केंद्रों पर आयोजित समारोह में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के बाद देश की विकास यात्रा पर गर्व की भावना देखने को मिली। देश के बाद से अब थोड़ा ध्यान देते हैं शिक्षा पर, खासकर उन उम्मीदवारों की तरफ जो अपने एग्जाम रिजल्ट और आंसर कीज का इंतजार कर रहे हैं।
1: An important update. The National Testing Agency NTA will release the provisional answer keys for UGC NET June 2026, CSIR NET, ICAR All India Entrance Examination for Admission and All India Competitive Examination for PhD programs today. The NTA said that the provisional answer keys will be published on its website. It advised candidates to rely only on official communication from NTA.
0: और वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के तहत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। ये योजना आज से लागू हो गई है। इसके तहत घोषणा दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है। इसके बाद कोई घोषणा दाखिल नहीं की जा सकेगी। ये एक बार की स्वैच्छिक घोषणा की योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। आयकर विभाग ने योजना को समझने में करदाताओं की मदद के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल भी इसमें जारी किए हैं।
1: And the government has debunked a video being circulated on social media by Pakistani propaganda accounts, which claimed that an Indian Mi-17 helicopter was shot down by the Pakistani army near Budgam. The fact-check unit of the Press Information Bureau has informed that the claim is fake. PIB further urged the citizens to stay alert and rely only on official sources for verified information.
0: सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रुपए के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और अमेज़न से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा बिल्कुल फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है।
1: And the Department of Telecommunications, DOT, will organize the BRICS Information and Communication Technologies Track in Pune from tomorrow till the 21st of this month. The event will be organized under the theme Innovate, Cooperate and Transform ICT for a Resilient Future. The program will commence with 7th BRICS ICT Working Group meeting where delegates will deliberate on key priority areas.
0: और सारा, अब क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत आज गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट

0: के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे बढ़ाएगा। कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त पड्डीकल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। केएल राहुल 77 रन पर रिटायर्ड हुए। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका और इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले सारा से जान लेते हैं चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरें।
1: थैंक्स फॉर लेट्स स्टार्ट विद शहर चेन्नई। द तमिलनाडु साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर इन द सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ मैथ एंड साइंस टेस्ट टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 9 फ्रॉम अक्रॉस बोर्ड्स। द टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 4th of October फॉर मैथ एंड 11th फॉर साइंस। Each exam will have 100 questions without negative marking and will be held offline at designated exam centers. The top scorer will get a cash prize of 3,000 rupees followed by 2,000 each for two students securing the second place. The third place will be awarded to three students who get 1,000 rupees each, and the fourth place will be awarded to five students with 500 rupees each. Interested candidates can apply on or before 10th of September by paying a fee of 100 rupees per exam. Another news related to students coming in from Chennai. Over 100 students of government model schools across the state presented indigenous cum traditional music and percussion instruments used by ancient Tamils and martial arts equipment, including various forms of silambam, at the Student Artist Confluence at Victoria Hall in the city. The two-day event provided a platform for students and traditional artists to showcase the state's rich cultural heritage. Moving on to Bengaluru, Southwestern Railway reported major progress in safety, infrastructure and passenger services from January to July this year. According to the Southwestern Railway General Manager P. Anand, the standard anti-collusion kavach was installed on 220 kilometers of routes, while 157 kilometers of tracks were renewed and 83 kilometers of new tracks were added. He said that train punctuality improved by over 88%. The zone recorded 5,531 crore rupees in revenue. RPF also seized drugs worth over 3 crore rupees, recovered lost belongings worth 2.41 crore rupees and rescued 340 children and 23 vulnerable adults. Moving on to Hyderabad, Chief Minister Revanth Reddy distributed smart ration cards at a program held at Ambedkar Stadium in Sangareddy yesterday. Speaking on the occasion, the Chief Minister said that ration cards are a symbol of dignity for poor families and assured that the government would ensure that no poor person goes hungry. The Chief Minister highlighted government schemes, including fine rice for poor families, 24-hour free power for farmers, 36,000 crore rupees under Raitu Bharosa and a rupees 500 bonus for fine paddy. He said that farm loans up to 2 lakh rupees had been waived at a cost of 21,000 crore rupees. So Farhad, this was the latest that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the buzz from Delhi, Mumbai and Kolkata?
0: दिल्ली में हम बता दें आपको सारा कि जो महिलाएं बसों में सफ़र करती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। वहीं राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 86वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ी, पूर्व सांसद, प्रसिद्ध फिटनेस कोच और हजारों शहरवासी साइकिलिंग के जरिए फिटनेस का संदेश देंगे इसमें। और अब महाराष्ट्र का रुख करें तो महाराष्ट्र सरकार ने महा डीबीटी पोर्टल पर 29 नई योजनाएं जोड़ी हैं, जिससे कुल योजनाओं की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी योजनाओं को इस डिजिटल मंच पर लाया जाएगा ताकि लोगों को सरकारी लाभ आसानी से मिल सके। और अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी आज शाम करीब 4 बजे कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ करेंगे। सभी जिले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जुड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया था। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्ज्वल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। आकाशवाणी कोलकाता के माध्यम से कल सुबह अपने संबोधन में श्री अधिकारी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक

0: शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपना बलिदान देकर भारत की स्वतंत्रता को संभव बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। सारा, आपने शुरुआत में ही बता दिया कि आज हम बताएंगे मौसम, कि आपको बाहर का प्लान कैसे करना होगा। अगर बारिश होगी तो छाता लेकर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तो हम आपको बता दें। तो दिल्ली में तो बारिश का दौर नहीं है वैसे। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा और दो दिन और आपको उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं मुंबई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी बारिश का दौर रहेगा और कहीं कहीं कुछ जगह पर बौछारें पड़ सकती हैं हल्की। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: वेल, चेन्नई विल हैव सम रेन, बट आप बिना छाते के निकल सकते हैं क्योंकि वो शायद रात में होगी। सो यस, चेन्नई विल लाइकली विटनेस थंडर शावर्स दैट वुड अकर टुवर्ड्स लेट इवनिंग और नाइट। द टेम्परेचर्स इन चेन्नई आर एक्सपेक्टेड टू हॉवर बिटवीन 26 एंड 36 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल हैव अ क्लाउडी स्काई टुडे विद सम लाइट रेन एक्सपेक्टेड टुडे। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस वाइल मैक्सिमम मे रीच 29 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद will likely see a partly cloudy sky with possibility of thunder lightning today and temperatures in Hyderabad will hover between 23 and 31 degrees Celsius.
0: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 16 अगस्त 2026।
1: That's right. And if we remember some of the important events that happened on this day, well, let's take the listeners to the year 1858. अगर आपको याद होगा जो टेलीग्राफ का जमाना था, तो well, actually Queen Victoria sent the first official transatlantic telegraph message to US President James Buchanan, inaugurating a revolutionary era of intercontinental communication. This happened on this day, that is 16th of August in 1858.
0: जी सर, और 1930 की अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध अमेरिकी एनिमेटर यूब इक्वर्स द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली रंगीन और ध्वनि युक्त कार्टून फिल्म फिडलस्टिक्स आधिकारिक तौर पर रिलीज हुई थी।
1: On this day, 1954, Time Inc. published the very first issue of Sports Illustrated magazine in the United States, which quickly grew into a global sports journalism institution.
0: 1960 में साइप्रस ने दशकों के ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के बाद अपनी आधिकारिक स्वतंत्रता की घोषणा की और एक संप्रभु गणराज्य बना।
1: Also on this day in 2008, the Trump International Hotel and Towers in Chicago, they were topped off at 1,389 feet. Making it the world's highest completed residential building above ground level at the time.
0: और सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए कांगो में तैनात 125 भारतीय पुलिस अधिकारियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्रीय शांति पदक यानी UN पीस मेडल से सम्मानित किया गया था।
1: And for it now, if we remember some of the personalities who either have their birth or death anniversaries or birthdays, so who's the first on the list?
0: सबसे पहले हम याद कर रहे हैं हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान को। इनके दो कविता संग्रह और तीन कथा संग्रह प्रकाशित हुए और इनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण हुई। सुभद्रा जी राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रहीं, लेकिन इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में व्यक्त किया। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल और काव्यात्मक रही, इस कारण उनकी रचना की सादगी काफी हृदय को छू जाने वाली थी। और आपको ये झांसी की रानी पर जो उन्होंने कविता लिखी वो तो याद ही होगा, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
1: एंड वेल, वी आर रिमेम्बरिंग अ वेरी यू नो अकॉम्प्लिश्ड एडिटर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। टुडे इज रेनू सलूजा'स डेथ एनिवर्सरी एंड देयर आर वेरी फ्यू female editors in the industry for her and at that time especially you know in 80s and 90s she worked with both mainstream and also parallel cinema art house cinema directors including Govind Nihalani, Vidhu Vinod Chopra, Sudhir Mishra, Shekhar Kapoor, Mahesh Bhatt and Vijay Singh. Her work encompassed multiple feature films, documentaries, short films and television series as well. She was a four-time winner of the National Film Award for Best Editing for Parinda movie, even for Dharvi, Sardar and Godmother, and won the Filmfare Award for Best Editing for Parinda and 1942 A Love Story in 1994. We have a beautiful song from the film Parinda. Nalanda. Let's listen.

0: और सारा राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाला और उनका पहला कार्यकाल वर्ष 1996 में मात्र 13 दिनों का था। और उन्हें कविताएं लिखने का भी बेहद शौक था। बहुत सारी उनकी कविताएं हैं जो काफी लोकप्रिय रही। उसमें एक और बहुत ही प्यारी सी कविता थी, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था। रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, लो लगा जिंदगी से बड़ी हो गई।
1: क्या बात है। एंड वेल, वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ मैडोना टुडे। शी टर्न्स, वेल, शी वाज बोर्न इन 58। शी डजंट लुक दैट, यू कैन से ओल्ड तो कहना, इट्स जस्ट अ नंबर, बिकॉज योर एटीट्यूड डिफाइंस वेदर यू आर यंग और ओल्ड, व्हाटएवर योर एज माइट बी।
0: हाँ, कुछ लोगों की उम्र जो है मुझे लगता है रुक जाती है, तो उसमें से ये मैडोना जी हैं।
1: एब्सोल्युटली डब्ड एज द क्वीन ऑफ पॉप, शी इज नोन फॉर हर कंटिन्यूअल रीइन्वेंशन एंड वर्सटिलिटी इन म्यूजिक प्रोडक्शन, सॉन्ग राइटिंग एंड विजुअल प्रेजेंटेशन। हर वर्क्स व्हिच कंसर्न सोशल, पॉलिटिकल, इवन रिलीजियस थीम्स हैव जनरेटेड बोथ कंट्रोवर्सी एंड क्रिटिकल अक्लेम। रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल म्यूजिशियंस ऑफ ऑल टाइम, मैडोना ब्रोक जेंडर बैरियर्स इन पॉप म्यूजिक एंड हैज हैड अ सिग्निफिकेंट सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट अक्रॉस हर career. And everyone from the team of Arts Avery wishes Madonna a happy birthday. Let's listen to

0: चुराना। और सारा 1997 में डेविड और गोविंदा की जोड़ी ने दो सुपरहिट फिल्में यानी दीवाना मस्ताना और हीरो नंबर वन दी थी। और वहीं उसी साल डेविड की सभी फिल्में, हीरो नंबर वन हो, बनारसी बाबू, जुड़वा, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, काफी हिट रही थी।
1: दैट्स राइट। एंड इफ यू रिमेम्बर, इनफैक्ट बड़े मियां छोटे मियां भी एक फिल्म आई थी
0: अमिताभ बच्चन के साथ।
1: यस, सो लेट्स लिसन अ सॉन्ग फ्रॉम दैट फिल्म।

0: और आइए अब आगे बढ़ते हैं. आज है भारतीय अभिनेता सैफ अली खान का भी जन्मदिन.
1: यस, सैफ अली खान द नवाब साहब ऑफ द पठौली फैमिली. टुडे इज हिज बर्थडे एंड वेल ऑफ कोर्स ही हैज एक्टेड. अगर देखा जाए यू नो हिज करियर हैज रेंज्ड आज तक कि वो आ रहे हैं सेलुलॉइड पे. एंड इफ यू रिमेम्बर वो जो कुमार शानू वाला दौर था तब भी
0: 90 वाला जो दौर था ना yes. उसके जो गाने फेमस हुए मुझे लगता है वो हर जगह सुनाई देते थे. फिल्म आशिक वारा जो है आई उनकी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया.
1: That's right. And Saif Ali Khan has won several awards, including a National Film Award and 7 Filmfare Awards. He has also received the Padma Shri. And he made his acting debut in Parampara that came in 1993, but had success in multi-starers like Ye Dil Lagi, Main Khiladi Tu Anadi, Kacche Dhaage and Hum Saath Saath Hain. And in the 2000s, he gained praise and won multiple awards for his roles in romantic comedy. Like Dil Chahta Hai, Kal Ho Na Ho, and also had success as a solo male star in many romantic films like Hum Tum, Parineeta, Salam Namaste. And well, hum log ne ek medley prepare ki hai for her, in which we have probably, you know, have some songs from that era, jo Kumar Shanu ne unke liye gaye the, till this era.

0: और इसके अलावा सारा उनकी सलाम नमस्ते ओमकारा तारा रमपम लव आजकल बहुत सारी जो है ये फिल्में थीं जो काफी हिट रही.
1: That's right. Even cocktail भी लोगों को काफी याद रहेगी. And of course some action films like तानहाजी they were one of the highest grossing releases of 2020.
0: और सन 2007 में उनकी हिंदी ड्रामा फिल्म ओमकारा के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी मिला था.
1: That's right. And with that Farhat it's time to call a wrap. इसी के साथ दीजिए इजाजत फरहत एंड सायरा को नमस्कार.

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
3: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान

0: ध्यान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खेले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
0: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गाँव गाँव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती हैं, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
3: JPSC JSSC आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम

0: कार्यक्रम अल्बर्ट एक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियों भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी

0: A first-of-its-kind campaign involving Indian missions in over 50 countries concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों से पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन के निफाज की हिमायत करने की अपील की है, ताकि भारत की पॉलिसी साजी में ख्वातीन के तआवुन को मजबूत किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया है, ताकि उनके कुनबों पर माली बोझ कम हो सके। अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। सूर्य पर तिरंगा, जो अपनी नवीयत की पहली मुहिम है और जिसमें 50 से ज्यादा भारतीय सिफारती मिशन शामिल थे, सान फ्रांसिस्को में इख्तिताम पजीर हुई। हुकूमत ने छोटे टैक्स दहिंदगान के लिए गैर मुल्की असासों के इंकशाफ की स्कीम शुरू की है। और शतरंज में आलमी नंबर 1 मैगनस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का एजाज बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मुल्क ने कल अपना 80वां योम आज़ादी मनाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से कौमी परचम लहराया और कई अहम ऐलानात किए। कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने पुख्ता अज़्म और लगन के जरिए मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की।
2: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने ऐलान किया कि गरीब और मुतवसित तबके के खानदानों से ताल्लुक रखने वाले तलबा को मुख्तलिफ सरकारी मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम की जाएगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हुकूमत ने अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI की महारत की तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीब और मुतवसित तबके के कुनबों से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। मुल्क के नाम अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि इस इकदाम का मकसद मुसाबकती इम्तिहानात के लिए तैयारी करने वाले उम्मीदवारों पर बड़े पैमाने पर मालियाती बोझ को कम करना है। उन्होंने कहा कि इस कदम से मुतवसित तबके के कुनबे को कोचिंग क्लासों में हजारों करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI से हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से नौजवान आलमी AI शोबे में कायदाना रोल अदा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को 3 चीज़ों, लागत, मेयार और हुनर पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है।
2: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: वज़ीर आज़म ने कहा कि आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि साल 2030 में भारत दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों पर जोर दिया है कि वो इसे सियासी मसला मनाए बगैर पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन के नफाज की हिमायत करें। यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तमाम पार्टियों से कहा

0: कि वह आगे बढ़कर ख्वातीन का एहतराम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्क की ख्वातीन को कानून साज असेंबलियों और लोकसभा में जल्द से जल्द 33% नुमाइंदगी हासिल हो। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को भारत की पॉलिसी साजी में अपना किरदार अदा करने का मौका दिया जाना चाहिए।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: अपनी नौईयत की पहली सूर्य पथ तिरंगा ग्लोबल रिले कल इख्तिताम पजीर हुई। इस रिले ने मशरिक में वाकई मुल्क फिजी से मगरिब में अमरीका तक का सफर मुकम्मल किया और इस दौरान 54 ममालिक और मुख्तलिफ टाइम जोन्स का इहाता किया। वजारत खारजा ने बताया कि सूर्य पथ तिरंगा मुहिम को हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मनाया गया। फिजी में भारतीय हाई कमीशन ने शुरू होने वाले इस रिले में तिरंगे के जज्बे को एक तुलय आफ्ताब से दूसरे तुलय आफ्ताब तक पहुंचाया गया। इसके जरिए दुनिया भर में मौजूद भारतीय बिरादरी और भारत के दोस्तों को एक साथ जोड़ा गया। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में वाक़ अलवर सार्स डेयरी कॉम्प्लेक्स में एक नए डेयरी प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस मौके पर राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से संग बुनियाद रखा जाएगा और इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से ज्यादा नई तकरीरी पाने वाले अफराद को तकरीरनामे भी सौंपे जाएंगे। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने छोटे टैक्स दहिंदगान के गैर मुल्की असासों के इनकशाफ से मुतालिक स्कीम के जवाबी 2026 को नोटिफाई किया है। ये स्कीम आज से नाफिजुल अमल होगी। इस स्कीम के तहत ऐलान नामा जमा कराने की आखिरी तारीख इस साल 31 दिसंबर है। इस तारीख के बाद कोई भी ऐलान नामा दाखिल नहीं किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: छोटे टैक्स दहिंदगान के गैर मुल्की असासों के इनकशाफ से मुतालिक स्कीम 2026 के मालियाती एक्ट के चौथे बाब में शामिल एक बार रजाकाराना इनकशाफ की स्कीम के तहत टैक्स दहिंदगान मखसूस टैक्स या फीस अदा करके ऐसे असासों, गैर मुल्की आमदनी या गैर मुल्की असासों के बारे में बता सकते हैं जिनकी मालूमात का पहले इनकशाफ नहीं किया गया है। इनकम टैक्स महकमे ने टैक्स दहिंदगान की बेदारी में इजाफा करने और इस स्कीम को बेहतर तरीके से समझने में आसानी पैदा करने के लिए अपनी मुसलसल कोशिशों के हिस्से के तौर पर एक जामे FAQ दस्तावेज जारी की है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: मुल्क आज साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा वाजपेयी ने 2018 में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। वाजपेयी 3 मरतबा भारत के वजीर आजम रहे। उनकी पहली मुद्दत कार 1996 में सिर्फ 13 दिन की थी। दूसरी मरतबा उन्होंने 1998 से 1999 तक 11 माह के लिए वजीर आजम की हैसियत से खिदमात अंजाम दी, जबकि 1999 से सन 2004 तक उन्होंने मुकम्मल मुद्दत कार पूरी की। उन्हें 2015 में भारत के आला तरीन सिविल एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। कौमी राजधानी में वाकई उनकी यादगार सदैव अटल पर अहम शख्सियात साबिक वजीर आजम को गुलहाय अकीदत नजर करके खराज अकीदत पेश करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को कौमी राजधानी में वाकई उनके मेमोरियल सदैव अटल पर गुलहाय अकीदत नजर किए। इस मौके पर साबिक सदर रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, दिल्ली की वजीर रेखा गुप्ता और बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन भी मौजूद थे। झारखंड में JPSC JSSC उम्मीदवारों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा ने मुबीना बेजाबतियों के खिलाफ एहतजाज के ताज़ा प्रोग्रामों का ऐलान किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: एहतजाज के अगले मरहले के तौर पर तलबा लीडरों ने ऐलान किया है कि आज रियासत के तमाम 24 जिलों में वजीर आला हेमंत सोरेन और कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी के पुतले जलाए जाएंगे। उनका कहना है कि उनका एहतजाज 22वें दिन में दाखिल हो गया है, लेकिन उनके अहम मुतालबात अब भी पूरे नहीं किए गए हैं। रांची में पुतला नजर आतिश करने का प्रोग्राम अल्बर्ट ईका चौक पर मुनाकिद किया जाएगा। तलबा JPSC के 11वें से 13वें इम्तहानात और JSSC CGL इम्तहान मनसूख करने के साथ साथ मुबैना बेजाबतगियों की CBI तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने रियासती सरकार को 18 अगस्त तक मुस्बत कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।

0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी आज रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आगाज करेंगे। इस इकदाम का मकसद रियासत में अहल शहरियों के लिए मियारी हिफ्जान सेहत की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल इस स्कीम को नाफिज करने वाली 36वीं रियासत बन जाएगी। इस स्कीम से 1.5 करोड़ कुनबों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है और फी साल फी कुनबा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज फराहम होगा। हर अहल कुनबे के रुकन को आयुष्मान भारत कार्ड मुफ्त जारी किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत रियासत के 1307 प्राइवेट और 627 सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। मुस्तफिदीन अस्पताल में दाखिले से 3 दिन पहले से लेकर अस्पताल से डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक इस स्कीम से फायदा हासिल कर सकेंगे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: इम्तिहानात मुनक्किद करने वाली कौमी एजेंसी NTA आज UGC नेट जून 2026, CSIR नेट और PhD प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ICAR कुल हिंद दाखिला इम्तिहान और कुल हिंद मुसाबकती इम्तिहानात के लिए आरजी आंसर की जारी करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर NTA ने बताया कि आरजी आंसर की उसकी सरकारी वेबसाइट पर शाई की जाएगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो सिर्फ NTA की सरकारी इत्तला पर ही एतमाद करें। अमृत उद्यान आज से अगले महीने की 15 तारीख तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। ये बाग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि इसमें आखिरी दाखिला शाम 5 बजे तक होगा। देखभाल के लिए हर पीर को बाग बंद रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बाग की सैर के दौरान कई अहम मकामात देखने को मिलेंगे, जिनमें बालवाटिका, पुरुमेरिया गार्डन, बैनियन ग्रोव, बोनसाई गार्डन, बैबलिंग ब्रुक्स, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन शामिल हैं। मौसम गर्मा के सालाना एडिशन की एक बड़ी कशिश मकामी और देसी फूलदार पौधे हैं, जो अपनी दिलकश रंगारंगी और माहौलियाती अहमियत के लिए मशहूर हैं। देसी पौधों के मजमू में बालसम, गुल मेहंदी और नागफना शामिल हैं। ये पौधे भारत के भरपूर नबाताती विरासत की अक्कासी करने के साथ साथ बागात में हयाती तनावों को भी फ़रोग देते हैं। नई दिल्ली से नितिका की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा के इलाके, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाज़ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि शुमाल मशरकी भारत के बाज़ इलाकों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, झारखंड, कोकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दिन में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शतरंज में आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कारलसन ने फ्रांस के शहर पेरिस में बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजविक को 2-0 से शिकस्त देकर लगातार दूसरी मर्तबा ई स्पोर्ट्स आलमी कप का खिताब जीत लिया है। टीम लिक्विड की नुमाइंदगी करने वाले मैक्स कारलसन इस पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहे। हॉकी में भारत ने कल नीदरलैंड्स के एमस्टिलविन में FIH हॉकी वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 1-3 से हराया। भारत की जानिब से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। वेल्स की जानिब से वाहिद गोल सैम वेल्श ने किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यौम आज़ादी की तकरीबात बड़े जोश व खरोश से मनाए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। राजधानी दिल्ली में तारीखी लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा फहराया और कौम से खिताब करते हुए कहा कि आज भारत जोश व जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। युवा शक्ति और नई टेक्नोलॉजी की मदद से 2047 तक विकसित भारत बनाने के हदफ पर जोर दिया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी और जमहूरी सफर में भारत के बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इस खबर को आज के सभी अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। अरुणाचल प्रदेश में सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने की खबर को भी अखबारात ने नुमाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों से पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन के नफाज की हिमायत करने की अपील की है, ताकि भारत की पॉलिसी साजी में ख़वातीन के तआवुन को मजबूत किया जा सके। वज़ीर आज़म ने मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया है, ताकि उनके कुनबों पर माली बोझ कम हो सके। अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। सूर्य पर तिरंगा जो अपनी नवीयत की पहली मुहिम है।

जिसमें 50 से ज्यादा भारतीय सिफारती मिशन्स शामिल थे, सान फ्रांसिस्को में इख्तिताम पजीर हुई। हुकूमत ने छोटे टैक्स दहिंदगान के लिए गैर मुल्की असासों के इंकशाफ की स्कीम शुरू की है। और शतरंज में आलमी नंबर एक मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब बरकरार रखा है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

0: We bring you a talk on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One-Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project, and Sanju Kumari, member One-Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
1: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का? और ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है। और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनके उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे फोकस कई ज्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन ब दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता के जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए, तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करें, और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके

0: कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहां वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं ये सोचना भी जरूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ, उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे नाते रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: सखी वन स्टॉप सेंटर सेंट्रल मिनिस्ट्री की स्कीम है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसके ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं। दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आते हैं, उनकी देख रेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है। कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा घबराती है इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आती है हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी जो अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं। साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं, ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में। और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से वो निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ

0: जैसा कि वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ा कर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है, ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है। वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर। वो वहां पर उसकी कंप्लेंट लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है, वो उसको बहुत इजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहां पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है। आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर, 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहां पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से फ्लैग करा देते हैं। उसके द्वारा वहाँ पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 1-1 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिसे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में NGO के साथ में या फिर हमारे जो लोकल NGOs वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल के आती हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगी, यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकती हैं, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका शेयर हाउस होल्ड है वहां पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं, पहले तो आप अपने उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है, हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है। पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। और ये चीज हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस, मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई, सारा फीमेल स्टाफ रहता है, तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती हैं। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती हैं जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा कैसी, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता के कारण भारत अमरीका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमरीका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती हैं, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत आज पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। शतरंज में विश्व शतरंज के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजविक को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that the country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
3: Prime Minister Narendra Modi announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said, the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes. The Prime Minister said the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill. The first of its kind Suryapat Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. The External Affairs Ministry said that the Suryapat Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign. Launched from the High Commission of India in Fiji, the relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. The relay ended with the flag hoisting by the Consulate General of India in San Francisco. The Central Board of Direct Taxes, CBDT, has notified the Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme of Fast DS Rules 2026. The scheme will come into force today. The last date for filing a declaration under this scheme is 31st December this year. No declaration can be filed after this date. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at his memorial Sadaiv Atal in the national capital today. Former President Ram Nath Kovind, Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister Rajnath Singh, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and BJP National President Nitin Naveen were also present on the occasion. Amrit Udyan will be open to the general public from today till the 15th of next month. The gardens will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. It will remain closed on Mondays for maintenance. On to sports now. In chess, world number 1 Magnus Carlsen has won Esports World Cup title for the second year in a row by defeating Belarusian Grandmaster Denis Lazarevic 2-0 in Paris, France. Representing Team Liquid, Magnus remained completely undefeated throughout the entire tournament. Meanwhile, American Grandmaster Hikaru Nakamura secured the third place after defeating Alireza Firouzshahi 4-1. In men's cricket, India will resume their first innings at the overnight score of 288 for 2 against Sri Lanka on the second day of the first test at the Gaal International Stadium today. Devdutt Padikkal remained unbeaten on 131 while Rishabh Pant was on 27 when stumps were drawn last evening. KL Rahul retired hurt on 77.

7.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड सुन रहे हैं ना आप, सुन तो रहे ही हैं, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन मुझे नहीं सुन रहे हैं आप, हमें कौन सुनता है जी। ये तो मेहरबानी है उन साहिबे आवाज़ और अहले मौसिकी, सुर साधक शारदा पुत्र गायकों गवैयों की, जिन्होंने उन गीतों को तरन्नुम में गाकर अपने स्वर माधुर्य से आम और खास के दिलों को जीता। दिल हारने के लिए ही तो आते हैं ना आप एफएम गोल्ड पर। हमको मालूम है जनाब, हम भी इसीलिए आते हैं, और हम आते हैं थोड़ी सी दिल लगी हो जाती है, कुछ बातें हो जाती हैं, बातें भी ऐसी कि जो आपके काम की हो सकें, जैसे वोकल फॉर लोकल एक ऐसी बात है जो हम सबके काम की है भाई। हम स्थानीय उत्पादों को अपनाते हैं, उनका प्रचार करते हैं, तो इससे ना केवल स्थानीय व्यापार को बल मिलता है बल्कि नए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। तो ये एक अभियान है जो लोकल यानी स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और उद्योगों को बढ़ावा देने का संदेश देता है। और एक संदेश हमारी सरकार देती है कि सबके पास अपने घर का सपना जो है वो सच हो जाए, तो इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी है जो देश के गरीब और निम्न मध्यम आय वर्ग के परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चलती है, शहरों के लिए अलग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग। इसमें तो घर के लिए जो कर्जा मिलता है मकान बनाने के लिए, गृह ऋण, ऋण के ब्याज पर जो सब्सिडी है और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता जो है वो सीधी भी दी जाती है, और मकानों में शौचालय, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी शामिल होती हैं। सिर्फ ईंट पत्थरों का मकान ही शामिल नहीं होता है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। गाना हम सुनने वाले हैं, ऐसा प्यारा गाना हसरत जयपुरी साहब ने लिखा, शंकर जयकिशन ने उसे संगीतबद्ध किया, रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की शानदार आवाज़ों में। फिल्म असली नकली का 1962 में ये फिल्म आई थी, लेकिन इस गाने का संगीत और इस फिल्म का संगीत ओवरऑल आज भी इतना ताज़ा सुकून देने वाला लगता है जैसे कि 1962 में रिलीज़ के समय हुआ था। ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाएं। और ये गाना आपके लिए आ रहा है असली नकली से, देवानंद साहब और साधना। फिल्म अपने समय के सामाजिक मूल्यों, सादगी और प्रेम को दर्शाने के लिए जानी जाती है।

अगर आप जाएं चेन्नई से पुदुचेरी की तरफ तो सफर बड़ा आनंदमय होता है, और खास बात यह है कि बैकवाटर्स वगैरह दिखाई तो देते हैं, आपको बहुत दूर दूर तक पानी भी दिखता है और खेत भी दिखते हैं, हरियाली चारों तरफ दिखती है। और एकदम से जब पुदुचेरी में दाखिल होते हैं तो एक अलग तरह की आभा छटा, एक अलग तरह की वाइब्रेशन आपको मिलती है, माहौल अलग तरह का मिलता है। और पुदुचेरी हमारे देश की एक ऐसी जगह जो विविधता का एक अलग ही छोर है, और पुदुचेरी जाने में बहुत आनंद आता है। वहाँ पर समुद्र तट और बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पर जो फ्रांसीसी डिज़ाइन है वहाँ की इमारतों के, वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और पुराने समय की याद भी दिलाते हैं। लेकिन पुदुचेरी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब उस समय भी पुदुचेरी पर, और जिसे तब पौंडीचेरी कहते थे, कराईकल, माहे, येनम, ये सब जगह जो एक साथ मिलकर आज केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी बनाती हैं, उस समय उन पे फ्रेंच शासन था, फ्रांसीसी शासन था, और बहुत कूटनीतिक वार्ताएं वगैरह हुई। और 1954 सात साल बाद फ्रांस ने भारत को इनका नियंत्रण एक तरह से अनौपचारिक तौर पर सौंप दिया था, जिसे डीफैक्टो कहते हैं। लेकिन कानूनी विलय, जिसे डिज्योर कहते हैं, मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफी चाहूंगा, 16 अगस्त 1962 को फ्रांसीसी संसद द्वारा संधि की पुष्टि के बाद पुडुचेरी का आधिकारिक तौर पर भारत संघ में विलय हुआ। तो फिर आप मेरी ये बात सुनकर पुडुचेरी जा रहे हैं? जाइएगा, अगर मौका मिले तो जरूर जाइएगा। आज ही के दिन हम याद कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे और भारत रत्न है जिन्हें दिया गया। और खास बात यह कि एक कलाकार के मन से पूछा जाए तो एक कवि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत से लोग याद करते हैं। 16 अगस्त 2018 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था, तो आज उनकी पुण्यतिथि है और सदैव अटल पर जाकर लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और देश के सभी उच्च नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी कविता में ओजस्विता तो थी ही, उनकी विदेश नीति या पोखरण, परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज, कई तरह के उनके काम हैं जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। लेकिन आज हमारे पाजी याद कर रहे हैं उन दिनों को जब वो सोए रहते थे। आज परजाई ने काम दे दिया है कि तुम उठ के पराठे बनाओगे और वो पराठे बना रहे हैं और परजाई को देखते हुए एक गाना गुनगुना रहे हैं जो सोई

0: कुछ काम की बातें और फिर वापस आते हैं।
1: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
2: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य

0: या घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
0: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अब जी और क्या बातें करें आपसे, एक गाना सुन लीजिए थोड़ा बहुत तो अच्छा रहेगा। और इस गाने के तुरंत बाद हम सुनेंगे वतन का राग।

0: जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है 2 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के 2 भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से रूपा झा और जबलपुर से मनीषा साखरदांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

कुछ आवाजें समय के साथ खो नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों के भीतर एक स्मृति दीप बनकर जलती रहती हैं। कुछ जीवन उम्र की लंबाई से नहीं, अपने संकल्प की ऊंचाई से बड़े होते हैं। वो मिट्टी धन्य हो जाती है जहां वो पैदा होते हैं, क्योंकि अपनी मातृभूमि के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे शहीद बंता सिंह संघवाल। बंता सिंह का जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंजाब के जालंधर जिले के संघवाल नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम बलवंत सिंह था, लेकिन आगे चलकर वो बंता सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता सरदार बुधा सिंह एक साधारण किसान थे, लेकिन उनके विचार अत्यंत ऊंचे थे। उनका परिवार अपनी राष्ट्रभक्ति और नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। यही कारण है कि बचपन से ही बंता सिंह ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना सीख लिया था। माता गुजरी देवी के संस्कारों ने उन्हें गढ़ने का काम किया। बंता सिंह की आरंभिक शिक्षा उनके गांव और पास के प्राथमिक विद्यालय में हुई। वो बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। इसके साथ ही वो बेहद साहसी और न्यायप्रिय थे। उन दिनों भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। गांव में निर्धनता थी, किसानों पर अत्याचार हो रहे थे और युवाओं के सपने दम तोड़ रहे थे। धीरे धीरे बंता सिंह का बाल मन इन परिस्थितियों को समझने लगा था। जब वो डीएवी स्कूल जालंधर में पढ़ रहे थे, तभी कांगड़ा जिले में भूकंप आया। बंता सिंह घर से जब पढ़ने जाते तो भूकंप पीड़ितों के लिए अनाज की बोरियां ले जाते। धीरे धीरे बंता सिंह युवा हुए और उन्होंने देखा कि उनके अनेक साथी बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जा रहे हैं। उन्होंने भी विदेश जाने का निर्णय लिया। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। लेकिन ये एक सामान्य यात्रा नहीं थी, ये यात्रा एक योद्धा की यात्रा साबित हुई, जो अपने भीतर एक नए युग का सूर्य लेकर चल पड़ा था। अमेरिका में रहते हुए ही उनके भीतर क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ।

विदेशी सरजमीं पर रहते हुए बंता सिंह ने महसूस किया कि भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है, उनके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है। उन्होंने गदरी लहर में कूदने का फैसला कर लिया। गदर पार्टी के प्रधान बाबा सोहन सिंह भकना ने पुस्तक मेरी राम कहानी में लिखा, हमारी सभी विपत्तियों की जड़ हमारी गुलामी है, इसे खत्म करने के लिए हमें शूरवीरों की जरूरत है। उनके इस आह्वान पर सबसे पहले अपना नाम पेश करने वालों में प्रमुख नाम भाई बंता सिंह का था। धीरे धीरे बंता सिंह गदर पार्टी के एक विश्वसनीय कार्यकर्ता बन गए। इसी बीच सन 1914 का साल आया, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। गदर पार्टी के नेताओं ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अवसर के रूप में देखा। निर्णय हुआ कि सभी क्रांतिकारी भारत लौटेंगे और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध

संघर्ष छेड़ेंगे। बंता सिंह भी अपने साथियों के साथ भारत लौट आए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये युवा क्रांतिकारी कुछ ही समय में भारतीय स्वाधीनता के इतिहास का अमर अध्याय बन जाएगा। अमेरिका से भारत लौटकर बंता सिंह ने आसपास के गांव के लोगों को जगाना शुरू किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर कई लोग उनके साथ चल पड़े। उन्होंने संघवाल में पंचायत की स्थापना की और सरकार के विरुद्ध प्रचार आरंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने गांव में एक विद्यालय और पुस्तकालय खोला। गांव में पशुओं का अस्पताल भी खोला गया। गांव की पंचायत में हत्या को छोड़कर सभी मुकदमों का फैसला किया जाता था। गांव में गदर साहित्य छापने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगाया गया। बंता सिंह ने पूरे जिले का दौरा किया और लोगों के बीच गदर आंदोलन का साहित्य वितरित किया। वो लोगों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने तथा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का संदेश देने लगे। अनेक युवा उनके साथ थे। वो विरोध स्वरूप उन्हें रेलवे लाइन से छेड़छाड़ और टेलीफोन के तार काटने जैसी विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। वो कहा करते थे कि स्वतंत्रता उन्हीं को प्राप्त होती है जो उसके लिए लड़ने का साहस रखते हैं। बंता सिंह को उनके चार अन्य साथियों के साथ गदर पार्टी ने भारत भेजा था। उनका उद्देश्य भारतवर्ष में 1857 की क्रांति की तर्ज पर सशस्त्र क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना था। इसके लिए जनता को संगठित करना था। सशस्त्र क्रांति हेतु हथियार और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी वो निभा रहे थे। उनके मन में बस एक ही लगन थी, लगन आजादी की।

तरह बंता सिंह लगातार क्रांति गतिविधि में सक्रिय थे। संगवाल में उन्होंने एक मजबूत क्रांतिकारी केंद्र स्थापित कर दिया था। ये दुआबा क्षेत्र का मुख्यालय बन गया था। यहाँ महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, करतार सिंह सराभा, हरनाम सिंह टुंडीलाट, बीबी गुलाब कौर, बाबा साहेब सिंह और मान सिंह सियालकोटी जैसे क्रांतिकारी अक्सर आया करते थे। बंता सिंह द्वारा स्थापित ये केंद्र पंजाब में गदर आंदोलन की रीढ़ साबित हुआ। बंता सिंह के जीवन का मात्र एक उद्देश्य था, भारत की आजादी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कपूरथला के शस्त्रागार पर हमला कर दिया और हवलदार भगवान सिंह को अपने साथ मिला लिया। 25 अप्रैल सन 1915 को उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नगल कलां होशियारपुर के जेलदार चंदा सिंह की हत्या कर दी। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार तिलमिला उठी। 82 गदर क्रांतिकारियों पर साजिश का पहला केस दर्ज हुआ, लेकिन बंता सिंह फरार हो चुके थे। गदर क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से बैठक की तथा हथियार जुटाने के लिए अमृतसर जिले के मननवाला रेलवे स्टेशन के पास वल्ला पुल पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने की योजना बनाई। इस दल का नेतृत्व बंता सिंह को करना था।

12 जून 1915 की रात को बंता सिंह ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और 6 सर्विस राइफल्स और 200 कारतूस अपने अधिकार में ले लिए। इस हमले में उन्होंने 2 सिपाहियों फूल सिंह और चतर सिंह को मार दिया। वहीं जेलदार कपूर सिंह की हत्या की कोशिश में भी उनका नाम आया। इस घटना के बाद ब्रिटिश शासन में हड़कंप मच गया। ब्रिटिश सरकार ने बंता सिंह पर भारी इनाम घोषित किया। बंता सिंह को पकड़ने के लिए चारों ओर जाल सा बिछा दिया गया। गांव-गांव में उनकी तलाश शुरू हुई। बंता सिंह उस समय अपने गांव के आसपास गुप्त रूप से रह रहे थे, लेकिन अब भी वो अपने साथियों से संपर्क बनाए हुए थे। वो लगातार भविष्य की योजनाओं पर विचार कर रहे थे, लेकिन उनके एक निकट संबंधी ने धन के लालच में आकर अंग्रेज अधिकारियों को उनकी सूचना दे दी। इस मुखबिर के विश्वासघात का परिणाम हुआ कि बंता सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे मुकदमे के दौरान बंता सिंह जरा भी घबराए नहीं और पूरी निर्भीकता के साथ अपने क्रांतिकारी विचारों को अदालत के सामने रखा और देश के लिए अपनी निष्ठा जताई। बताया जाता है कि गिरफ्तारी से लेकर फांसी की सजा तक उनका 11 पौंड वजन बढ़ गया था। 12 अगस्त 1915 को लाहौर के सेंट्रल जेल में उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। नमन ऐसे अमर बलिदानी को। शहीद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

तो अभी हमने सुना वतन का राग, और अभी थोड़ी देर में हम सुनेंगे हिंदी में समाचार। हिंदी में समाचारों के बाद हम अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, फिर विश्व की खबरों को हिंदी में सुनने के लिए विश्व दर्पण होगा, और फिर वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ के बाद हम वापस आएंगे, जब तब बज चुके होंगे 10:30 बजे, और खुलेगा दिल का मेलबॉक्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एआई के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ रही हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग दोब्के की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्य पर तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने वाजपेयी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। शतरंज में विश्व नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजविक को 2-0 से हराया। वहीं अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारो नाकामुरा ने अलीरेजा फिरोजा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। दूसरे दिन भी खेल बारिश की वजह से देरी से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साई रमुज तबा।

0: राजेश कुमार। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना का शुभारंभ किया। 50 से अधिक देशों में भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा यात्रा सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के प्रभाव में हुए विवादित चुनावों पर प्रदर्शनकारियों की चिंता को लेकर तनाव बरकरार। अमरीका के मिशिगन में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम अधिसूचित कर दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
1: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले यात्रा कल सैन फ्रांसिस्को में संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों के मिशनों से होकर गुजरी है। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एक रिपोर्ट।
2: तिरंगे ने दुनिया भर में पूरब से पश्चिम की ओर प्रतीकात्मक यात्रा की और फिजी से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक दुनिया भर में मौजूद भारतीय मिशनों में इसे बारी बारी से फहराया गया। फिजी स्थित भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। फिजी में सुबह 8 बजे शुरू हुई तिरंगे की ये यात्रा भारतीय मिशनों के माध्यम से पश्चिम की ओर बढ़ी और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, उज्बेकिस्तान और ओमान सहित 54 देशों में भारतीय स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में तिरंगा फहराने के साथ हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाया गया। रिले में प्रवासी भारतीयों और भारत के मित्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुनिया के कई देशों में भी तिरंगा फहराया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, साइप्रस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और सिंगापुर सहित कई देशों में भारत की आजादी का उत्सव मनाया गया। भारत ने सभी देशों का आभार व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूबियो की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, साइप्रस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसराइल में यरूशलम के प्रसिद्ध कार्ड्स ब्रिज को भारतीय तिरंगे के रंगों में रोशन किया गया। केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी भारत और इसराइल के बीच मजबूत संबंध तथा साझा मूल्यों का प्रतीक बनी। इसराइल में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि ये रोशनी दोनों देशों के मजबूत और स्थायी संबंधों को दर्शाती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिंगापुर, चीन और हांगकांग में भी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग उपस्थित रहे। सिंगापुर में उच्चायुक्त शिल्पक एम्बुले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश पढ़कर सुनाया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दुराईस्वामी

0: सुराब के गिदार गोंधन इलाके में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन में महिलाएं और बच्चों समेत 30 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि अशांति के दौरान पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई में करीब 100 लोग मारे गए हैं। अमेरिका के मिशन में गोलीबारी की कई घटनाओं में संदिग्ध हमलावर समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मिसौकी काउंटी में अलग अलग स्थानों पर 5 युवकों की मौत हुई। इस घटना में 13 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। संदिग्ध हमलावर की पहचान चैड हिकमैन के तौर पर की गई है। बड़े पैमाने पर तलाशी के बाद उसे एक पीड़ित के साथ जंगल में मृत पाया गया। पुलिस ने बताया कि सभी 6 लोगों की मौत गोली लगने से हुई। गोलीबारी की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है, आगे की जांच जारी है। जिम्बाब्वे के करीबा झील में एक नौका के पलट जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। इनमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर पश्चिमी जिम्बाब्वे में करीबा शहर से दूर दराज के ग्रामीण और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लोगों से भरी नाव मंगलवार को तेज लहरों के कारण पलट गई थी। अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि नाव पर कितने लोग सवार थे या कितने लोग लापता हैं। अनुमान है कि नाव की क्षमता 90 यात्रियों की थी और लगभग 153 लोग इस नौका पर सवार थे। इंडोनेशिया में कल फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। भूकंप के बाद कई और झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। इंडोनेशिया सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। दक्षिणी लेबनान में कल इसराइल के हवाई हमले में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। एक अन्य देर अल जहरानी गांव में हवाई हमले में 4 लोग मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए। बेल्जियम में पूर्वी इलाके में हाई फेंस में कल लगी आग से 2000 हेक्टेयर वनस्पति जलकर राख हो गई। आग बुझाने का काम लगभग 30 घंटे तक जारी रहा। स्थानीय मीडिया के अनुसार आसपास के इलाकों में लगभग 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वाइम्स नगर पालिका के सौर ब्राइट के 500 और बुटजेन बैक के लगभग 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। अमेरिका के ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने अली रेजा फिरोजा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। चैंपियनशिप में 3 सेटों का प्रारूप अपनाया गया था। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेल रहा है। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना का शुभारंभ किया। 50 से अधिक देशों में भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा यात्रा सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के प्रभाव में हुए विवादित चुनावों पर प्रदर्शनकारियों की चिंता को लेकर तनाव बरकरार। अमेरिका के मिशिगन में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good morning. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the World News. The headlines. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. Suryapath Tiranga, a first-of-its-kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Situation in POJK remains tense, with protesters raising concerns about recent controversial elections conducted under influence of Pakistani force. In United States, 6 people killed in a series of shootings in Michigan. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. The Central Board of Direct Taxes, CBDT, has no

0: छोटा पड़ता है, लेकिन वक्त भी बहुत छोटा है। क्या करें, सारे संदेश मिलाकर भी दिल का मेलबॉक्स पूरा भर नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिल कभी भरता ही नहीं। लेकिन क्या करें, समय की मजबूरी। दिल कर रहा है कि बाकी सारी बातें छोड़ के आपके नाम लेना शुरू कर दूं। इतनी सारी ईमेल पोरिंग, जिसे कहते हैं ना, बहुत धारासार वर्षा जिस तरह से होती है आषाढ़ में, सावन में, उस तरह से, और सावन तो चल ही रहा है। fmgoldair@gmail.com ये ईमेल आईडी है जिस पर आपकी फरमाइशें हम मंगवा सकते हैं, और हो सके तो आपका नाम भी सुनवा सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं और कुछ गाने सुनने भी बहुत ज़रूरी है, वरना आधे घंटे तक तो बंदा आपका नाम लेते लेते ना थके, आप भी मेल भेजते भेजते ना थकें। लेकिन अगर आपका नाम नहीं भी पढ़ा जाए तो कम से कम आपको गाने बहुत अच्छे सुनने को मिल जाते हैं, प्यारे से गीत। और अगर आपको आपकी पसंद का गीत ना सुनने को मिले, कम से कम हम आपका नाम तो पढ़ते हैं ना, आपका नाम पढ़कर इतनी खुशी होती है और आपको भी अपना नाम सुनकर बहुत खुशी होती होगी। AIR FM Gold 100.1 MHz FM Gold आकाशवाणी का ये चैनल आपका अपना चैनल, बहुत सारी बातें होती हैं, दिल का मेल बॉक्स ये प्रोग्राम है, विजय आपके साथ है। और हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे लोग हैं, मैं फिलहाल कुछ नाम पढ़ रहा हूँ। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल ईशान, पूजा परिहार, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, संजय धींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन, राधा नामदेव, दर्शन भाई, जिला खरगोन सनावद, मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बोराना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, ऊपरकोट मोहल्ला से चौखुंटी, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, अब्बासी निगत, परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, इनके आगे अब्बासी अपने आप लगा लेना, और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से बड़ा बम चौक, खंडवा, मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, कस्बा गन्नौर, उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, और ज़िला मुरादाबाद, गांव दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सचीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह। इतने सारे दोस्तों ने ऐसी ऐसी फरमाइशें भेजी हैं कि जी करता है बस सुनते उनके नाम पढ़ते चले जाएं। नाम पढ़ने का अपना ही एक आनंद है, इसमें लगता है कि दुनिया जहान में कहाँ कहाँ से तो लोग हमें सुन रहे हैं। लेकिन जनाब, दिल का मेल बॉक्स में पहला गाना मेरी अपनी फरमाइश है, वो फरमाइश बहुत प्यारी है, इस तरह से कि वो फिल्म बेशक फ्लॉप हो गई हो एक ज़माने में, लेकिन 1975 में आई मृग तृष्णा का ये गाना रफ़ी साहब ने क्या खूबसूरत गाया है, और इसे सुनने में आपको बहुत आनंद आएगा। फिल्म हालांकि बहुत चली नहीं, लेकिन इसका संगीत इसी वजह से बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं गया, तो इन गानों को जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये गाने हमने कहीं ना कहीं सुने हैं। ये म्यूज़िक डायरेक्टर इसके थे शंभू सेन, और उन्होंने इस फिल्म के गाने लिखे भी, और ये संगीत इतना प्यारा बन पड़ा है कि हमको चाहिए कि कुछ ना कुछ गाने हम सुने और सुनते रहें, ऐसे गीत जो फिल्में फ्लॉप हो गई, ज़्यादा सुनने में नहीं आए, लेकिन FM गोल्ड इसी का तो नाम है, और आपके दिल के मेल बॉक्स तक ये सीधा गाना पहुँचेगा रफी साहब की आवाज में। आइए सुनते हैं।
1: अंग प्रति अंग शुभांग सुहावे, नैन अधर कटि नृत्य दिखावे,

गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश मवार, डैनी मनीष, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम चैपाल, सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, सुनील पठानिया,

पठानिया, अंजलि पठानिया, सचिन नादौन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से और कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत उत्तर प्रदेश से, आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु, अतर सिंह, राजकुमारी, अनुज, अंजलि, पारुल, अद्विक समयपुर दिल्ली से हैं ये सब लोग, सतीश अनेजा और बिमला अनेजा चंडीगढ़ से, और रांची से आशीष ने दिव्या के लिए गाना समर्पित किया है। उन्होंने कहा है कि ये गाना वो जब उस दौर का है जब वो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजा करते थे, संदेशा भेजा करते थे लिखकर। जाहिर सी बात है, तो ऐसा गाना जो संदेशे चिट्ठी लिखने के बारे में हो, और इसमें बहुत प्यारा गाना 1982 में आई फिल्म शक्ति का है, जिसमें अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल की स्क्रीन पर जो मौजूदगी थी वो बहुत ही कमाल की मौजूदगी थी। और आर डी बर्मन साहब को देखिए, उन्होंने इस गाने को उस दौर में चुना, 1980 के दौर में जब डिस्को के गाने बहुत तेज़ी से बज रहे थे, ऐसे समय में ये गाना उन्होंने बहुत प्यारे ढंग से कंपोज किया। आपको सुन के मज़ा आएगा। दिव्या जी के लिए

बहुत दिल कर रहा है बहुत सारी बातें करूं, लेकिन आइए पहले कुछ महत्वपूर्ण संदेश सुन लेते हैं, कुछ आपके काम की बातें जो बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे रेडियो के लिए ख़ास तौर पर। कुछ सुनिए आप भी और हम भी, और अगले गाने की तैयारी करते हैं।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

देखा यही होता है जब आपका नाम पढ़ने में बंदा मस्त हो जाए ना, वाह वाह वाह, हमको कहाँ कहाँ लोग सुन रहे हैं। और ऐसी ऐसी ईमेल आ रही हैं कि बस क्या बताएं आपको। एक ईमेल तो ऐसी है जिन्होंने सभी सुनने वालों के नामों को ध्यान से पढ़ा है और फिर उसमें डुप्लीकेसी और नाम बिगाड़ बिगाड़ कर किस तरह लिखा जा रहा है, इस तक का एक लंबा चौड़ा ईमेल लिखा है। दोस्तों हम आपकी बात पर गौर करेंगे लेकिन इस वक्त एकदम से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है, बहुत धन्यवाद। नवाब अहमद भारती, बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, अशरफ अली, सिराज मिथुन, संजय धींगिया, सलीम अख्तर दिल्ली से, इन लोगों ने तो अपना एक रेडियो क्लब भी बना रखा है सुनने का, वाह। अनारकली बाजार बाजार जगराओं से डॉक्टर आशीष मल्होत्रा, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, डॉक्टर अमरदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज बिट्टा, और कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा मेहरनगर, उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवहाणकर, राही श्रीमती सरिता गवहाणकर, प्रिंस एकांश, अर्जुन गवहाणकर डुगू, और दतरेंगी भाटपाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, और वर्मा आप आगे लगा लीजिएगा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल, क्या बात है। और एक दो नाम और पढ़ सकता हूँ अगर मैं तो, मैं अगर ईमेल खोलने बैठूँ तो बस डर जाता हूँ, इतने सारे मेल, आपका नाम छूट जाए तो माफ़ी चाहेंगे। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ही दिनेश वर्मा और करुण वर्मा भी हैं, और ये साहब हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, क्या बात है, महाराष्ट्र से इतनी ईमेल आ रही हैं। पी एस नहावकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर, बहुत शानदार नाम, और बहुत आपका बहुत धन्यवाद। आर्यन कृष्णा, पीहू स्वर्णकार, ये शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं, इनके साथ मुन्ना भाई स्वर्णकार भी हैं, पिंकी भी है, और राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से ही राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक आर्यन, बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। इनकी तारीफ में, इनके मोहब्बत में बहुत ही प्यारा गाना हम आप तक ला रहे हैं, क्योंकि हमने आपके साथ प्रीत की है और निभाने की कोशिश भी की है। तो कामचोर का ये गाना लता जी और किशोर साहब की आवाज़ में, आवाज़ों में इंदिवर ने लिखा, राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया, ये तेलुगु फिल्म के विश्वनाथ की थी, शुभोध्यम कुछ ऐसा नाम था उसका, और बहुत ही प्यारा गाना है, पिक्चराइजेशन भी इसका बहुत सटल सा है, रोमांटिक सा है, और बहुत सुंदर गाना ये बन पड़ा है। इसमें एक ख़ास बात यह है कि जयाप्रदा बहुत ही सुंदर लगी इस फिल्म में, है ना।

भाई जिनका नाम हम नहीं पढ़ पाए उनसे भी हमने प्रीत लगाई है, नाम पढ़ते हैं और जहां तक हो सके शामिल करते हैं। अब देखिए वक्त की अपनी मजबूरियां हैं, क्या कर सकते हैं। 11 बज गए, पता नहीं चला हम तीन ही गाने सुन पाए क्योंकि बहुत सारे नाम पढ़ने का लालच था और जैसे जैसे मेल आ रहे थे उसी प्रक्रिया में हम नाम पढ़ने की कोशिश करते जा रहे थे। ख़ास बात यह है कि एक दो नाम मैं और जाने से पहले पढ़ देता हूँ। ये भारत भूषण अंजू दिव्येंदु संस्कृति पौरुष, ये हैं कहाँ से, वाइट फील्ड बेंगलुरु से, और ये ताज मस्किन, माफ़ कीजिएगा ये तो बहुत बार बार कुछ लोग तो ईमेल बार बार भेज रहे हैं, क्या ज़रूरत है इन इतना ना करें, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, और ये रानी का संदेशा आया है आश्रम नई दिल्ली से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हम सुनेंगे समाचार, समाचार सुनकर जब वापसी होगी तो होगा आज के मेहमान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न

0: परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की भी अपील की।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को भी श्री मोदी ने धन्यवाद दिया। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। संत श्री रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। शतरंज में विश्व नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिक लाजविक को 2-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल FM गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, ये कार्यक्रम है आज के मेहमान। मैं हूँ आपके साथ रश्मि कुकरेती, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और आज मेरे साथ है मेरी सखी प्रियदर्शनी। कैसी हो प्रियदर्शनी?
1: एकदम अच्छी।
0: और आज प्रियदर्शनी के अलावा मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही विशेष मेहमान है और मैं चाहूंगी जो मेरी सहेली है प्रियदर्शनी, वो बताएंगी आपको कि आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन है।
1: जी हाँ, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में खास अतिथि हैं जिनका नाम है उर्मिला श्रीवास्तव। मिर्जापुर से आती हैं और कजरी में महारत रखती हैं। इन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं और सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री मिला है। कजरी गायकी के लिए इन्हें देश विदेश में खूब ख्याति मिली है। तो आइए आज उनसे मिलते हैं और उनकी कजरी को सुनते भी हैं, समझते भी हैं और अपने भीतर उतारते भी हैं। स्वागत है मैम।
0: स्वागत करते हैं उनका FM गोल्ड के स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: तो कहते हैं कि कजरी सावन के काले काले मेघा और मेघा के साथ उसकी कहीं ना कहीं कोई तारतम्यता दिखती है। तो क्या है ये खास कजली, कजरी कैसे बना?
2: बहुत ठीक कह रही हैं। जो सावन भादों के महीने में बादल में कजरारे बादल उमड़ घुमड़ के चारों तरफ बारिश होती है, रिमझिम रिमझिम, वो बारिश जो शरीर पे पड़ता तो एक अलग से सिहरन से पैदा होती है। इतना सुखमय होता है कुछ कहने को नहीं। चारों तरफ वातावरण भी, पेड़ पक्षी और चारों तरफ देखे तो हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। ये बारिश का ऐसा मौसम ही होता है। और हमारे यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति मिर्ज़ापुर की, जो मिर्ज़ापुर की पर्याय है कजरी। तो ये कजरी हमारी माँ विंध्यवासिनी जी है, वहाँ पे विंध्याचल माँ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका एक नाम कज्जला देवी है, उन्हीं कज्जला देवी से हमारी कजरी का नाम है। और ऐसे देखिए तो बादलों में जो कजरारे बादल उमड़ घुमड़ के, जो आप आंखों में काजल भी लगाते हैं इस तरह से जो बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, ये हमारे कजरारी बादलों से और माँ से और सावन की रिमझिम रिमझिम फुहारों से, बारिशों से संबंधित है।
0: जी, और जब ये कजरारे बादल जब आसमान पे उमड़ते घुमड़ते हैं तो जो सृष्टि होती है तो मन मयूर नाच उठता है। और जब मन मयूर नाचता है ना तो फिर गीत पैदा होते हैं, हृदय से गीत निकलते हैं, संगीत होता है। वो मुझे लगता है मानव मन की अभिव्यक्ति है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल
0: वो है कजरी। तो मुझे लग रहा है कि अगला प्रश्न मैं कुछ कहूँ, मुझे ये लोभ संवरण नहीं कर पा रही प्रियदर्शनी कि मैं उर्मिला जी से कहूँ कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े आप कुछ हमें गाकर सुनाएं।
2: बात तो कजरारी बादलों की है, हरियाली की है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी कजलियाँ हैं, बहुत सारी धुने हैं। तो हम आपको क्या सुनाएं? इस मौसम में हमारे यहाँ लड़कियाँ अपने मायके आती हैं तो इसमें एक पक्ष नहीं होता है, संयोग है वियोग है। लड़कियाँ अपना दुख सुख बांटती हैं, अपनी सहेलियों से अपनी बातें करती हैं, अपने पिया की बातें करती हैं, अपने सास ससुर की करती हैं, अच्छाई भी बताती हैं बुराई भी बताती हैं। तो सारा इसी कजरी के शब्दों में पिरो के ही बताती हैं। और बताएं, सावन के महीने में हमारे यहाँ झूले बहुत पड़ते हैं, चारों तरफ हरियाली तो रहती है, बड़े बड़े पेड़ों पे मोटे मोटे रस्सों से झूले पड़ते हैं, झूले बहुत बड़े बड़े, उसको हम लोग पटेंग भी कहते हैं। माँ की एक वंदना करते हैं, जिनकी कजला देवी की हम बात कर रहे हैं, तो उनके लिए

0: नहीं चनन, देखिए चनन समझ रहे, चंदन का
1: जी
0: है, चंदन के झूले पे माँ झूल रही है। तो प्रकृति का देखिए वर्णन, अमृत से पग धोवे बदरिया, माँ का चरण जो है अमृत, अमृत रूपी जो वर्षा है उससे उनके चरण धोरे अमृत।

0: क्योंकि हम तो इस देश में प्रकृति के उपासक हैं, तो प्रकृति में ही सारे साधन हैं, वही ईश्वर का रूप है
1: बिल्कुल
0: और साधन भी वही है, बिजली हो या
1: चाहे
0: हम
1: वो
0: कहें
1: बादल
0: पुष्प
1: हो,
0: हो या बादल हो या जल हो, तो
1: बिल्कुल
0: बहुत ही मीठी और बड़ी हम कहेंगे अर्थपूर्ण ये कजरी से शुरुआत हुई। लेकिन मैं देख रही हूँ कि प्रियदर्शनी कुछ कहना चाह रही है।
1: जी, कजरी आपने बहुत सरस सुनाया, मनभावक मनमोहक। जैसा कि कहते हैं कि सावन और भादो के जो लोकगीत हैं वो कजरी के कण कण में समाये हुए हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर में कहते हैं कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी कजरी गाते हैं, तो कुछ इस बारे में
0: बिल्कुल,
1: बताएं कि पुरुष अलग अलग अखाड़ों में क्या क्या अलग अलग कजरी को गाते हैं।
2: जैसे स्त्रियां गाती हैं वैसे पुरुष भी हमारे यहाँ बराबर बराबर का गाते हैं। स्त्रियां थोड़ा ज्यादा गाती हैं, पुरुष में एक दूसरे से तकरार भी होती है, यानी दंगल होते हैं, और दंगल बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। उसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून बना के गाते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने क अक्षर से शुरू किया तो दूसरा भी क अक्षर से शुरू करेगा, या
1: अच्छा
2: क से शुरू किया तो वो ख से शुरू करेगा, और ख से उसने शुरू किया तो ग से शुरू किया। मतलब बहुत सारे नियम कानून भी इसमें हैं, लेकिन सुंदरता रखते हुए सारी चीजें। और रहा स्त्रियों और पुरुष एक साथ गाने की, तो सवाल जवाब भी होते थे, तो हम आपको बस सवाल जवाब का थोड़ा सा सुनाते हैं
1: जी,
2: कि पुरुष स्त्री से क्या कह रहा है। देखिए, धनी

तनी, पत्नी को धनी, धनी तनी खोला ना हो के वड़िया, हम भी देशवा जय बेना। तो पत्नी कहती है जो

0: ना। तो ये प्रश्न जब उसने किया कि हम जाएंगे, तो पत्नी जवाब देती है, तो पति फिर कहता है, जो तू धनिया, पतली से,
1: जी
0: जो तू

0: जितना खर्च किया है। जितना लागल बा रुपया, अरे उतना दे के जाओ ना। तो ये पति कह रहा है, पर इसका जवाब इतना सुंदर है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जरा भाव देखिए।
1: जी,

0: जैसन भैया घर वारली अरे वैसन कई के जाय जैसन भैया घर वारली वैसन कई के जाय ना। तो क्या संभव है
1: जी, क्या बात है।
0: आप अगर रुपया लेते हैं तो हमें वैसा ही कर दीजिए जैसे मैं अपने बाबा के घर से अपने भाई के घर से आई थी, उस तरह का। आप देखिए इसके अंदर क्या भरा हुआ है।
1: बिल्कुल
0: है कि जैसन बाबा घर मां रहली, क्या कोई कर सकता है।
1: स्त्री मन की भावनाएं बिल्कुल,
0: हाँ मन की भावनाएं की जैसे मैं अपने बाबा के घर थी वैसे आप कर दो, मैं चली।
1: बड़ी मीठी आवाज आपकी जब हम सुन रहे थे। मैं ये जानना चाहूंगी कि उर्मिला जी आपने इसकी विधिवत शिक्षा ली या वैसे ही सीख लिया, किस प्रकार से, क्योंकि कजरी तो उपशास्त्रीय संगीत का ही एक रूप है और बहुत अच्छे अच्छे कजरी गाने वाले हम कहेंगे आदरणीय गिरिजा देवी हैं, उनकी जो कजरी है बड़ी

0: विख्यात कजरियां हैं, बहुत मीठी कजरियां हैं उनकी। हम उनको सुनते हैं तो बस याद आ जाती है लोकगीतों से। आपने किस प्रकार से इसकी विधिवत शिक्षा ली है?
1: देखिए, लोकगीत ऐसा है, चाहे जिस प्रदेश का हो, जिस शहर का हो,
2: जी
1: कोई किसी को नहीं सिखाता। अगर वहाँ की बेटी है तो बचपन से ही उसके कानों में वो रस घुलता रहता है, वो शब्द घुलते रहते हैं, वो स्वर घुलते रहते हैं। वो अपने आप में ही वो हमारी टीचर है, हमारी गुरु है। तो हमारी मिर्ज़ापुर की धरती माँ ही मेरी गुरु है। मेरे यहाँ नागपंचमी से त्यौहार शुरू हो जाते हैं और उस दिन मेला लगता है। उसी दिन से कजरी जागरण के दिन तक 10-15 दिन तक लगातार रात को पूरी रात लोग गाते हैं।
0: तो आपको कैसे पता चला कि मेरे अंदर ये है गाने का, मतलब आपने गाना शुरू किया, कौन सी उम्र थी वो?
1: कुछ भी पता नहीं चला, बस ये जानते थे जब औरतें गाती थी तो हम धीरे से दरवाजा खोल के सिटकनी, पहले सिकड़ी लगा रहता था, आजकल सिटकनी चलता है ना, गोल गोल छल्ले की तरह सिकड़ी रहता था, तो हम अपने घर वालों से छुपा के, देखिए ये होनी थी, क्या पता था कि आगे क्या होगा। तो मेरे कान में जब वो आवाज़ सुनाई पड़ती थी तो हमें जैसे लगता था कोई हमें खींच रहा हो, बस हमको वहाँ जाना है। और उम्र कितनी रही होगी तो याद नहीं है, 6-7 या 8 साल के रहे होंगे, मतलब बिल्कुल जब हमको उसका एक शब्द भी मतलब नहीं मालूम रहता था, बस हम चुपचाप बाहर निकलते थे और हमको बच्चा समझ के आओ बिट्टी आओ, मतलब आओ पकड़ लेते थे। तो हम लोग उनके साथ घूमते थे, उनके शब्दों को ऐसे मुंह देखते थे, एक भी शब्द मेरे समझ में नहीं आता था। तो ये मेरी ऐसे शुरुआत की पढ़ाई कह लीजिए। वो कान में रस, सुंदर सा रस जो कजरी का, कजरी वातावरण में कजरी गाते हुए जो रस मेरे कानों में घुली, वही मेरी गुरु है। धीरे धीरे धीरे धीरे बड़े होते गए और हमें शब्द क्लियर होता गया। मेरे जीवन का पहला गाना भी मैया झूले चनन झूलना, अविश्वासनीय के 3 सालों में ये गाना हम ढूंढ के लाए। कैसे कि हर साल मेला लगता था, औरतें गाती थी, ये गाना सुनते थे, तो हम 2-4 लाइन उसको लिखे, उसके बाद अगले साल का इंतजार करते थे कि मेला लगेगा वो गाना लिखना है। 3 साल में इसको हमने पूरा किया और पूरा करने के बाद जब हमने एक स्टेज पर इसको गाया और वहाँ से गा के निकले तो बगल में कोई बैठा था, मेरी डायरी को उन्होंने ठीक करना शुरू किया, तो बोले कि आप कहाँ से ये गाना ली? हमने कहा पूछिए मत, 3 साल में हम गाना ये लिखे हैं। तो उन्होंने कहा ये मेरा लिखा हुआ है
2: जी। तो इस तरह से ये कजली की जो यात्रा है लगातार आगे बढ़ रही है।

0: आप कजली को लगातार आगे बढ़ा रही हैं, नई युवा पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं, लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम कहते हैं कि पश्चिमी संगीत बहुत हावी हो रहा है हमारे युवाओं पे, हमारे यूथ्स पे, ऐसे में लोक संगीत का क्या भविष्य है और कजली को, यानी हम जो मिर्जापुर की ढुनमुनिया कजली है और तमाम ऐसी छोटी मोटी कजलियाँ हैं जो कजली के अलग अलग विधाएं हैं, उनको हम कैसे सहेजें, कैसे संरक्षित करें और युवाओं को हम कैसे जोड़ें?
1: हाँ, बिल्कुल सही। आजकल जो गाने का ट्रेंड चला है, चमक धमक और पॉप संगीत, इसमें प्रभावित हुए हैं। लेकिन अगर हम युवाओं को दोष दें तो ये गलत बात है। क्यों? हम माँ बाप उनको नहीं बता रहे हैं, हम टीचर्स नहीं बता रहे हैं। जो हमारा कल्चर है, हमारी जो लोक विधा है, उसके बारे में भी तो आप बताइए। आप उसी जगह रहते हैं, चाहे मिर्जापुर में है तो मिर्जापुरी कजरी, मान लीजिए कोई मथुरा वृंदावन में होली के बारे में नहीं जानेगा, कृष्ण के बारे में नहीं जानेगा, तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो ऐसे तो हम कहते हैं जो मेरे यहाँ अगर कजरी के माने नहीं जानता है तो व्यर्थ है। पर बच्चों का दोष नहीं है। अब हम उसको संभालने के लिए, पहले जरूरत ही नहीं थी, अब जगह जगह हम कार्यशालाएं करते हैं, और जब कार्यशालाएं करते हैं तो बच्चे इतने खुश होते हैं, कुछ कहने को नहीं। तो हम लोग का सबका दायित्व है कि हमें अपने कल्चर के बारे में थोड़ा सा उनको बताएं। ठीक है, कोई भी संगीत बुरी नहीं होती है। फिल्में ही गाना क्या बहुत आसान है क्या? एक गाना उठाना, उठा के उसको गाना बहुत।
0: और तब जब कजली जैसी क्षेत्रीय लोकविधा को पद्मश्री सम्मान मिलता हो तो इसे जीवन कितना बदलता है और कितना हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जीवंत हो जाता है और लोगों को इससे जो बहुत प्रेरणा मिलती है। और हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। देखिये, पुरस्कार मिलना तो एक बहुत बड़ी बात तो है ही, लेकिन पुरस्कार मिलने के बाद जो एक हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें समाज में, अपने बच्चों में, अपने युवाओं में, युवतियों में हमें जगाना है, जो नहीं जानते हैं उनको बताना है। केवल हमें अपने तक सीमित नहीं रहा, हमने तो बहुत गाया बजाया। 55 साल

0: के ऊपर से हम गा रहे हैं, लेकिन अब हमें अपने बच्चों में ये चीज़ जगानी। ठीक है, हर आदमी कलाकार नहीं बनता है, पर उस चीज़ को समझ तो सकता है। हमें वहाँ तक लाना है कि आप हमारी जो हमारी विधा मिर्ज़ापुर की विधा है, जो जहाँ का आंचलिक है, वो उसको समझे, थोड़ा बहुत गाए, ना गाए तो कम से कम गाने की हिम्मत तो रखें। अगर गाना हो रहा है तो उसको सुनने की भी उतनी कुबत होनी चाहिए, उतने प्यार से सुने।
1: मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं, चाहे वो सभी तो गा नहीं पाते, ये तो माँ सरस्वती का वरदान जिसके गले में उतरता है, ये तो उनका वरदान है, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि अपना जो लोक संगीत है, देश की मिट्टी से निकला हुआ जो गीत है, संगीत है, उससे जुड़ने में बहुत गर्व का अनुभव करते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आज का युवा जब भी जाता है कहीं भी, उसके मन में ये जरूर होता है कि वहाँ का लोक संगीत या लोक नृत्य या वहाँ की माटी की खुशबू कहीं ना कहीं वो उसको छू पाए, उसको महसूस कर पाए। तो ये तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं एक जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके अंदर ये संभावनाएं तो हमें दिखती हैं, आपके प्रयास भी लगातार रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: मन में ये सवाल अब पैदा हो रहे कि ये यात्रा आपकी लंबी यात्रा की एक छोटी सी बच्ची चिटकनी खोलकर सुन रही है, देख रही है, गा रही है, और एक महिला जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, वो जो लंबी एक यात्रा है उसमें अपने कुछ ऐसे अनुभव हमारे सुनने वालों से बांटिए जो कि कहीं आपको मन छुए, कहीं आपको लगा कि ये अनुभव मैं जरूर बताना चाहूंगी।
1: देखिए, जिंदगी का बहुत सारे अनुभव हैं, कौन सा छोड़ें कौन सा बताएं। अपने यहाँ तो प्यार मिला ही है, हम बाहर विदेशों में गए हैं, आप सोचिए कि विदेश में लगता है ना कि कोई सुनने वाला नहीं है, बड़े प्यार से सुनते हैं, हमारे भी इससे ज्यादा, क्योंकि उनको पता है ना कि हमको जल्दी से सुन लो ये मिलेगा नहीं। जब जब गाए हैं तो लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया है और हम भाव विभोर हुए हैं, तो मेरी यात्रा तो बहुत सुंदर, कभी ऐसा नहीं हमें लगा कि हमने ये क्षेत्र चुन

0: कि कहीं गलती की, मतलब लगता है कि और मेरी लंबी आयु होगी तो हम और भी कुछ करेंगे।
1: जो हमारे भारतीय देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं, वहाँ बसे हुए हैं, वो अपने जब लोकगीतों से जुड़ते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक मन में छुअन होती है कि हमने इस बहाने से अपने देश की जो मिट्टी की खुशबू है वो उन तक पहुँचती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसा कभी अनुभव आपके साथ हुआ?
0: हाँ, हमारे अनुभव हुआ, लोगों ने वहाँ पे जो है बहुत सारी फरमाइशें की।
1: कौन सा देश था?
0: दुबई है, और उसके बाद मॉरिशस में तो बहुत ज्यादा, अब भूटान में भी कम ऐसे, लेकिन मॉरिशस में सबसे ज्यादा हमें हमें तो लगा नहीं कि हम भारत के बाहर आए हैं, बल्कि हमें लगा कि किसी गांव में तो नहीं, मतलब बोली उनकी बिल्कुल प्योर भोजपुरी में बोलते थे कोई, हम लोग अभी आपसे बात करें हम लोग खड़ी भाषा में बोल रहे हैं, वो लोग खड़ी भाषा में बोलते ही नहीं थे। तो उन्होंने बहुत सारी फरमाइशें हमसे की, झूला गीत का, झुनमुनिया कजरी का, पिया मेहंदी आपने सुना होगा, महिलाओं की जो फरमाइश होती है।
2: सुना दीजिए, तो आप एक झुनमुनिया कजरी जो है, जो मिर्जापुर की सबसे लोकप्रिय कजरी है, वो आप सुनाएं एक श्रोताओं को।

0: एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है।
1: हाँ हाँ जरूर।
0: बहुत सारे प्रयोग ऐसे हुए हैं फिल्म संगीत में भी, क्योंकि जब हम FM गोल्ड की बात करते हैं, इस चैनल की बात करते हैं, तो सुमधुर जो गीत हैं हिंदी सिनेमा के, वो भी हम साथ साथ सुनवाते हैं। तो फिल्मों में भी प्रिया बहुत
1: हाँ
0: सारे प्रयोग
1: बहुत
0: हुए हैं
1: बहुत
0: लोक
1: जिक्र,
0: गीतों के साथ,
1: बिल्कुल,
0: और चाहे झूला हो, चाहे होली हो,
1: चाहे वो
0: चाहे
1: कृष्ण
0: कजरी
1: हो,
0: हो, जी
1: जन्माष्टमी
0: हाँ
1: हो।
0: कृष्ण हो, लोक गीतों को लेकर हमारे जो संगीतकार हैं उन्होंने बहुत सारी कजरियां गवाई हैं, लता जी से भी, आशा जी से भी, और जो गायिकाएं हैं। कौन सी ऐसी कजरियां झूले हैं जो आपके मन को छूते हैं?
2: हाँ, बहुत सारे हमारे कजरियों को उन्होंने लिया है, तो इसमें एक है, हम अपना ही गा रहे हैं लेकिन धुन उनका बता रहे हैं कि
1: जरूर
2: उन्होंने जो लिया है। रिम झिम बरसेला सावनवा,

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: बहुत सारे गाने हैं, कौन से बताए, लेकिन चलिए जो
2: बंदिनी के लिए जो शैलेंद्र की लिखी हुई कजरी है कि आपके बरस भेज भैया को बाबुल,

0: तो माँ कहती है कि
1: बेटी तेरे बाबा तो बूढ़ा रे, कैसे भेजू बेटी कैसे भेजू।
2: और कजरियां भी हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, सावन से जुड़ी हुई हैं, कोई वो सुनाइए।

0: बहुत ही मीठी कजरी है, ये लोकगीत, ये लोकधुन अमर अजर है। इसी पर जो बंदिनी फिल्म का गीत है प्रिया, मैं चाहूंगी अब हम अपने सुनने वालों को सुना
1: वो
0: दें।
1: जरूर।

0: कजरी के भी कई रंग हैं। कहते हैं कि चैती कजरी अलग है, बनारसी कजरी अलग है और मिर्जापुर की कजरी अलग है। क्या रंग हैं सब?
1: बनारस और मिर्जापुर में देखिए, जो बनारस के गाते हैं धुन लगभग लगभग एक ही है, लेकिन बनारस में ज्यादातर ठुमरी अंग से गाते हैं
0: जी।
1: लेकिन दो लाइन हम सुनाते हैं, हम तो क्लासिकल के हैं नहीं, लेकिन एक झलक आपको दे सकते हैं। जैसे एक है,

0: तो ये हमने आपको बताया कि हमने गाया समन झरी लागे वो धीरे धीरे, इसको और जब ठुमरी अंग में तो खूब अच्छे से विस्तार करके धीरे धीरे उसमें मीर खटका मुरकी जितना भी सुंदर बना सकते हैं। तो इन दोनों में हमारे मिर्जापुर बनारस में ये फर्क
1: जी जी। आज तो कजरी हमारे भीतर ही उतर गया है, तो लोक संपदा से भरी हुई और मिठास से भरी हुई इस कजरी को।
0: कितना रिच है आप सजी, झूला किन्ने डारा रे अमरैया। तो कहाँ कहाँ की बात करेंगी, दिन और रात सब भी जाएगा, लेकिन जी, इसकी चर्चा खत्म नहीं होगी।
1: आप ही समझ, इस विपुल संपदा को आप समेटते हैं और अपने श्रोताओं को।
2: जी बिल्कुल प्रिया, मन तो कह रहा है कि अमरैयों में ही रहें, कजरी सुनते रहें, लेकिन जो घड़ी का अनुशासन है वो तो हमें मानना होगा।
1: बिल्कुल,
0: चलिए जाते जाते हम आपको, आपने कहा था पिया मेहंदी सुनाने को, तो हम आपको सुना दें मेरे बड़ा प्रिय, कजरी तो सभी प्रिय है। तो सावन के महीने में बहनों की फरमाइश है।
1: जी जी,
0: क्या फरमाइश है देखिए। पिया मेहंदी, पिया मेहंदी ले आए द मोती झील से, जाय के साइकिल से ना। पिया मेहंदी लाओ कहाँ से, बहुत दूर पेड़ है, और किसी से साइकिल से,
2: साइकिल पर
0: जा। मेहंदी ले आए द मोती झील से, जाय के साइकिल से ना। और यही है नहीं, पिया मेहंदी ले आवा छोटी ननी जिसे पिसावा, पिया मेहंदी ले आवा, पिया मेहंदी ले आवा छोटी ननदी से पिसावा, हमरे हथवा में लगाए द कांटा कील से, जाके साइकिल से।
2: क्या बात, मन तो करता है सुनते रहें प्रिया, लेकिन कार्यक्रम समेटने का समय हो चुका है, तो हम समेटते हैं इस कार्यक्रम को। आज के मेहमान, और दोस्तों हमारी आज की मेहमान थी उर्मिला श्रीवास्तव, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 2024 की, और मेरे साथ है मेरी सखी प्रिया।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार,
0: धन्यवाद आपको।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दवानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं

0: किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

12:11 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी, और आज आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए फिल्म लेकर आए हैं, वो ये दिखाती है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। पंछी कितनी भी उड़ान भर ले, लेकिन शाम को आता वो अपने घोंसले में ही है। जी हां, एक ऐसी फिल्म जो बताती है देश प्रेम को, जो बताती है अपनी प्यार को, संस्कृति को और अपनेपन को, मानवीय मूल्यों को आदर्श मानने वाली ये फिल्म है 1997 में रिलीज हुई फिल्म परदेश।

इसका निर्माण और निर्देशन किया सुभाष घई ने, कहानी और पटकथा भी उन्होंने लिखी और संवाद थे जावेद सिद्दीकी के, और फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोक नाथ, हिमानी शिवपुरी। और यहाँ आपको बता दें कि महिमा चौधरी और अपूर्व अग्निहोत्री की ये पहली फिल्म थी, यानी डेब्यू था उनका। कैमरा पक्षभार संभाला कबीर लाल ने, एडिटर थे इस फिल्म के रेणु सलूजा, संगीत दिया नदीम श्रवण ने और गीत लिखे आनंद बख्शी ने। फिल्म में अगर पात्रों की बात की जाए कि किस कलाकार ने कौन सा पात्र निभाया, तो आपको बता दें किशोरी लाल के किरदार में जो थे वो थे किशोरी लाल के किरदार में अमरीश पुरी, और अर्जुन के रूप में थे शाहरुख खान, जो कि किशोरी लाल जिन्हें पाल पोसकर पढ़ा करते हैं। गंगा के किरदार में थी महिमा चौधरी, और राजीव का किरदार निभाया था अपूर्व अग्निहोत्री ने, राजीव जो किशोरी लाल का बेटा है। और उसके बाद आलोकनाथ थे गंगा के पिता सूरज देव की भूमिका में, पद्मावती राव थी नर्मदा के किरदार में, और दीना पाठक थी दादी माँ के किरदार में, गंगा की दादी। इसके अलावा गंगा की बुआ का किरदार कुलवंती का यानी किरदार निभाया था हिमानी शिवपुरी ने। इसके अलावा नीता, संदीप पाल, स्मिता जयकर, ये सभी पवन मल्होत्रा, प्राची देव साथी, आदित्य नारायण, अजय नागरथ, सुभाष घई भी एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे इस फिल्म में। ये सभी कलाकार थे छोटी छोटी भूमिकाओं में, लेकिन सभी ने अपना असर छोड़ा, अपनी छाप छोड़ी। फिल्म की कहानी शुरू होती है किशोरी लाल से। किशोरी लाल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है अमेरिका का, भारत से गया, वहां पर कड़ी मेहनत की, नाम कमाया, पैसा कमाया, शोहरत कमाई, और आज वहां का सबसे अमीर व्यवसायी बन गया है भारत का। लेकिन अपने देश को कभी नहीं भूला, चाहता है कि अपने इकलौते बेटे राजीव की शादी वो एक ऐसी घरेलू संस्कारी भारतीय लड़की से करे जो राजीव का ताउम्र ख्याल भी रखे और उसे अपने भारतीय संस्कृति से दूर न जाने दे। लिहाजा वो एक दिन भारत आता है। भारत आने के बाद उसके बचपन का जो दोस्त है उससे मिलने के लिए वो पहुंच जाता है उसके गांव, और वहां पर पहुंचने के बाद देखता है अपने दोस्त की बेटी गंगा को। गंगा जो उसे पहली नजर में ही भा गई, भारत में जन्मी पली बड़ी गंगा का मानना यह है कि भारत से सुंदर कुछ नहीं। और वहीं जब किशोरी लाल की विचार वो जानती है तो वो उसके करीब और हो जाती है, और जो कि उसने ये बताया गया है कि किशोरी लाल जो है उसके पिता का बचपन का दोस्त है, और यानी सूरज देव का, तो सूरज देव और किशोरी लाल की दोस्ती है। अब किशोरी लाल जब गंगा से इतना प्रभावित होता है तो वो सूरज देव से उसका हाथ मांग ही लेता है अपने बेटे राजीव के लिए। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जो मेरे विचार हैं वही गंगा के भी विचार हैं, कि हम कहीं भी रहें भारत से सुंदर कुछ भी नहीं।

किशोरी लाल अब ये ठान लेता है कि जिस तरह के विचार उसके हैं वैसी ही सोच गंगा की भी है और गंगा ही मेरे बेटे राजीव के लिए बिल्कुल सही पत्नी साबित होगी। सूर्यदेव से हाथ मांगता है, सूरज कोई इनकार नहीं करता, लेकिन घर वाले बेटी के प्यार में कहते हैं कि इतनी दूर बेटी को कैसे भेजें। लेकिन आखिरकार सभी की रजामंदी हो जाती है, किशोरी लाल वापस अमरीका चला जाता है और वहां जाने के बाद अपने पूरे परिवार की फोटोग्राफ्स जो है गंगा को भेजता है। अब गंगा के जो बहन भाई हैं वो उसे छेड़ते हैं कि इसमें बच्चे पहचानो के कौन है राजीव, क्योंकि पूरे परिवार की फोटो में राजीव के साथ साथ अर्जुन की भी तस्वीर है। अर्जुन जो कि किशोरीलाल की एक मुंह बोली दूर की बहन का बेटा है, जिसे बचपन से पाल पोस कर किशोरीलाल ने ही बड़ा किया, और अर्जुन भी अपना सब कुछ किशोरीलाल को ही मानता है, डैडी कहकर पुकारता है। अब गंगा के सामने दोनों तस्वीरें हैं, पहचान नहीं पा रही कौन है, लेकिन आखिरकार हाथ रख देती है वो राजीव की ही तस्वीर पर। बहन भाई मजाक बनाते हैं, छेड़ते हैं और साथ ही साथ मायूस भी होते हैं कि हमें छोड़कर गंगा कहाँ चली। पूछते हैं तो गंगा का जवाब आता है,

खुशी की स्थिति भी है गंगा के साथ और असमंजस का भी एक माहौल है। संस्कारों में पली बड़ी है, माँ बाप की आज्ञा के आगे सर झुकाकर वो खुशी खुशी उस घर में जाने को तैयार है जहां वो किसी को नहीं जानती, बल्कि अपना देश छोड़ने को तैयार है। बस उसे केवल चाहिए अच्छा पति, अच्छे संस्कार और एक वफादार साथी। इसी बीच राजीव को किशोरीलाल भेज देते हैं भारत गंगा को देखने के लिए, मिलने के लिए, ताकि मेल मुलाकात हो, एक दूसरे से बात हो, एक दूसरे को समझे। साथ में आता है अर्जुन। अर्जुन पहले आता है, राजीव अभी बाहर है, गांव नहीं पहुंचा, क्योंकि अर्जुन आया है राजीव की इच्छाओं के हिसाब से पूरा घर सेटअप करने के लिए। सबको बताता है कि राजीव को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। उसकी ये अदा देखकर, उसका ये व्यवहार देखकर और सबके प्रति प्रेम देखकर गंगा भी उससे काफी प्रभावित होती है। गंगा कहती है कि आज से हम एक अच्छे दोस्त बन गए हैं, तुम उससे कभी कुछ छुपाना नहीं, मैं तुम्हारे पे बहुत भरोसा करने लग गई हूं। इस बीच राजीव भी पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे को जानना समझना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मौका नहीं मिलता क्योंकि भारतीय संस्कार आड़े आते हैं। शादी से पहले भला लड़की को कैसे बाहर भेज दें लड़के के साथ। तब अर्जुन भूमिका निभाता है यहां पर एक अच्छे दोस्त होने की, घर वालों को समझाता है कि इन दोनों को एक दूसरे से बात करने का अकेले में मौका देते हैं। पिकनिक के बहाने सभी जाते हैं और वहां पर गंगा और राजीव एक दूसरे को निहारते हैं, अपने मन की बात एक दूसरे से कहते हैं। तब अर्जुन उनके साथ ही होता है। तब अर्जुन कहता है,

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
4: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली

0: लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

बारह बजकर 39 मिनट और 10 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है परदेश। अब राजीव पहुंचता है, गंगा को देखता है, गंगा उसे निहारती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन गंगा राजीव के बारे में और जानना चाहती है। अर्जुन से कहती है कि मुझे तुम सच्चाई बताओ। तस्वीर देखकर किसी की शख्सियत का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। तब अर्जुन कहता है कि राजीव लाखों में नहीं करोड़ों में एक है और तुम्हारा प्यार उसे मिलेगा, तुम्हारा साथ मिलेगा तो और अच्छा इंसान भी बनेगा। उसमें कोई ऐप नहीं है, वो एक भारतीय का सच्चा बेटा है। अब उस पर विश्वास करती है गंगा, लेकिन कहीं ना कहीं राजीव के मन में एक दर्द है, एक कसक है कि वो किशोरीलाल के एहसानों तले दबा हुआ राजीव के बारे में गलत इमेज, गलत पिक्चर शो कर रहा है, दिखा रहा है गंगा को। दरअसल राजीव ऐसा नहीं है, वो एक अमीर बाप का एक बिगड़ैल बेटा है जिसे तमाम तरह के ऐब हैं और वो इंसानियत और भारतीय संस्कारों से कोसों कोसों दूर है, जबकि गंगा भारतीय संस्कारों में पली बड़ी है। लेकिन अब वो क्या करे, वक्त के ऊपर छोड़ देता है कि वक्त सब ठीक कर देगा। और इधर धीरे धीरे दोस्ती गहराती है गंगा और अर्जुन की, और अर्जुन के दिल में कहीं ना कहीं एक कसक सी है कि काश काश गंगा उसकी होती, लेकिन वो बात किसी से कह नहीं सकता।

इंसान जो चाहे अगर उसे मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, ये बात अर्जुन जानता है। इसी बीच राजीव अपने पिता से कहता है कि क्यों ना गंगा हमारे साथ अमरीका चले, एक दो महीने रहे, वहां के तौर तरीके जाने, ताकि शादी के बाद उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये बात सभी को पसंद आती है, लेकिन गंगा के घर वाले कहते हैं कि नहीं, हम बिना शादी के लड़की को नहीं भेज सकते। तब किशोरीलाल कहता है कि ठीक है, हम सगाई यहां कर देते हैं, उसके बाद ले जाते हैं और शादी एक दो महीने बाद अमरीका में कर देंगे। सभी राजी हो जाते हैं, सगाई हो जाती है।

खुशी खुशी गंगा परदेश आ जाती है, लेकिन वहां आने के बाद उसे राजीव की असलियत पता चलती है कि राजीव किस कदर बिगड़ा हुआ नौजवान है। तमाम तरह के ऐब हैं उसके अंदर, यानी अर्जुन ने उसे झूठ बोला। नाराज भी होती है अर्जुन से, लेकिन अर्जुन कहता है मैंने जो किया इस घर की खुशी के लिए किया। इसी बीच घर वालों के कहने पर, खासतौर से किशोरीलाल की बहन के कहने पर कि गंगा और अर्जुन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, किशोरीलाल धोखे से अर्जुन को दूसरे शहर भेज देता है ताकि वो राजीव और गंगा से दूर हो जाए और कहीं गंगा के प्यार में राजीव के कोई नुकसान ना हो। इस बीच राजीव किशोरीलाल का हुक्म मानकर निकल पड़ता है दूसरे शहर की ओर, बिना बताए गंगा को, बिना बताए किसी को भी। और गंगा हैरान है कि आखिर अर्जुन क्यों चला गया। राजीव भी अर्जुन को कह चुका है कि तुम अपने काम से काम रखो, उतना ही दखल दो जितना तुम्हारा बनता है। दोस्ती का फर्ज तुमने यहां तक निभा दिया, इसके बाद मेरी और गंगा की लाइफ में, जिंदगी में तुम्हें दखल अंदाजी करने की कतई जरूरत नहीं है। निकल पड़ा है अर्जुन दिल पर पत्थर रखकर, भूलना चाहता है बिताए हुए पलों को गंगा के साथ, लेकिन कमबख्त दिल क्या करे, भूलता नहीं है।

इस बीच गंगा देखती है राजीव की रंगरलियों वाली पार्टीज और वहां पर जानती है राजीव की असली असलियत। और इस बीच राजीव एक दिन होटल में उसकी असमत से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है। तब राजीव को धिक्कारते हुए अपनी सगाई की अंगूठी उसके मुंह पर फेंकते हुए गंगा निकल पड़ती है होटल से। अनजान शहर, अनजान देश और अनजान रास्तों पर भटकती हुई जब आगे बढ़ रही है तो अर्जुन उसे ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। अर्जुन वहां से उसे लेता है और सीधा भारत उसके घर ले आता है, सारी सच्चाई बताता है वहां पर, लेकिन कोई विश्वास नहीं।

उधर किशोरी लाल सूरज को बता देते हैं फोन करके कि अर्जुन गंगा को हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो ये सब नाटक कर रहा है, प्रपंच रच रहा है। सूरज आग बबूला होकर अर्जुन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब गंगा बताती है असलियत क्या है। इस बीच राजीव पहुंचता है अपने साथियों के साथ वहां पर, सीधा अमरीका से, और वो अर्जुन को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। हाथापाई दोनों में होती है, किशोरी लाल भी पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि असलियत क्या है। तो पहले तो वो अर्जुन को धिक्कारते हैं कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा किया था। तब गंगा बताती है असलियत कि वहां पर अमरीका में राजीव ने क्या किया। दुखी मन से बताती है कि वो मन मंदिर में बिठा चुकी है अर्जुन को। पहले वो राजीव को अपने माँ बाप के कहने पर पसंद कर रही थी, लेकिन राजीव की आदतों ने, उसकी अय्याशियों ने उसके सपनों को चूर चूर कर दिया है।

जब गंगा के मन की असलियत सबको पता चलती है, हालांकि राज अर्जुन कहता है कि मैं गंगा पर अपना कोई अधिकार नहीं दिखा सकता और वो वहां से जाने लगता है, तब एहसास होता है किशोरीलाल को, सूरजदेव को, सभी लोगों को कि गंगा और अर्जुन बने ही एक दूसरे के लिए हैं। गंगा बहुत दौड़ती है, किशोरीलाल भी कहते हैं कि अब गंगा की शादी होगी तो मेरे दूसरे बेटे यानी अर्जुन के साथ। ये सुनने के बाद गंगा दौड़ती है अर्जुन को ढूंढने के लिए। वहां पर अर्जुन खेतों में बैठा गंगा के छोटे बहन भाइयों के साथ उनका दिल बहला रहा है। सभी प्यार करते हैं अर्जुन को, दिल से चाहते हैं, बस फिर क्या था, गंगा का हाथ अर्जुन के हाथ में दे दिया जाता है। इस तरह से मिलन होता है गंगा और अर्जुन का। वापस आती है परदेश गंगा, लेकिन अर्जुन की बनकर जैसा साथी उसने चाहा था वैसा ही उसे मिला। श्रोताओं, ये थी कहानी फिल्म परदेश की। उम्मीद है आपको गीत और इसके गाने पसंद आए होंगे और कहानी पसंद आई होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद 1:10 पर आपसे फिर भेंट होगी। कार्यक्रम होगा दिल ढूंढता है।

0: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए

0: यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। यात्रा इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपना पहला मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक उम्मीद है। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. The NTA has also opened the challenge window, which will remain open till the 18th of August. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. It added that candidates must support each challenge with documentary evidence. The agency also noted challenges submitted through any other mode will not be entertained. The nation pays homage to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary today. The BJP stalwart had breathed his last on this day in 2018. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at his memorial Sadaiv Atal in the national capital today. Former President Ramnath Kovind, Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister Rajnath Singh, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and BJP National President Nitin Naveen were also present on the occasion. India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi on Tuesday. This meeting will be preceded by BRICS Senior Officers meeting of the Environment Working Group and Contact Group on Climate Change and Sustainable Development tomorrow. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS Environment Ministers meeting would be presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of a new dairy plant at the Alwar Saras Dairy Complex in Rajasthan today. He will also inaugurate the dairy processing plants and cattle feed plants of various milk unions. At the event, the e-foundation stone will be laid and various development works worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be inaugurated. Additionally, appointment letters will be distributed to more than 10,500

1:11 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ कार्यक्रम है मधुर गीतों का, यानी दिल ढूंढता है। जी हाँ, कार्यक्रम दिल ढूंढता है। मैं आज आपके साथ हूं, मैं आशीष, नमस्कार। ऐसे गीत जो कल भी दिल के बेहद करीब थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, जिनमें छुपी है जिंदगी की असली हकीकत। इंसान ऐसे ही गीतों को गुनगुनाता हुआ, सुनता हुआ अपने जिंदगी के मायने कई बार तलाश करता है। जज्बात जो दिल के बेहद करीब हैं, जीवन की सच्चाई दिखाते हैं। और हमारा फिल्म संगीत तो लबरेज है ऐसे जज्बात से। कभी खुशी के गीत हमें गुदगुदाते हैं, तो कभी गमजदा गीतों से हम वाबस्ता होते हैं, अपने माजी में जाते हैं, कुछ खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हैं। कुछ ऐसे ही गीत आपकी पेश नजर हैं। शुरुआत करते हैं फिल्म सफर के उस यादगार गीत से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत से सवारा कल्याण जी आनंद जी ने, और गीतकार हैं इंदिवर।

जी हाँ, जिंदगी का सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। कई बार ऐसे सवालात भी आते हैं सामने जिनका जवाब तलाशता है आदमी, लेकिन खुद से सवाल करता है, खुद ही जवाब दे देता है। कुछ ऐसा ही कहा गया फिल्म अनोखी रात के इस गीत में, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, संगीत से सवारा रोशन ने और गीतकार कैफी आजमी।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
7: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: तो क्या है।
1: श्रोताओ, ये गीत आपने सुना फिल्म प्यासा का। गायक कलाकार मोहम्मद रफी, संगीतकार एस डी बर्मन और गीतकार साहिर लुधियानवी। और अब जाने से पहले आपको गीत एक और सुनवाते हैं। फिल्म है दिल ने पुकारा, गायक कलाकार मुकेश, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और गीतकार इंदिवर। इस गीत के बाद आप सुनेंगे संस्कृत साप्ताहिकी।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। इम्तिहानात का इनेकाद करने से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 के 84 मजामीन के लिए उबूरी आंसर कीज जारी कर दी हैं। एतराजात दाखिल करने की सहूलत मंगल तक दस्तियाब रहेगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी इम्तिहान में बेजाबतगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा ने वजीर आला हेमंत सोरेन के इस्तीफे का मुतालबा किया है। आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में उनके मुजस्मे की नकाब कुशाई की। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर फिर से हवा के कम दबाव का हल्का बनने से शुमाली उड़ीसा में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। बैडमिंटन में भारत कल से शुरू होने वाली BWF आलमी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और क्रिकेट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में तारीखी कामयाबी हासिल की है। अब खबरें तफसील से। इम्तिहानात का इनेकाद करने से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के इम्तिहान के 84 मजामीन के लिए उबूरी आंसर कीज जारी कर दी हैं। एनटीए ने चैलेंज करने से मुतालिक सहूलत भी फराहम की है, जो इस महीने की 18 तारीख तक दस्तियाब रहेगी। उम्मीदवार यूजीसी नेट पोर्टल के जरिए आंसर कीज को ऑनलाइन चैलेंज कर सकते हैं। एजेंसी ने कहा है कि उम्मीदवारों को हर चैलेंज के ताल्लुक से दस्तावेजी सबूत पेश करना होगा। एनटीए ने यह भी कहा है कि किसी दीगर मोड के तवसुत से पेश किए गए चैलेंज को कबूल नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस अदा करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त है। एनटीए ने कहा है कि अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी समेत बकिया 3 मजामीन के लिए सवालनामों में मुख्तलिफ तरह की गलतियों के ताल्लुक से शिकायतों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसने कहा है कि कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर इन 3 मजामीन के सिलसिले में एक अलहदा पब्लिक नोटिस आज बाद में जारी किया जाएगा। एनटीए ने मुतालिका उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वो एजेंसी की वेबसाइट और इसके तस्दीकशुदा सोशल मीडिया हैंडल्स पर दस्तयाब जानकारी पर ही भरोसा करें। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा ने वजीर आला हेमंत सोरेन के इस्तीफे का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने पहली मरतबा इस तरह की मांग की है और ऐलान किया है कि इस महीने की 20 तारीख को वजीर आला की रिहायशगाह के बाहर बड़ा एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी गई तो वो अपना एजिटेशन जारी रखेंगे। रिफॉर्म मंच ने कहा है कि आने वाले दिनों में एजिटेशन में तेजी लाई जाएगी।

0: और इस सिलसिले में भगत सिंह के नज़रियात और जज्बे से तरगीब हासिल की जाएगी। ये तलबा JPSC और JSSC CGL इम्तिहानात रद्द करने और मुबैना बेजाबतगियों की जाँच CBI से कराए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। BJP ने कांग्रेस पार्टी पर यौम आज़ादी के मौके पर कौमी गीत वंदे मातरम की मुखालफत करने का इल्ज़ाम लगाया है। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BJP के तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान कांग्रेस की सरकर्दा रहनुमा सोनिया गांधी ने वंदे मातरम गाए जाने को रोकने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ कौमी गीत बल्कि आइन और मुल्क के अवाम की भी तौहीन की है।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: जनाब प्रदीप भंडारी ने केरला की कांग्रेस सरकार पर भी कल सरकारी प्रोग्रामों में वंदे मातरम गाए जाने से गुरेज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि केरला सरकार ने पूरी तरह कांग्रेस के रहनुमाओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मंशा के मुताबिक काम किया है। इधर कांग्रेस के तर्जुमान जयराम रमेश ने BJP के इल्ज़ाम पर कहा कि यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान पार्टी हेडक्वार्टर्स पर कौमी गीत वंदे मातरम पूरा गाया गया।
2: संसद में इस पर बहस हुई, 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। BJP के सरकर्दा रहनुमा अटल बिहारी वाजपेयी ने 2018 में आज के ही दिन आखिरी सांस ली थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी राजधानी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मेमोरियल सदैव अटल पर जाकर उन्हें गुलाए अकीदत नज़र किए। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और BJP के कौमी सदर नितिन नबीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि साबिक वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने वजीर आज़म का ओहदा संभालने से पहले तवील अरसा अपोजिशन में गुजारा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसीलिए वाजपेयी जी को अजात शत्रु कहा जाता है, इसका मतलब ऐसा शख्स है जिसका कोई दुश्मन न हो। जनाब अमित शाह आज साबिक वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर उनके मुजस्मे की नकाब कुशाई और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में निम्बहरा के मुकाम पर एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। 1.5 करोड़ से अधिक लागत से अटल जी के व्यक्तित्व जैसी भव्य प्रतिमा यहाँ पर प्रस्थापित की है। इसके लिए काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूँ।
0: दिल्ली में अमृत उद्यान को आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है और ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। ये बाग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला है और इसमें शाम 5 बजे तक जाने की इजाज़त है। अमृत उद्यान रखरखाव के लिए हर पीर को बंद रहेगा। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर फिर से हवा के कम दबाव का हल्का बनने से शुमाली उड़ीसा में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने वहां कल तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। बैतरनी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ी बलिंगा नदी का पानी कई इलाकों में भर गया है। इसके मद्देनज़र 6 जिलों बालासोर,

0: सड़क जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा में सख्त चौकसी बरती जा रही है। 500 से ज्यादा गांवों में तकरीबन 270,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। 95,000 से ज्यादा अफराद को इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत कल से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने जा रही BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ख्वातीन के सिंगल्स में PV सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगे। मर्दों के सिंगल्स में लक्ष्य सेन शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट से तारीखी कामयाबी हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर बांग्लादेश ने पहली मर्तबा टेस्ट मैच जीता है और ये ऑस्ट्रेलिया पर उसकी दूसरी जीत है। खास खबरें एक बार फिर। इम्तिहानात का इनेकाद करने से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC नीट 2026 के 84 मजामीन के लिए इम्तिहानात का इनेकाद करने से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 के 84 मजामीन के लिए उबूरी आंसर कीज जारी कर दी हैं। एतराजात दाखिल करने की सहूलत मंगल तक दस्तियाब रहेगी। झारखंड में JPSC और JSSC इम्तिहान में बेजाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा ने वजीर आला हेमंत सोरेन के इस्तीफे का मुतालबा किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani, and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of former PM Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on his death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And now the news in detail. The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. Our correspondent reports, the NTA has also opened the challenge window, which will remain open till the 18th of August.
2: Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. A processing fee of 200 rupees per question challenged will be applicable. Candidates must support each challenge with documentary evidence. Challenges submitted through any other mode will not be entertained. The last date for payment of the processing fee is 18th of this month. The NTA said a committee was constituted to examine complaints regarding various types of errors in the question papers for the remaining three subjects, including English, Commerce and Sociology. It said that based on the committee's recommendations, a separate public notice concerning these three subjects will be issued later today. Saklan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
1: The JPSC-JSSC aspirants' agitation in Jharkhand has intensified with protesters demanding, for the first time, the resignation of Chief Minister Hemant Soren over alleged irregularities in recruitment examinations. As the protest entered its 22nd day, student leaders said their key demands remained unresolved. Here's a report.
3: The JPSC-JSSC Reform Munch has given the state government an ultimatum to take positive action by August 18th. The protesters have also, for the first time, demanded the resignation of Chief Minister Hemant Soren. They have announced a major protest outside the Chief Minister's residence on August 20th and said they would continue their agitation there if their demands are not addressed. The Reform Munch has said the agitation will be intensified in the coming days and will draw inspiration from the ideas and spirit of Bhagat Singh. Mahvish Rahman, Akashwani.

0: प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
1: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सबके बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
0: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
2: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
3: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट। अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक

0: सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथाचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा कौली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त

0: से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

2:30 और 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार।

फिल्म हंसते जख्म का ये आपने गीत सुना, गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और बलबीर। संगीत से संवारा इस गीत को मदन मोहन ने और गीतकार कैफी आजमी। और अब आपके लिए गीत है फिल्म जवानी दीवानी का, जिसके गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले। संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

फिल्म मेला का आपने ये गीत सुना जिसे गाया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, संगीत से सवारा आर डी बर्मन ने और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। और अगला गीत आपके लिए है फिल्म पवित्र पापी से, गायक कलाकार आशा भोंसले और मोहम्मद रफी, संगीतकार और गीतकार प्रेम धवन।

पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के,

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्म दाग से। गायक कलाकार लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार साहिर लुधियानवी। आशीष को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तरों को चुनौती देने के लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार्य नहीं होंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। एनटीए ने उम्मीदवारों से केवल अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कल इस संबंध में पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए कही। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के कारण उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जालका और बुद्धबालंग नदियों में उफान के कारण 6 जिलों में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इनमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिले शामिल हैं।

श्रोताओं, अब समय हो गया है हमारे बाल कार्यक्रम रेडियो किड्स का। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी हैं सौम्या, अरहम, आयत, उत्सवी और कुशाग्र।

हेलो प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो किड्स। तो नन्हे दोस्तों, हो जाइए तैयार मेरे साथ ढेर सारी जानकारी, मजेदार कविताओं और प्यारे प्यारे गीतों के लिए, क्योंकि आज का कार्यक्रम होने वाला है कुछ खास। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक प्यारे से गीत के साथ।

0: मेरा नाम है आयत
1: और मेरा नाम है अरहम। अच्छा आयत, एक बात बताओ, आपने 15 अगस्त कैसे मनाया?
0: हमने तो 15 अगस्त बहुत अच्छे से मनाया। सबसे पहले हमने स्कूल में फ्लैग होस्टिंग की और राष्ट्रगान गाया। इसके बाद देशभक्ति की गीत, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। हमें तो बहुत मजा आया उसमें।
1: वाह, क्या आपने भी किसी कार्यक्रम में भाग लिया?
0: हाँ, मैंने देशभक्ति पर एक कविता और एक गीत सुनाया था।
1: हमें भी कुछ सुनाओ।
0: हाँ, क्यों नहीं। आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ तिरंगे पर एक कविता, जिसका नाम है तिरंगा और मेरा देश। जब जब तिरंगा लहराता है, हर भारतवासी मुस्काता है। भारत माँ की शान है ये, हम सबकी पहचान है ये। केसरिया साहस सिखलाता, सफेद शांति का पाठ पढ़ाता। हरा रंग हरियाली लाए, अशोक चक्र आगे बढ़ाए। वीरों ने इसकी शान बढ़ाई, हंसते हंसते जान गवाई। हम भी उनका मान करेंगे, देश का ऊंचा नाम करेंगे। तिरंगे का सम्मान करेंगे, सच्चे भारतवासी बनेंगे। दिल से सब ये बात रटें, जय हिंद जय भारत कहें।
1: 15 अगस्त हमें देश की आज़ादी और उसके लिए बलिदान की याद दिलाता है। अच्छा आयत, क्या आप बता सकती हो कि आपने 15 अगस्त मनाने के बाद तिरंगे को कैसे संभाल के रखा?
0: मैंने तिरंगे को सम्मान पूर्वक उतार कर साफ सुथरी और सूखी जगह पर सुरक्षित रखा है, क्योंकि तिरंगा हमारे देश के गौरव प्रतीक है, इसलिए उसका सम्मान हमेशा करना चाहिए।
1: हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी हमारा तिरंगा संभाल के अलमारी में रखा है।

ही कफन।

0: अच्छा, और हम आपने 15 अगस्त कैसे मनाया?
1: मैंने भी स्कूल में देशभक्ति की कविता सुनाई।
0: क्या आप हमें सुनाओगे?
1: ठीक है, आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है नन्ना भारत का वीर। मैं भारत का नन्ना वीर, दिल में बसता देश अधीर। तिरंगा मेरी शान है, भारत मेरी पहचान है। सच की राह पर चलूंगा, हर मुश्किल से लड़ लूंगा। बड़ों का मैं मान करूं, सबका दिल से सम्मान करूं। मेहनत से आगे बढ़ूंगा, हर सपना पूरा करूंगा। पेड़ लगा कर देश सजाऊं, सबको प्रेम का पाठ पढ़ाऊं। नदियां पर्वत खेत हमारे लगते हैं सबसे ही प्यार। मिलजुल कर हम साथ रहेंगे, भारत का सम्मान करेंगे। जब बड़ा मैं हो जाऊंगा, देश के काम मैं आऊंगा। मेरा बस एक ही नारा, जय हिंद भारत सबसे प्यारा।
2: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौम्य है और मैं सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल रोहिणी की कक्षा 8वीं अ की छात्रा हूँ। कल हम सबने 15 अगस्त बहुत उत्साह पूर्वक मनाया। पता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान का अहवाद किया है। 9 अगस्त से 17 अगस्त तक यह मनाया जाएगा, जिसमें हम अपने अपने घर पर तिरंगा फहराकर और पोर्टल पर अपनी सेल्फी अपलोड करके डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।

0: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उत्सवी सिंह है। आज मैं आप लोगों को एक पोयम सुनाने वाली हूँ।
1: बच्चों सब हिल मिल कर रहना, देखो झूठ कभी ना कहना, किसी बात पे जिद ना करना और नहीं आपस में लड़ना। माता पिता का कहना मानो, रोना डरना कभी न जानो, पढ़ लिख कर बनना होशियार, सभी करेंगे तुमको प्यार।

तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको भी बहुत ही बढ़िया लगा होगा आज का कार्यक्रम। तो हम अगले रविवार फिर मिलेंगे दोस्तों नए दोस्तों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुए यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवायम ने किझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के कारण उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जालका और बुद्ध बालंग नदियों में उफान के कारण 6 जिलों में कई इलाके जलमग्न है। इनमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिले शामिल हैं, जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 364 रन बना लिए हैं।

बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी का पहले दौर में मुकाबला मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अपनाए। नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: लीजिए सुनिए फिल्मी नगमा, फिल्म है आपकी कसम, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।
4: सुनो
5: कहा
4: कहा
5: सुना।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
0: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: लीजिए सुनिए अगला नगमा। फिल्म है अजनबी और स्वर है किशोर कुमार का।

0: भारतीय आर्थिक सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2026 का लिखित परिणाम घोषित कर दिया गया है और ये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है upsc.gov.in। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET में भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित हैं, निश्चित अवधि के अनुबंध के आधार पर इन पदों के लिए। सीनियर कंसल्टेंट एक पद, कंसल्टेंट ग्रेड टू एक पद, कंसल्टेंट ग्रेड वन 4 पद, यंग प्रोफेशनल 7 पद, डेटा एनालिस्ट 2 पद, रिसर्च एनालिस्ट 2 पद और थीमेटिक लीड 2 पद। परफॉर्मेंस और संगठन की जरूरतों के आधार पर 2 वर्ष की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष तक के लिए हो सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 अगस्त 2026। आवेदन करने के लिए इस लिंक पर आप जा सकते हैं ncvet.gov.in/career-opportunities। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। वरिष्ठ अभियंता प्रक्रिया अभियांत्रिकी में, रिक्तियों की संख्या 5 है। अभियंता और वरिष्ठ अभियंता संचालन एवं उपयोगिता में, रिक्तियों की संख्या 5। वरिष्ठ अभियंता तथा अभियंता, रिक्तियों की संख्या 3। वरिष्ठ अभियंता और अभियंता यूरिया क्षेत्र में, रिक्तियों की संख्या 5। विद्युत क्षेत्र में रिक्तियों की संख्या 2। यांत्रिकी क्षेत्र में 2। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 3। वरिष्ठ अधिकारी और अधिकारी मानव संसाधन विभाग में रिक्तियों की संख्या 5। अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी विपणन क्षेत्र में रिक्तियों की संख्या 3। चिकित्सा क्षेत्र में उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक तथा अधिकारी, रिक्तियों की संख्या 2। गैर कार्यपालक संदर्भ में कनिष्ठ अभियंता सहायक, रिक्तियों की संख्या 6। कनिष्ठ अभियंता सहायक अमोनिया की विशेषज्ञता में, रिक्तियों की संख्या 7। यूरिया की विशेषज्ञता में रिक्तियों की संख्या 3। यूरिया संयंत्र संचालन और प्रबंधन में 8। उपकरणीकरण विशेषज्ञता के साथ कनिष्ठ अभियंता सहायकों की भी आवश्यकता है, रिक्तियों की संख्या 12। गुणवत्ता आश्वासन एवं निरीक्षण में रिक्तियों की संख्या 7। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 26 अगस्त 2026। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 15 से 21 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आया है देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत कुमार सिन्हा। हेलो प्रशांत।
2: हेलो एंड गुड डे लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम प्रशांत कुमार सिन्हा एंड विथ मी टुडे इज माय को-होस्ट वैष्णवी। लिसनर्स, फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दीस कमिंग ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वैष्णवी, लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
1: एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए, आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय।
2: स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट जेपीएससी जेएसएससी एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज इन झारखंड, डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया।
2: फ्रेश लो प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइज फ्लड थ्रेट इन नॉर्दर्न ओडिशा।
1: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी।
2: एंड इन क्रिकेट, बांग्लादेश सिक्योर हिस्टोरिक फर्स्ट टेस्ट विन इन ऑस्ट्रेलिया। And Vaishnavi, now is time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Listeners, today we will talk about a self-reliant and globally competitive nuclear energy ecosystem. India is steadily strengthening its indigenous nuclear energy ecosystem with a focus on advanced reactor technologies, small modular reactors, SMRs, domestic manufacturing capabilities, private sector participation, and long-term utilization of the country's abundant thorium resources. India's long-term nuclear energy strategy continues to be guided by the country's three-stage nuclear power program aimed at sustainable utilization of its vast thorium reserves for long-term energy security. The strategy has received further impetus through Nuclear Energy Mission, announced in the Union Budget 2025-2026, with an objective of expanding nuclear energy capacity to 100 gigawatt electric by 2047.
1: प्रशांत, अगर हम देखें तो सरकार देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए दो स्तरों पर काम कर रही है। एक और ग्रीन फील्ड साइट्स पर बड़े स्वदेशी परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे। इनमें 700 मेगावाट इलेक्ट्रिकल क्षमता वाले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और उन्नत रिएक्टर डिजाइन शामिल है। वहीं दूसरी ओर ब्राउन फील्ड साइट्स पर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएंगे। इनका इस्तेमाल बंद किए जा रहे जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों की जगह अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों के लिए कैप्टिव पावर प्लांट के रूप में और दूर दराज के इलाकों में ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति के लिए किया जा सकेगा। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2033 तक 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित कर उन्हें शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क BARC स्वदेशी SMR तकनीकी डिजाइन और विकास पर काम कर रहा है। इनमें बिजली उत्पादन के लिए 220 मेगावाट इलेक्ट्रिकल क्षमता वाला भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर BSMR और 55 मेगावाट इलेक्ट्रिकल क्षमता वाला SMR-55 शामिल है। इसके अलावा बार्क 5 मेगावाट थर्मल क्षमता तक का हाई टेम्परेचर गैस कूल रिएक्टर भी विकसित कर रहा है।
2: वैष्णवी, आवर लिसनर्स मे बी अवेयर दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन स्पेशल एफर्ट्स टू क्रिएट अ ब्रॉडर डोमेस्टिक न्यूक्लियर इकोसिस्टम। दिस सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति एक्ट 2025 हैज बीन इनएक्टेड टू इनेबल वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ public and private entities in the nuclear sector. The Department of Atomic Energy is encouraging Indian industry through knowledge sharing and hand-holding for new SMR technologies, while simultaneously developing domestic nuclear vendors and strengthening the private sector R&D ecosystem.
1: बिल्कुल, भारत यूरेनियम संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और थोरियम के विशाल भंडार के चरणबद्ध उपयोग के लिए तीन चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। इसके अंतर्गत थोरियम को पहले रिएक्टर में फिसाइल यूरेनियम 233 में बदला जाता है, जिसके बाद इसका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है।
2: लिसनर्स, अंडर द फर्स्ट स्टेज नेचुरल यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स फॉलोड बाय रीप्रोसेसिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल टू एक्सट्रैक्ट plutonium. In the second stage, fast breeder reactors utilize plutonium to generate additional fissile material, and the third stage envisages large-scale utilization of thorium through uranium-233 bred from thorium after adequate capacity of fast breeder reactors has been established.
1: प्रशांत, अब अगर हम थोरियम की बात कर ही रहे हैं तो थोरियम के इस्तेमाल की दिशा में भारत लगातार अनुसंधान और विकास कर रहा है। देश के एक प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के शुरुआती कोर में थोरियम ऑक्साइड पैलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रिसर्च रिएक्टरों में थोरिया आधारित ईंधन का परीक्षण भी किया गया है। इन प्रयोगों के दौरान इस्तेमाल किए गए थोरिया पिन को पुनः संसाधित करके यूरेनियम 233 हासिल किया गया। इसके बाद इससे कल्पक्कम स्थित इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के कामिनी रिएक्टर के लिए ईंधन तैयार किया गया।
2: वैष्णवी, द गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग अ रेंज ऑफ मेजर्स टू बिल्ड अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सेल्फ रिलायंट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी इकोसिस्टम। दीस इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस SMRs, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डोमेस्टिक न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन्स, कंटिन्यूड कैपेसिटी building in reactor design, manufacturing, construction and the nuclear fuel cycle, as well as expansion of indigenous nuclear medicine infrastructure through the isotope production reactor to augment domestic production of medical isotopes. The government's approach therefore combines indigenous technology development, expansion of nuclear capacity, greater industry participation, advanced reactor research and a sustained investment in the nuclear fuel cycle with the larger objective of strengthening India's energy security and technological self-reliance.
1: श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या खास है।
2: Yes, listeners, the first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west across 54 countries in multiple time zones. Let's listen more from our correspondent.
3: External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign launched from the High Commission of India in Fiji. The relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. The relay ended with the flag hoisting by the Consulate General of India in San Francisco. The relay also marked 150 years of Vande Mataram, celebrating its enduring legacy as a symbol of India's national spirit and pride. The relay witnessed overwhelming participation and response from the members of the diaspora, underscoring the deep emotional connect with the Tiranga. With Suparna's report, Payal Sharma for World News.
1: और अब रुख करते हैं रायपुर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कभी माओवाद से प्रभावित रहे इस क्षेत्र में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों ने देश के प्रति अपनी एकजुटता और राष्ट्रभक्ति व्यक्त की। आइए सुनते हैं रायपुर से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला की ये रिपोर्ट।
4: स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निकली तीन दिवसीय बस्तर तिरंगा यात्रा ने पूरे अंचल में राष्ट्रभक्ति का नया माहौल पैदा किया। 12 अगस्त को नारायणपुर से शुरू हुई यह यात्रा दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर होते हुए कर्रेगुट्टा पहाड़ी तक पहुंची। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। स्कूली बच्चों, युवाओं, महिला बाइकर्स और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी ने इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। यात्रा के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उनके सम्मान में वृक्षारोपण किया गया और बलिदान स्थलों की मिट्टी को सहेजने की पहल की गई। जिन क्षेत्रों को कभी माओवादी हिंसा के कारण

0: folk and classical dance, singing, mime, skit and mono acting. The festival also provides a platform for emerging artists, music bands and private cultural groups to showcase their talent. The celebrations have been held at Gandhi Thidal on Beach Road, Kamarajar Mani Mandapam and other venues. The festival seeks to promote cultural exchange, encourage young talent and celebrate Puducherry's multicultural and Indo-French heritage. For Parikrama, this is Bibin Asnad, Akashwani News, Puducherry.
1: प्रशांत अब चलते हैं खेल के मैदान में और श्रोताओं को देते हैं वहां की ताजा हलचल। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 388 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका।
2: इंडिया इज सेट टू होस्ट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो टिल द 23rd ऑफ अगस्त एट द इंदिरा गांधी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। PV Sindhu will lead India's challenge in women's singles. In men's singles, Lakshya Sen will look to make a deep run, while Ayush Shetty faces defending champion and top seed China's Shi Yuki in the opening round.
1: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: Also on 16th August, year 1909, was born Gothu Lachana in Srikakulam, Andhra Pradesh. He was a champion of kisans, backward classes, weaker sections and one of the most prominent leaders of his time. He was arrested at a very young age of 21 when he participated in the salt satyagraha at Palasa. Lachana also participated in the Quit India movement. He was conferred the title of Sardar for his fearless fight against the British Raj.
4: Having been inspired by Gandhi's fast unto death on the issue of untouchability, Lachana organized Harijan Seva Sangam at Barua in 1932. He started a night school in the Harijan Cheri and agitated against untouchability. He organized estate-wise Zamindari Raitu associations, no-tax campaigns, fought for the abolition of Zamindari system as farmers were unable to pay the heavy land revenue that was levied upon them. In 1940, he organized All India Kisan Sabha at Palasa.
3: Another interesting fact about this day is that Puducherry celebrates its independence on the 16th of August. Puducherry, then Pondicherry, was a French colony and their parliament ratified the Treaty of Secession on August 16, 1962, formally merging Puducherry with the Union of India.
4: Mark Twain has aptly summed up India as the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most artistic materials in the history of man are treasured up in India only.
1: हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये शब्द केवल पंक्तियां नहीं बल्कि उस अटल व्यक्तित्व की पहचान है जिसने भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। वे कुशल राजनेता, ओजस्वी वक्ता और संवेदनशील कवि थे। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी ने लोकतांत्रिक मूल्यों, संवाद और राष्ट्रहित को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय भाषा और संस्कृति की गरिमा को भी नई पहचान दी। देश के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को उनके निधन के साथ भारतीय राजनीति का एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनके विचार, उनकी कविताएं और उनकी आवाज आज भी लोगों में राष्ट्रप्रेम और सकारात्मक की भावना जगाती है। प्रशांत, वैसे तो उनकी कई कविताएं मुझे पसंद है, लेकिन जो मुझे बेहद सादा पसंद आती है वो मैं यहाँ पर श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी। आइए सुनते हैं।
5: मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की।

0: नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं।
1: Listeners, today is the birthday of badminton player Lakshya Sen. He has won bronze at the World Championships and gold at the Commonwealth Games. Lakshya Sen won gold and bronze at the Thomas Cup and silver at the Asian and Commonwealth Games in team events. He also won bronze at the Asia Team and Asia Mixed Team Championships. He competed in the men's singles event at the 2024 Olympics, where he finished fourth after narrowly losing the bronze medal match.
2: अब हम बात करेंगे क्रिकेट के मैदान पर धैर्य और संघर्ष के लिए पहचाने जाने वाले चेतन चौहान के बारे में। चेतन चौहान भारतीय क्रिकेट के प्रमुख सलामी बल्लेबाजों में शामिल रहे। उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट और 7 एक दिवसीय मैच खेले। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 2000 से अधिक रन बनाए और लंबे समय तक सुनील गावस्कर के सलामी जोड़ेदार भी रहे। क्रिकेट से संन्यास के बाद भी वे खेल प्रशासन और सार्वजनिक जीवन से जुड़े रहे। 16 अगस्त 2020 को 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। चेतन चौहान का जीवन हमें यही संदेश देता है कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हर चुनौती के सामने धैर्य और हौसले के साथ डटे रहने का नाम है। और आइए अब बात करते हैं गुरुदयाल सिंह के बारे में। पंजाबी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले गुरदयाल सिंह अपने यथार्थवादी लेखन और आम जन जीवन के सजीव चित्रण के लिए जाने जाते हैं। उनका साहित्य समाज के हाशिए पर खड़े लोगों और ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को आवाज देता है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास मड़ी दा दीवा को पंजाबी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है। वर्ष 1999 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: Listeners, today is the birthday of actor-producer Saif Ali Khan, son of actress Sharmila Tagore and cricketer Mansoor Ali Khan Pataudi. He has won several awards, including a National Film Award and 7 Filmfare Awards, and received the Padma Shri in 2010. He made his acting debut in Parampara in 1993 and has had success in several films, including Ye Dil Lagi of 1994, Main Khiladi Tu Anadi of 1994, Kacche Dhage of 1999, and Hum Saath Saath Hain of 1999. Vaishnavi, you would recall in the early 2000s, he gained praise and won multiple awards for his roles in the romantic comedies Dil Chahata Hai of 2001, Kal Ho Na Ho of 2003, and he also had success as a solo male star in romances Hum Tum of 2004, Parinita Salam Namaste, both of 2005.
2: और प्रशांत, वैसे तो उनके काफ़ी गाने पसंद आते हैं श्रोताओं को। हर उनके एक दौर था जबकि बहुत ही खूबसूरत गाने हुआ करते थे, लेकिन उनका एक गाना है पीयू बोले जो मुझे बेहद पसंद है। तो चलिए पहले वही सुनते हैं, फिर बाकी और भी गाने सुनाएंगे श्रोताओं को।

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
2: खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. इन पंक्तियों को शायद ही किसी भारतीय भूल सकता है. इन शब्दों में वीरता और राष्ट्रभक्ति का जोश भरने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म आज ही के दिन 1904 को प्रयागराज के निहालपुर गांव में हुआ था. वे केवल प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी भी थी. महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ी और सत्याग्रह में भाग लेते हुए जेल भी गई. उनकी कविता झांसी की रानी आज भी हिंदी साहित्य को सबसे लोकप्रिय देशभक्ति रचनाओं में गिनी जाती है.
3: Today is the birthday of director David Dhawan. Listeners, born Rajendra Dhawan on today's date in 1951, his 1999 comedy BV No. 1 earned him a nomination for the Filmfare Award for Best Director.

0: बहुत ही खूबसूरत गीत था प्रशांत ये। और आगे बढ़ते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली अन्नामणि उन वैज्ञानिकों में थी जिन्होंने भारत में मौसम संबंधी उपकरणों और मापन प्रणालियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। भौतिक विज्ञान और मौसम विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाली अन्नामणि ने सौर विकिरण, ओजोन और पवन ऊर्जा के मापन पर भी काम किया था। और श्रोताओं, अब घड़ी आगे बढ़ने का हमें समय नहीं दे रही है, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। तो वैष्णवी और प्रशांत को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनने चाहते हैं तो लॉगिन करिए हमारी वेबसाइट www.newsoneair.com पर। और नमस्कार,
1: नमस्कार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजस्थान के अलवर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि 2014 के बाद से देशभर में कई विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों की अंतिम उत्तर पुस्तिका जारी कर दी है। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एजेंसी ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार्य नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्माण क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। पुदुचेरी में आज डी ज्वेरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवायम ने किंजूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज नेपाल की 3 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना हुए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ कल टुंडीखेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान को लेकर जांच आयोग के गठन के बारे में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया। इकाई ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के कारण उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। बैतरणी, ब्रह्माणी, सालंदी, जालका और बुद्ध बांगल नदियों के उफान के कारण 6 जिलों में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इनमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिले शामिल हैं, जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 408 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यहाँ यूं ही गाते गुनगुनाते ये सफर चलता रहे, और इस सफर में आपसे हम मुखातिब हो गए हैं लेकर गाते गुनगुनाते का आज का बहुत ही शानदार शो, और मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। जी हाँ, कुछ समय तो कम होता है, आज रविवार है, लेकिन हम कुछ बातें आपसे ज़रूर करेंगे और कुछ आपकी पसंद के तराने भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें आपकी पसंद बखूबी मालूम है। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बात शुरू करें अगर हम, तो आज हम दो ऐसी फिल्मी हस्तियों की बात करेंगे जिनका जन्मदिन है। एक साहब हैं डेविड धवन और दूसरी हैं मनीषा कोइराला। तो चलिए, पहला जो जिक्र हमने किया है वो डेविड धवन साहब का किया है। 16 अगस्त 1951 को अगरतला त्रिपुरा में आपका जन्म हुआ, और आज उन्होंने जीवन के 75 वर्ष पूरे कर लिए। तो हम सबसे पहले तो उनको खूब बधाई देना चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, खूब तरक्की करें। जीवन में आपने बहुत कुछ किया है और एक मिसाल पेश की है हिंदी सिनेमा में। इन्होंने 46 फिल्में डायरेक्ट की, जिनमें आंखें, बीवी नंबर वन, शोला और सबनम, बोल राधा बोल, स्वर्ग, राजा बाबू, कुली नंबर वन, साजन चले ससुराल, जुड़वा, हीरो नंबर वन, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, दीवाना मस्ताना, बड़े मियां छोटे मियां, हसीना मान जाएगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, चल मेरे भाई, और जोड़ी नंबर वन, 1 और 11। ऐसे करके इन्होंने बहुत ही नोटेबल, ये तो हमने कुछ फिल्मों के नाम लिए जो इनकी बेहद लोकप्रिय फिल्में हैं, सुपरहिट रही, और इनका जो काम था बड़ा उम्दा था और एक जो सामान्य जन है उसको खूब पसंद आता था। तो धवन साहब को हमने एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित की, और उन्हीं की फिल्म का एक गाना हमने ले लिया है चलाने के लिए, जिसमें आवाजें हैं अभिजीत और अनुराधा श्रीराम की। तो सुनिए ये गाना डेविड धवन साहब के जन्मदिन के अवसर पर।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। उनका 16 अगस्त 1970 को काठमांडू नेपाल में जन्म हुआ और उन्होंने भी बेहतरीन काम किया और लोगों ने बहुत पसंद किया और उनकी फिल्में एक से बढ़कर एक रहीं। लेकिन जिस फिल्म का गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, फिल्म बॉम्बे का, उस फिल्म को देश में ही नहीं बल्कि विदेशी फिल्म समीक्षकों ने भी बहुत उसकी प्रशंसा की और बहुत ही ज़बरदस्त ये फिल्म थी। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चित्रा की आवाज़ में, एआर रहमान का संगीत, फिल्म बॉम्बे। और मनीषा जी को हम एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से जन्मदिन पर बहुत बधाई प्रेषित करते हैं। वो एक जिंदा दिल महिला हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय का अभाव है। लीजिए, सुनिए बहुत ही प्यारा गाना।

0: पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: तो श्रोताओं, अब चलने का वक्त हो गया है। शिव प्रकाश को दीजिए अनुमति गाते गुनगुनाते के इस सफर से, और आप बने रहे FM गोल्ड के साथ, जहां कार्यक्रमों की बहार है, बहुत सारी जानकारियों की बहार है, और आप खुशियां फैलाते रहें अपने जीवन में भी और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी। तो आप सभी खुश रहें। नमस्कार। और चलते चलते ये नगमा फिल्म ताल से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में, और जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ सुखविंदर जी भी इस गाने में अपनी आवाज दे रहे हैं।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को

0: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार

0: बार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, आज के पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के संस्करण की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हाल ही में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पूर्वोत्तर भारत की खेल प्रतिभाओं ने भारत का परचम दुनिया में फिर लहराया, फिर भारत का झंडा शान से फहराया और देश की झोली में तमाम मेडल की टैली लाकर भारत को फिर गौरवान्वित किया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शुरुआत में मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू का नाम कौन नहीं जानता और एक दशक में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो आज देश के तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए खेल एक प्रेरणा स्रोत है। तो इस बार ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में फिर से स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई चानू ने न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया है बल्कि देश के विभिन्न वेटलिफ्टर्स के लिए एक मिसाल कायम की है। तो आइए जानते हैं मीराबाई चानू की ये सफलता और उनकी जीवन की कहानी।
1: मणिपुर के नॉकपोंग कांगचिंग से शुरू हुआ मीराबाई चानू का सफर आज कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। बचपन में मीराबाई अपने परिवार के साथ पहाड़ी इलाके में लकड़ियां लेने जाती थी। यही वह समय था जब उनकी शारीरिक ताकत ने परिवार का ध्यान खींचा। आगे चलकर उन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपना खेल बनाया और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी शुरू की। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई ने सिल्वर जीता था। इसके बाद 2018 गोल्ड कोस्ट और 2022 बर्मिंगम में उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। अब 2026 में वही मीराबाई फिर ग्लासगो लौटी। इस बार उनके सामने सिर्फ पदक जीतने की चुनौती नहीं थी, वह लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड जीतने उतरी थी। फाइनल में शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही। स्नैच के पहले प्रयास में 82 किलो वजन नहीं उठा सकी, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने वापसी की और फिर 85 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड बना दिया। क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 105 किलो वजन उठाया, कुल वजन पहुंचा 190 किलो। गोल्ड पक्का हुआ और साथ में नया गेम्स रिकॉर्ड भी। मेडल जीतने के बाद मीराबाई ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे कोच विजय शर्मा को दिया।
2: बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत इमोशनल भी हूँ, सब कुछ है। और खुश इसलिए कि मैं काफी सेक्रीफाइस और बहुत सारे टेंशन इंजुरी से लेके गेम्स तक आके मैंने मेडल दिया है। पहला इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना एक प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश।
1: उन्होंने बताया कि करियर के दौरान कई चोटों के बावजूद परिवार ने उनका हौसला बनाए रखा। उनकी यह जीत सिर्फ मणिपुर या भारत के लिए एक गोल्ड नहीं था, यह उस खिलाड़ी की कहानी है जिसने सालों तक खुद को लगातार बेहतर बनाया और हर बार बड़े मंच पर वापसी की। मीराबाई ने ग्लासगो में फिर साबित किया कि अनुभव, अनुशासन और हौसले के दम पर उम्र नहीं, प्रदर्शन मायने रखता है। मणिपुर की इस बेटी ने एक बार फिर वजन उठाया, रिकॉर्ड बनाया और भारत का तिरंगा सबसे ऊपर पहुँचा दिया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू।
0: श्रोताओं, इन एथलीट्स की जो कहानियां हम सुनते हैं वो सचमुच सफलता की कहानी तो है ही, लेकिन उसके पीछे एक बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन भी रहा है, संघर्ष भी रहा है। वो कहा जाता है ना, संतुष्ट नहीं वो जीवन पथ में सदा सफल रस पीता है, संतुष्ट वही जो कष्ट भोगकर सुखमय जीवन जीता है। तो हमारे जो एथलीट्स हैं उनकी कहानियां भी ऐसी चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन जब वो अपनी इन चुनौतियों से, संघर्षों से पार पाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर लाते हैं तो पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है और देश भर के करोड़ों युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। अब ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं त्रिपुरा की अस्मिता डे की। अस्मिता डे ने भारत के जूडो खेल का इतिहास बदल कर रख दिया है और उन्होंने इस बार कॉमनवेल्थ गेम में 48 किलो वर्ग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई चानू ने जिस तरह से तमाम युवाओं को प्रेरित किया, उसी तरह से अस्मिता डे ने भी तमाम युवाओं को प्रेरित किया और जूडो क्षेत्र में जो आगे आना चाहते हैं उनके लिए मिसाल बन गई। तो आइए फिर से हम एक और प्रेरणादायी कहानी सुनते हैं जिन्होंने इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना खेल का एक नया इतिहास रचा है।
1: त्रिपुरा
3: त्रिपुरा के एक छोटे से गांव से निकलकर

0: मिता डे ने ग्लासगो में भारतीय जूडो का इतिहास बदल दिया। महिलाओं के 48 किलो वर्ग में अस्मिता ने कनाडा की हेडी कवाच को हराकर गोल्ड मेडल जीता। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। मुकाबला आसान नहीं था, फाइनल गोल्डन स्कोर तक पहुंचा जहां अस्मिता ने बाजी अपने नाम की, लेकिन इस जीत के पीछे लंबा संघर्ष है। अस्मिता के पिता साइकिल मैकेनिक थे, परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित थी। अस्मिता ने अपने खेल करियर की शुरुआत जूडो से नहीं बल्कि 800 मीटर दौड़ से की थी। जिला स्तर के एक ट्रायल में जूडो से जुड़ने के बाद उन्होंने इसी खेल को अपना करियर बना लिया। फिर उनकी जिंदगी में बड़ा झटका आया, 2025 में पिता का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद अस्मिता ने जूडो छोड़ने तक का फैसला सोच लिया था, लेकिन उन्होंने वापसी की और अपना अभ्यास जारी रखा। ग्लासगो में जब उन्होंने गोल्ड जीता तो ये उनकी करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। जीत के बाद अस्मिता ने कहा कि सफर में जिन लोगों ने उनका साथ दिया वे उन सभी की शुक्रगुजार है।
1: ये मेरी पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स है और मैं इसमें गोल्ड मेडल जीती हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।
0: उन्होंने यूपी पुलिस की नौकरी के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया, जिसने उन्हें अपने परिवार की मदद करने का सहारा दिया। एक छोटे गाँव से निकली अस्मिता अब भारतीय जूडो की नई पहचान बन चुकी है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं वैष्णवी।
2: श्रोताओं, हाल ही में जो देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसके अवसर पर नागालैंड की 4 हस्तियों और समाज सेवियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आमंत्रित किया गया था। ये 4 हस्तियां नागालैंड में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं और अपना एक महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान दे रही हैं। तो आइए इन हस्तियों के बारे में जानते हैं और उनसे ही सुनते हैं उनके अनुभव। ये रिपोर्ट हमें भेजी हमारी संवाददाता असुनो ने कोहिमा से।
3: नागालैंड के 4 लोगों के लिए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस गर्व और सम्मान का अवसर रहा। उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम समारोह में शामिल होने का विशेष निमंत्रण मिला था। इनमें कोहिमा के कुजामा गांव की केविरनु केरा भी शामिल थीं, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की लाभार्थी हैं।
4: It is a matter of great pride and honor for me to attend the at-home reception to be hosted by the Honorable President of India on the occasion of Independence Day at Rashtrapati Bhavan, New Delhi. This invitation has been extended in recognition of the significant and positive impact that rural scale development through the DBUGKY program has had within my community. As a beneficiary of the DOGKY, my achievement and contribution has played an inspiring role in encouraging others to pursue skills development and livelihood opportunities. This recognition has motivated me to work harder and contribute more to our society.
3: इसी तरह दीमापुर के ख्रोलो नारो को भी राष्ट्रपति भवन के समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था। वे क्रिएटिव क्राफ्ट्स चलाते हैं, जहां बांस से फर्नीचर और विभिन्न हस्तशिल्प तैयार किए जाते हैं। उनके इस काम का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 133वें एपिसोड में भी किया था। कोहिमा के केपोजो कुपुह भी उन 4 प्रतिनिधियों में शामिल थे जिन्हें इस विशेष समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था। वे सेंट जोसेफ कॉलेज जखामा से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ष 2026 के राष्ट्रीय विकसित भारत युवा संसद में उन्हें बेस्ट रिस्पॉन्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
5: नमस्कार, मैं केपोजो कपून और राष्ट्रपति भवन से 15 अगस्त के एट होम समारोह का आमंत्रण मिलना मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। एक युवा और एक छात्र होने के रूप में ये बस मेरे लिए केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि नागालैंड के युवाओं के लिए एक गर्व का विषय है। मैं इस अवसर के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माई भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और भारत सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। यह अवसर मुझे देश और अपने राज्य के लिए और अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय हिंद।
3: चौथी आमंत्रित लोलिका शोहे थी, वे NSS स्वयंसेवक हैं और युवा आपदा मित्र योजना की लाभार्थी भी हैं। आपदा के समय लोगों की मदद करने और समुदाय को

0: आपदा के लिए तैयार करने में युवाओं की बढ़ती भूमिका को उनका योगदान दर्शाता है।
1: It is a matter of immense pride and honor for me to attend the at-home reception hosted by the Honorable President of India. This invitation was sent through the ABDA Mitra for the training camp conducted at the Home Guard Training Center at Dolvi on the month of March this year. As a beneficiary of the ABDA Mitra, this training camp has taught me skills such as CPR, first aid, building evacuation and many more. It will surely be helpful in times of disaster. This invitation has brought me and my family great pride and honor, inspiring me to serve the community more and be prepared in case of disaster.
0: राष्ट्रपति भवन के एट होम समारोह में शामिल होने का अनुभव इन चारों के लिए खुशी, गर्व और सम्मान से जुड़ा रहा। इन चारों को मिला यह निमंत्रण देश की विविधता और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का भी उदाहरण है। इस वर्ष राष्ट्रपति भवन के एट होम समारोह के निमंत्रण पत्र के डिजाइन में छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जीवंत लोक कला परंपराओं की झलक भी देखने को मिली। नागालैंड के इन चार प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रपति भवन का यह अनुभव सिर्फ एक समारोह का हिस्सा बनना नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय मंच पर अपने राज्य और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का गौरव भी था। असुनुओं की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सकलैन अख्तर।

0: श्रोताओं, हाल ही में त्रिपुरा में एक अनोखी पहल हुई। चकमा भाषा और लिपि दिवस मनाया गया था और चकमा भाषा और लिपि दिवस के अवसर पर जो चकमा की सांस्कृतिक विरासत है, परंपरा है, उसको प्रदर्शित करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर रहा। और इस अवसर पर अगरतला में जुलूस का आयोजन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और चर्चा परिचर्चाओं का आयोजन हुआ। विभिन्न कलाकारों ने, लेखकों ने और जो विभिन्न रचनाकार हैं और चकमा भाषा और लिपि से जुड़े हुए बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं चकमा भाषा और लिपि के बारे में और किस तरह से इस दिन के मनाए जाने से इस लिपि और भाषा का सांस्कृतिक महत्व उभर कर सामने आया है, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
1: त्रिपुरा हाल ही में चकमा समुदाय की पारंपरिक वेशभूषा, रंगों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सराबोर नजर आया। पहली बार मनाए गए चकमा भाषा और लिपि दिवस का उद्देश्य चकमा भाषा, उसकी लिपि, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। कार्यक्रम में आने वाली पीढ़ियों तक इस विरासत को पहुँचाने और भाषाई विविधता को बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
2: चकमा समुदाय भारत की धरती से दिल और आत्मा से प्रेम करने वाला एक शांति प्रिय, देशभक्त और भारतीय होने पर गर्व करने वाला समाज है। प्रियो से हम भारत के साथ अपने भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध को गर्व के साथ संजोए हुए हैं। भारत के प्रति हमारी निष्ठा और प्रेम हमारे पहचान का अभिन्न हिस्सा है। स्वतंत्रता के समय से ही चकमा समाज भारत के असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में निवास करता आया है और इन राज्यों में चकमा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारा मानना है कि अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और परंपराओं से प्रेम करना है तथा साथ ही भारत के प्रति गर्व और समर्पण की भावना रखना, इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ही हम और अधिक आत्मविश्वास के साथ भारत के समृद्ध और विविध संस्कृति का हिस्सा बन सकते हैं।
1: अगरतला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत रंगारंग जुलूस के साथ हुई। छात्र छात्राओं, कलाकारों और चकमा समुदाय के लोगों ने पारंपरिक पोशाक और आभूषणों के साथ इसमें हिस्सा लिया। जुलूस ने त्रिपुरा की सांस्कृतिक विविधता और अनेकता में एकता का संदेश दिया।
2: चकमा भाषा, हमारी लिपि दिवस का आयोजन हमारे लिए गर्व का विषय है। अपनी भाषा और संस्कृति को आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। एक चकमा भाषी होने के नाते मुझे इस अवसर पर विशेष रूप से गर्व और खुशी हो रही है। हमारी राज्य सरकार चकमा भाषा, साहित्य और संस्कृति को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।

0: को नमस्कार।
1: इसके बाद रविंद्र भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने हर समुदाय की भाषा और सांस्कृतिक पहचान के सम्मान को आवश्यक बताया।
2: गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज बीन वर्किंग फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट व्हेन इट कम्स टू द अदर सब ट्राइब्स ऑफ आवर स्टेट। We have 19 sub-tribes all together in our state and we are committed for the holistic development of all other sub-tribes in our state.
1: पहला चकमा भाषा और लिपि दिवस केवल एक भाषा का उत्सव नहीं बल्कि समुदाय की पहचान, इतिहास और परंपराओं को सहेजने की पहल है। भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समाज की परंपराएं, ज्ञान और यादें पहुंचाती हैं। ऐसे में चकमा भाषा और लिपि को जीवित रखना समुदाय की सांस्कृतिक पहचान से सीधे जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम में युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी ने ये संदेश दिया कि नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा सीखे, उसका इस्तेमाल करे और अपनी विरासत पर गर्व करे। साथ ही समारोह ने त्रिपुरा की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को भी सामने रखा। चकमा भाषा और लिपि दिवस का संदेश स्पष्ट है, किसी भाषा को बचाना उसके साथ जुड़ी पहचान और विरासत को बचाना है। इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना समुदाय के साथ साथ समाज की भी साझा जिम्मेदारी है। सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
3: श्रोताओं, सिक्किम की लेपचा संगीत संस्कृति सिक्किम की एक बहुत बड़ी विरासत है और यहाँ की परंपरा को प्रदर्शित करती है। तो सिक्किम की लेपचा संगीत संस्कृति का प्रदर्शन अभी हाल ही में एक विशेष राज्य स्तरीय समारोह में देखने को मिला और इस समारोह की ये खास बात रही कि यहाँ पर तुंगवुक नाम का एक जो महत्वपूर्ण वाद्य है, इसके वादकों ने एक रिकॉर्ड कायम किया। 32 वादकों ने एक साथ तुंगवुक वाद्य बजाकर इस रिकॉर्ड को कायम किया और एक अलग ही माहौल का प्रदर्शन देखने को मिला। ये वाद्य GI टैग प्राप्त वाद्य है और लेपचा संगीत एक मधुर संगीत है। आइए हमारे संवाददाता के इस विशेष रिपोर्ट में इस राज्य स्तरीय समारोह के बारे में जानते हैं और साथ ही लेपचा संगीत की धुन भी आपको इस रिपोर्ट में सुनने को मिलेगी। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
4: सिक्किम की समृद्ध लेपचा संगीत परंपरा को तेंदोंग लोरूम फात 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी पहचान मिली। पारंपरिक तुंगबुक वाघ बजाने वाले सबसे बड़े समूह ने नया रिकॉर्ड कायम किया।
5: दिस इज एन अटेम्प्ट बाय सिक्किम टू सेट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड विद लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ लेपचा म्यूजिशियंस प्लेइंग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट तुंगबुक।
4: 7 अगस्त को गैंगटॉक के रिज पार्क स्थित योंगथोंग ओपन मार्केट में 32 कलाकारों ने एक साथ तुंगबुक बजाया। GI टैग प्राप्त यह पारंपरिक वाघ लेपचा समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है।
5: Alright, ladies and gentlemen, let's count with me. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, and go!

लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सबसे बड़े तुंग बुक वादकों के समूह का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को मनन केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान सौंपा गया। यह पहल योंग थूम सीजन 3 के तहत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य लगभग भुलाए जा चुके तुंग बुक वादन को फिर से जीवंत करना और युवा पीढ़ी को लेपचा लोक संगीत सीखने के लिए प्रेरित करना है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि तेंदोंग लोरूं फात लेपचा समुदाय के मयेल ल्यांग यानी सिक्किम प्रकृति और अपनी सांस्कृतिक

0: विरासत से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। उन्होंने विकास के साथ साथ भाषा, पारंपरिक ज्ञान, संगीत और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बोंगथिंग की पारंपरिक रस्मों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और लेपचा विरासत के संरक्षण में योगदान देने वाले को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी हुआ। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों तक सिक्किम की स्वदेशी परंपराओं को पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मोइनक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं श्रेया पाठक।
1: अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के अंतर्गत ग्रुप ए, बी और सी के सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए एक समान पात्रता मानदंड लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसके तहत आवेदकों के लिए तीन अनिवार्य शर्तें तय की गई है, जिनमें स्थायी निवासी इंडिजिनस एपीएसटी यानी राज्य के मूल निवासी एवं एपीएसटी की पात्रता और इंडिजिनस ट्राइबल लैंग्वेज यानी स्थानीय जनजातीय भाषा का ज्ञान शामिल किया गया है। कैबिनेट ने प्रिंसिपल और डीडीएससी के पदों पर पदोन्नति के लिए एक बार की विशेष छूट के तहत 2 वर्ष की सर्विस रिलैक्सेशन को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए भी एक बार की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सीनियर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट तथा डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट से संबंधित रिक्रूटमेंट रूल्स में संशोधन को भी मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, हम पूर्वोत्तर डायरी के पिछले कुछ संस्करणों से आपको नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की परंपराओं से अवगत करवा रहे हैं और आज भी एक ऐसी ही जनजाति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। थ्यांग न्यूंग्यम ये एक ऐसी जनजाति है जो अपनी विविध परंपराओं और रीति रिवाजों से नागालैंड में अपना एक विशेष स्थान रखती है। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत विविध जनजातियों का संगम है और नागालैंड की ये जनजातियां वहाँ की विरासत और परंपरा को और विशेष बनाती हैं। तो आइए इस जनजाति की परंपराओं, रीति रिवाजों और वर्तमान समय में इन जनजाति के बरकरार होते हुए मूल्यों पर ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं जो हमारी संवाददाता असुनो ने हमें कोहिमा से भेजी है।
3: नागालैंड के सुदूर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में जहां पहाड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलते हैं और नदियां इस भूमि की प्राचीन कहानियां सुनाती हैं, वहीं निवास करता है नागा जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति खियाम न्यूंगन। भारत और म्यांमार दोनों देशों में फैली इस जनजाति का मूल निवास नागालैंड के सबसे पूर्वी जिले नोकलाक में है, जिसे सीमांत जिला भी कहा जाता है। त्वेनसांग जिले से अलग होकर बना नोकलाक लगभग 1152 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ मुख्य रूप से खियाम न्यूंगम जनजाति निवास करती है। खियाम न्यूंगन नाम स्वयं एक कहानी कहता है। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, खियाम जिसका अर्थ है पानी, न्यू यानी महान और अंगान यानी स्रोत। इनका संयुक्त अर्थ है महान जल का स्रोत। यह नाम उस बड़ी नदी से जुड़ा है जो उनके क्षेत्र से निकलती है, लांग नदी, जिसे आगे जाकर जुंकी के नाम से जाना जाता है और अंततः म्यांमार की चिनद्विन नदी में मिल जाती है। लोक कथा के अनुसार खियाम न्यूंगन लोगों की उत्पत्ति खियामगान नामक स्थान से मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बड़े बाढ़ के समय लोग ऊंचे स्थानों पर चले गए थे। जब पानी कम हुआ तो वे नीचे लौटे और खियामगान में नई बस्ती बसाई। समय के साथ वे अलग अलग दिशाओं में फैलते गए और आज के नोकलाक क्षेत्र तथा म्यांमार में चिनद्विन नदी के उत्तरी किनारे तक बस गए। नोकलाक का जीवन पूरी तरह कृषि पर आधारित है। खियाम न्यूंगन समुदाय मुख्यतः ग्रामीण है और खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। चावल उनका मुख्य भोजन है, जिसे झूम या स्थानांतरित खेती और सीढ़ीनुमा खेती दोनों तरीकों से उगाया जाता है। ये समुदाय जैविक खेती करता है और पहाड़ियों में उगने वाली नागा किडनी बीन्स विशेष रूप से प्रसिद्ध है। त्योहार खियाम न्यूंगन संस्कृति की धड़कन है जो समुदाय, आस्था और कृषि को एक साथ जोड़ते हैं। इनके कई त्योहारों में त्योस्कुम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सितंबर या अक्टूबर की शुरुआत में मनाया जाता है। त्योस्कुम सुमाई नए झूम खेतों की फसल के आगमन का प्रतीक।

है और समृद्धि, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। 8 दिनों तक पूजा और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान फसल काटना पूरी तरह वर्जित रहता है ताकि त्योहार का आशीर्वाद बना रहे। संपन्न परिवार बड़े भोज का आयोजन करते हैं जिनमें मिथुन या भैंस की बलि देकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भोजन और चावल की बियर साझा की जाती है। तुसोकुम एकता, सांस्कृतिक पहचान और कृषि समृद्धि का प्रतीक है। ये सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि त्योहार के बाद विवाह योग्य युवा अपने जीवन साथी की तलाश शुरू करते हैं। इसके अलावा खाओ जाओ सीए होक आह जो जनवरी में मनाया जाता है और बियाम जो अगस्त में मनाया जाता है भी महत्वपूर्ण त्योहार हैं। ये सभी त्योहार कृषि चक्र से जुड़े हुए हैं। ख्याम न्यूंगन समुदाय की कला भी अत्यंत विशेष है। बुनाई का कार्य केवल महिलाएं करती हैं और परंपरागत रूप से पुरुषों के लिए ये वर्जित माना जाता है। महिलाएं बैक स्ट्रैप या कमर करघे पर कपड़े बुनती हैं जिनके डिजाइन पहनने वाले की पहचान, लिंग और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। इनके वस्त्र लाल और गहरे नीले रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं जिन पर कौड़ी और शंख के सजावटी तत्व लगाए जाते हैं। उनका एक खास परिधान पारंपरिक योद्धा शॉल नुटसाह है। आभूषण भी उनकी पारंपरिक वेशभूषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाएं पीले और नारंगी कांच के मोतियों की कई परतों वाली मालाएं पहनती हैं, जिनमें बीज, शंख और कभी कभी चमकीले कीटों के पंख भी शामिल होते हैं। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। आज भले ही ख्याम न्यूंगन समुदाय के अनेक लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, फिर भी वे अपनी पारंपरिक मान्यताओं और मूल्यों को संजोए हुए हैं। सामुदायिक एकता, पारिवारिक संबंध और कृषि से जुड़े अनुष्ठान आज भी उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से असोनो की रिपोर्ट के साथ प्रशांत कुमार।

श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से, पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रूपये की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेम्मा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हैं। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्षेत्र आत्मनिर्भरता और आर्थिक प्रगति के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में सामने आया है। पिछले 12 वर्षों में मेक इन इंडिया की सोच के अंतर्गत किए गए सुधारों ने देश के उद्योगों को नई दिशा दी है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र में किस तरह बदलाव आया है। रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मोबाइल, दवा और कपड़ा उद्योगों में क्या प्रगति हुई है, तथा जहाज, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और सौर उपकरण निर्माण में भारत किस तरह अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। श्रोताओं, विनिर्माण क्षेत्र आज भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में लगभग 16 से 17% योगदान देता है और 2,70,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी देता है। जुलाई 2026 में भारत का वस्तु निर्यात 44 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा, जबकि एक वर्ष पहले ये लगभग 40 अरब डॉलर था। जून 2026 में विनिर्माण उत्पाद में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। आइए अब रिपोर्ट के माध्यम से हम जानते हैं कि रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत ने किस तरह अपनी उत्पादन क्षमता को मजबूत किया है।
1: श्रोताओं, आत्मनिर्भरता पर जोर, लक्षित निवेश और नीतिगत प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण उत्पादक और निर्यातक बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2025-26 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा 46,429 करोड़ रुपए था। रक्षा निर्यात में भी बड़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हुआ था, जो 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रक्षा उत्पाद 80 से अधिक देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में रक्षा निर्यात में 5,500% से अधिक की वृद्धि हुई है। स्वदेशी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सृजन डिफेंस इक्विपमेंट एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म यानी DIP भी महत्वपूर्ण है। मई 2026 तक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 41,000 से अधिक विक्रेताओं और 2,70,000 उत्पाद सूचीबद्ध थे। अब बात इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की जाए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, SpaceX, EMC 2.0 और PLI जैसी पहलों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में तेजी आई है। वर्ष 2014-15 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में बढ़कर लगभग 13.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है, यानी लगभग 7 गुना वृद्धि। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी लगभग 38,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,24,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो करीब 11 गुना की वृद्धि है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी भारत अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। दिसंबर सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम यानी सेमिकॉन 1.0 को मंजूरी दी गई थी। जुलाई 2026 में सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी गई। जुलाई 2026 तक सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 12 विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी जा चुकी है। इन इकाइयों से उपभोक्ता उपकरणों, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों की चिप जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। मोबाइल विनिर्माण में भी भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को 15 जुलाई 2026 को 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी गई थी। भारत में इस्तेमाल होने वाले 99.2% मोबाइल फोन अब देश में ही बनाए जाते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। PLI योजना के अंतर्गत मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 96,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है।
0: श्रोताओं, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भारत का दवा उद्योग भी देश की विनिर्माण क्षमता और वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं कपड़ा और परिधान क्षेत्र सबसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने के साथ निर्यात में भी योगदान कर रहा है। आइए अब रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि दवा, चिकित्सा उपकरण और कपड़ा क्षेत्र में भारत की स्थिति किस तरह मजबूत हुई है।
2: श्रोताओं, वैश्विक दवा उद्योग में भारत मात्रा के आधार पर तीसरे और मूल्य के आधार पर 11वें स्थान पर है। दुनिया की लगभग 20% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति भारत करता है और बड़ी मात्रा में टीकों की भी आपूर्ति करता है। दवा क्षेत्र की 3 PLI योजनाओं के तहत 51,997 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है। बल्क ड्रग पार्क योजना को वर्ष 2020 में 3 बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय साझा बुनियादी ढांचा तैयार करना और बल्क ड्रग के विनिर्माण की लागत कम करना है। केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति यानी स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू

0: नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन योजना की घोषणा की गई। और अब बात करते हैं कपड़ा और परिधान क्षेत्र की। ये भारत के प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में शामिल है और कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। ये 4,50,00,000 से अधिक लोगों को आजीविका देता है और MSME आधारित औद्योगिक विकास को भी समर्थन देता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में शामिल है और कपास के धागे का सबसे बड़ा निर्यातक है। कपड़ा और परिधान क्षेत्र राष्ट्रीय GDP में लगभग 2%, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में 11% और वस्तु निर्यात में 9% योगदान देता है। वैश्विक कपड़ा और परिधान निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.1% है और भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश है। कपड़ा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा और विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के लिए कपड़ा PLI योजना, PM मित्र पार्क, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, नेशनल फाइबर मिशन और हाल में घोषित मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी जैसी पहल महत्वपूर्ण हैं।
1: प्यारे श्रोताओं, भारत का विनिर्माण क्षेत्र केवल इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा और कपड़ा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। जहाज और कंटेनर निर्माण, ऑटोमोबाइल और सौर PV जैसे क्षेत्रों में भी घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अब रिपोर्ट के जरिए आइए जानते हैं कि इन क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमता किस तरह आगे बढ़ रही है।
2: श्रोताओं, भारत में घरेलू जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत करने के लिए सितंबर 2025 में 69,725 करोड़ रुपए का व्यापक पैकेज घोषित किया गया। इसमें जहाज निर्माण क्षमता, समुद्री वित्त और कौशल विकास को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। जहाज निर्माण विकास योजना यानी SBDS के लिए 19,989 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसका लक्ष्य भारत की वार्षिक जहाज निर्माण क्षमता को 45,00,000 ग्रॉस टन तक बढ़ाना है। समुद्री क्षेत्र के लिए 25,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत 24,736 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम की घोषणा की गई। जुलाई 2026 में भारत ने AP मोलर मार्सक के लिए देश में निर्मित पहला XIM शिपिंग कंटेनर तैयार किया। अब बात ऑटोमोबाइल क्षेत्र की। भारत दुनिया में दोपहिया और तिपहिया वाहनों का सबसे बड़ा बाजार है तथा यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। ये क्षेत्र देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट उद्योग की PLI योजना को सितम्बर 2021 में मंजूरी दी गई थी। मार्च 2026 तक इस योजना के अंतर्गत 67,820 रोजगार सृजित हुए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2024 में PM ई ड्राइव योजना शुरू की गई। देश भर में EV सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए 2000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। अब सौर PV विनिर्माण की बात करें तो भारत में सौर सेल और मॉड्यूल का घरेलू उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। घरेलू PV बाजार का मूल्य लगभग 32,400 करोड़ रुपए है। मार्च 2025 में सौर सेल विनिर्माण क्षमता 25 GW हो गई, जबकि 2014 में ये 1.2 GW से भी कम थी।
1: श्रोताओं, भारत का विनिर्माण क्षेत्र आज लगातार बढ़ती क्षमता, मजबूत होती तकनीक और उद्योग में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। नीतिगत समर्थन और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी इस आधार को लगातार मजबूत कर रही है। नई उत्पादन क्षमताओं के विकास होने के साथ भारत की वैश्विक भूमिका और बढ़ने की संभावना है। अधिक उत्पादन, अधिक मूल्य संवर्धन और मजबूत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, भारत के विनिर्माण क्षेत्र की आगे की दिशा यही है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह। नमस्कार।
3: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहेन उक्तं यत् युवानः महिलाः कृषकाः

0: कांग्रेस पक्ष न केवल राष्ट्रगीत अभी तो संविधान से अभी देश से जनापी अपमान अकोत्।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा पक्षस्य आरोप विषये कांग्रेस पक्षस्य प्रवक्ता जयराम रमेशः अवदत् यत् स्वातंत्र्य दिवसस्य उत्सवस्य समये दलस्य मुख्यालये राष्ट्रीय गीतं वंदे मातरम् संपूर्णतया गीयते स्म इति। सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठः अद्य नेपाल देशस्य आधिकारिक यात्राम् आरब्धवान्। त्रिदिवसीयायाः यात्रायाः उद्देश्यमस्ति यत् भारत नेपालयोर्मध्ये निकट रक्षा सहकारः सैन्य सम्बन्धः च इतोपि सुदृढः भवेदिति। श्वः जनरल सेठः तुंडीखेल नगरस्य सेनामण्डपे पुष्पमालां समर्पयिष्यति। नेपाली सेना मुख्यालये गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानं च प्राप्स्यति। सः नेपाली सेनायाः सेनाध्यक्षेन सह संवादमपि करिष्यति। रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् भारत नेपालयोर्मध्ये ऐतिहासिकं सामाजिकं सांस्कृतिकञ्च सम्बन्धाः सन्ति यद्धि विश्वस्मिन् अतुल्यमेव दृश्यते। इंडोनेशिया देशे अद्य प्रातः काले फ्लोर्स तटस्य समीपे 10.77 तीव्रतायां भूकंपानंतरं पूर्व नुसा तेंगरा प्रांते 14 दिवसानां आपत्कालीन प्रतिक्रिया अवधि घोषितास्ति। केरलम राज्ये पर्व वातावरणं निर्मीयते यतः राज्यस्य बृहत्तमः वार्षिकं पर्व थिरुवोनम अगस्तमासस्य 26 दिने आचरिष्यते। ओणम पर्व अद्य अथम दिवसात् आरभ्यते। अथम दिवसस्य विशेष आकर्षणम् अथा पुक्कलम् अस्ति यत् गृहेषु निर्मीयमाणं वर्णचित्रितं पुष्प आस्तरणम् अस्ति। सबरीमाला तीर्थे अपि मन्दिरम् अद्य मासिक पूजायै उद्घाटयिष्यते तथा च विशेष ओणम पूजा अगस्त 24-28 यावत् भविष्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वस्तनादारभ्य अरुणाचल प्रदेशे गांगीय पश्चिम बंगे ओडिशा राज्ये उत्तर प्रदेशे उत्तराखंडे च अतीव वर्षायै नारंगवर्णस्य संचेतना प्रसारितास्ति। हिमाचल प्रदेशे जम्मू कश्मीरे कोंकण क्षेत्रे गोवा राज्ये महाराष्ट्रे मध्य प्रदेशे उत्तर पूर्व भारतस्य च केषुचित् भागेषु अपि श्वः यावत् तीव्र वर्षा संभाविता अस्ति। दिल्ली नगराय तु ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य सायंकालादेव आरभ्य रात्रिं यावत् अतीव अल्पात् अल्पा वर्षा अनुमिता अस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गॉल अंतर्राष्ट्रीय क्रीडांगणे प्रथम निकष क्रीडा श्रृंखलायाः द्वितीय दिने आतिथेयो श्रीलंकां विरुध्य भारतीय पक्षः नवक्रीडकाणां हानौ। यदा अंतिमानि विवरणानि प्राप्तानि तावत् 55-400 धावनांकान् विरच्य क्रीडन्नासीत्। पूर्वदिने प्रचंड वृष्ट्या प्रथमद्वयं सत्रं नष्टं अभवत् येन भारतं मध्याह्न भोजन समये रात्रौ क्रीडकद्वयस्य हानौ 88-200 धावनांकान् अरचयत्। श्रृंखलायाः द्वितीया अंतिमा च निकष क्रीडा ऑगस्ट मासस्य 23 दिनांके कोलंबो नगरे आरप्स्यते इति वार्ताः।

0: My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. Karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका भी
0: वार्म वेलकम। आकार,
2: थैंक यू।
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले सुर्खियां।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 16,000 करोड़ रुपीस इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ ऑगस्ट। In bullion market, gold and silver prices rise for second straight week. And domestic investors to focus in on FOMC minutes, corporate earning results and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले दो सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ोतरी हुई और घरेलू निवेशक अगले सप्ताह एफओएमसी मिनट्स, कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजे और भू राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: दिल्ली से हमारे साथ ललित जुड़ रहे हैं। ललित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरा सवाल ये था कि अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन में लॉस बुक करते हैं 1,00,000 रुपए का, और सेम फाइनेंशियल ईयर में किसी और शेयर में हम 5,00,000 रुपए का कैपिटल गेन ले लेते हैं, तो मुझे क्या जो टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन में वो किस अमाउंट पे देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा?
2: ललित जी, जो आपका सवाल है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ कैपिटल लॉस करते हैं, जैसे अगर कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेच के करते हैं, और वहीं पर अगर उस सेम फाइनेंशियल ईयर में कहीं दूसरे कुछ कैपिटल गेन्स होते हैं, तो दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ ही हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म है वो दोनों के साथ हो सकते हैं। तो एक ये सर्टेन कंडीशंस होती है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो है आपका इसके लिए आपकी जो रिटर्न है वो टाइम पे फाइल होनी चाहिए। जो 31 जुलाई की डेडलाइन होती है आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते। जो आप बाद में लेट रिटर्न फाइल अगर करेंगे तो फिर आप ये वाला बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और अगर कुछ एक जो लॉस रह जाता है उसको आप नेक्स्ट 8 ईयर्स तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी इसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि ये जो मैंने आपको बताया है, आप एक दफ़ा बेहतर रहेगा अगर किसी एक टैक्स एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें।
1: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, अन्य खबरों में। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI अगस्त के पहले दो सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार के शुद्ध खरीदार बने हुए हैं। नवीनतम डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने अब तक घरेलू शेयर बाजार में 16,621 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में से 11,199 करोड़ रुपए शेयर बाजार में लिवाली के जरिए, जबकि 5,422 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए हैं। जुलाई में तेज हुई खरीदारी की रफ्तार अगस्त में भी जारी है। मजबूत घरेलू आर्थिक बुनियाद और कंपनियों के बेहतर तिमाही परिणामों के कारण खरीदारी को समर्थन मिला है। इस बीच ऋण बाजार में भी विदेशी निवेशकों की रुचि देखी गई है। अगस्त में अब तक जनरल लिमिट रूट के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों में 69 करोड़ रुपए का निवेश आया है। वहीं फुल्ली एक्सेसिबल रूट के माध्यम से इस अवधि में विदेशी निवेशकों ने 972 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
0: ओके आकार, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट समबडी वाज डिस्कसिंग विद मी।

0: I'm in turn asking you
1: Yep.
0: about this. What should I choose, dollar or gold?
1: I would say gold here because when it comes to the Indian portfolios, gold has a different role in your portfolio. It basically helps you hedge the risk. So what we have seen over the years is that whenever equities fall or there is uncertainty in the market, the fear in market, gold generally shines. So in such a scenario, it is better to have gold, but at the same time ensure that it does not form major part of your portfolio because it is not a productive asset. When we invest in equities, when we invest in equity stocks, there we do get dividend. There the whole system, a business is working wherein it is earnings, quarterly earnings comes in. When we are investing in fixed income, therein the earnings happen through the way of interest, a fixed charge on the revenue of the companies, whether they are making profit or not. But in the case of gold, the price depends only on the demand and supply. So it is basically dependent on the other person which is willing to pay, over and above or less than what you actually paid. So for that reason, hold it in your portfolio, but only as an insurance, maybe 5 to 10% or maximum 15%, not more than that.
0: Okay, and you just answered our listener about July 31st being the last day to, to file our IT returns. What is important is that people do not plan their tax outgo throughout the year. So what kind of planning should one do so that they are not taken in by surprise towards the end of March that, okay, where should I, invest so that my tax exposure is not much? How should one plan this?
1: So firstly, I mean, in this particular case, it was broadly related to the setting off and the carry forward of capital losses, which is impossible if someone doesn't file the returns on time, the 31st July. More than that, this planning was, had more relation in towards the deductions which we used to, take on and the investments we used to make during the month of January to March, the Section 80C investments. All these, deductions have by far gone in the new tax regime.
0: Regime, yeah.
1: So, but even in that case, I would say, for that reason, I mean, one should not stop investing and rather look at their, the whole income or the income plan at the very beginning of the financial year, plan their advance taxes, and if capital losses or gains planned any, I mean, plan their everything systematically.
2: अमित हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल
3: मैडम,
2: पूछिए.
3: थैंक यू. मैडम, मुझे एक्सपर्ट से सवाल ये था कि हम ऑनलाइन यदि गोल्ड लेना है, 1 ग्राम 2 ग्राम ये ले सकते हैं क्या? जो इसे गोल्ड परचेस करते, म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं, यूनिट्स परचेस करते हैं हम लोग, तो सपोज मुझे सिर्फ 1 ग्राम परचेस करना है या तो 5 ग्राम, तो क्या कुछ सोर्स कैसा है? थैंक यू.
1: अमित जी, बिल्कुल. गोल्ड अगर आपको जैसे ऑनलाइन परचेज करना है तो देखिए, सबसे पहले जो बहुत एक अच्छा तरीका था वो भारत गवर्नमेंट की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स थे जो कि 1 ग्राम के यूनिट में इशू होते थे, और इसमें जो भी गोल्ड का प्राइस होता था उसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता था. बट अभी काफ़ी समय से जो इसके जो प्राइमरी इशू होता था, जो फ्रेश ट्रांचेज होती थी, वो नहीं आई है. तो ये केवल सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है. तो उसकी एब्सेंस में जो एक बहुत अच्छा तरीका है, आपके पास गोल्ड ETF या गोल्ड फंड ऑफ फंड है. इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ. जो गोल्ड ETF है वो एक नॉर्मल शेयर के तरह स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है, और इसमें निवेश करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हो. ये एकदम फिजिकल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है. आप काफ़ी सारी कंपनीज के गोल्ड ETFs हैं, उनमें से आप कोई भी जो कम खर्चे वाला, कम एक्सपेंस रेशियो का हो, आप उसका चुनाव कर सकते हैं. और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, या फिर आप नॉर्मली शेयर्स में ट्रेड नहीं करते, या फिर आप एक सिस्टमेटिकली भी करना चाहते हैं SIP के ज़रिए, तो बहुत ही एक आसान तरीका है, आप गोल्ड फंड ऑफ फंड में निवेश कर सकते हैं. गोल्ड फंड ऑफ फंड एक म्यूचुअल फंड है जो कि इन टर्न आपका पैसा जाके ETF में इन्वेस्ट कर देगा. तो एक कन्वीनियंस के तौर पे और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए गोल्ड फंड ऑफ फंड वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट रहता है.
2: गाजियाबाद से हम आशु को जोड़ेंगे, मगर उससे पहले श्रोताओं, आइए जान लेते हैं कि सप्ताह के दौरान सर्राफा बाजार की स्थिति कैसी रही. सराफा बाजार में

0: then make a withdrawal, there are just 2 points. That is basically the CAGR. And when you invest through SIPs, and you know there are multiple inflows or any other transaction, then the annualized return calculated is XIRR.
1: आकर एक और सवाल मेरे मन में है जो बहुत सारे लोग, मैं यकीन करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के भी मन में होगा जो नए इन्वेस्टर होंगे या जो कुछ समय से इन्वेस्ट कर रहे होंगे थ्रू SIPs. हमारे पास अगर एक कॉर्पस ऑफ मनी है तो हम उसे सीधे तौर पर लमसम अमाउंट की तरह किसी फंड में लगाएं जो फंड हमें लगे कि ये फंड ठीक है, या हमें एक रोज़ रोज़ धीरे धीरे करके हमें ख़रीदना चाहिए जबकि हमारे पास एक साथ ही उतने पैसे मौजूद हैं, फिर भी हम फ्रैक्शंस में ख़रीदें या हम एक साथ ही जो पूरा बकेट है वो पोर कर दें?
0: बिल्कुल फ्रैक्शंस में एक साथ बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो हमारे को नहीं पता कि उस दिन जो मार्केट का लेवल है वो उसके आगे वो और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा. शॉर्ट टर्म में हम लोग कभी भी मार्केट की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते. तो ऐसे में जो सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि मान लीजिए अगर किसी के पास लमसम अमाउंट है और उसने आज के आज पूरा का पूरा अमाउंट निवेश कर दिया और ठीक एक हफ्ते के बाद मार्केट एकदम से नीचे गिर गई 10% 20%, तो जो पूरा का पूरा पैसा है उस पूरे के पूरे पे वो रिस्क आ जाएगा, वो वैल्यू एकदम से नीचे आ जाएगा. यहाँ पे
1: 10-20% का तुरंत का घाटा.
0: बिल्कुल. अगर मान लीजिए अगर किसने 1 लाख लगाया वो सीधा 90,000 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा. और यहाँ पे एकदम से इतना बड़ा लॉस देख करके बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टर्स को एक एंग्जाइटी होती है,
1: हतोत्साहित मन हो जाता है.
0: हाँ जी. तो वो उस वक्त तो फिर उनको ये लगता है कि जितना पैसा बचा है वो मार्केट से निकालो और यहाँ से भागो, और उसके बाद वो लोग फिर कभी इक्विटी में निवेश नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी गलती हो जाती है. तो यहाँ पे बेनिफिट जो अगर आप फ्रैक्शंस में पैसे लगाएंगे तोड़ तोड़ के, तो ये रहेगा कि मान लीजिए उस 1 लाख में से आज आपने खाली 10,000 लगाया हो, तो आपने सोचा होता कि मैं हर महीने एक इक्वल इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा, अगले महीने तक वो मार्केट 10% गिर गया होता. तो यहाँ पे आप जब वो और नए 10,000 लगा रहे हैं, आप अपनी परचेज कॉस्ट को एक तरीके से एवरेज आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पहले आपने थोड़ा महंगा खरीदा था अभी आप थोड़ा सस्ता खरीदे और थोड़े ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप SIP के थ्रू निवेश करिए. अगर आपके पास लमसम है भी तो आप उसको एक अलग बैंक अकाउंट में डाल के वहां से SIP चालू कर सकते हैं. और अगर आपको इस चीज का डर लगता है कि आप वो पैसा वहां से कहीं और खर्च कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे जो कि आमतौर पर रहते हैं, तो आप STP का सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपना फंड हाउस चुनिए, उनके एक लिक्विड फंड में उस पैसे को पूरे लमसम को डालिए और वहां से एक STP सेटअप कर दीजिए अपने इक्विटी फंड के लिए.
1: बिल्कुल. दिल्ली से हमारे साथ वीर जुड़ रहे हैं. वीर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपने सवाल पूछिए.
2: नमस्कार सर.
0: नमस्कार
2: सर. मैं ये पूछना चाहता था कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म गेन्स एप्रिशिएट हो जाएगा जी?
0: शॉर्ट टर्म से अगर जो शॉर्ट टर्म गेन से आप लॉन्ग टर्म लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो जहां तक मेरी जानकारी है वो संभव नहीं है. लॉन्ग टर्म लॉस केवल लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही हो पाते, बट इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दफ़े एक टैक्स एक्सपर्ट को ज़रूर कंसल्ट कर लें.
3: सो अकार, वी बीन टॉकिंग अबाउट क्वाइट अ बिट ऑन यू नो हाउ द मार्केट पैनिक हैपेंस अमंगस्ट द पीपल एंड यू हैव एड्रेस्ड इट क्वाइट अ बिट एज वेल. Given the market swings that we are seeing these days, primarily due to the geopolitical developments, how should an investor deal with the market panic? You know, of course, you are saying stay there, buy, you know, through SIP and all that. But are there any other ways in which a panic can be tackled?
0: So I think firstly, one should be, you know, reduce the time of their, you know, news watching. So, you know, quite often what happens is that we get...
3: as you said, don't even look at your portfolio for a month.
0: Yes, yes. And even on the other angle, don't get glued to the news TV channels, because they keep on repeating the negative points one after the other. So it's better to stay informed, maybe hear it for just like 30 minutes or so during the day. And that's it. I mean, that's enough. So it will help you psychologically to, you know, stay calmer and maybe...
3: What about the financial discipline?
0: Yeah, so basically, yeah, it will help you there. But, you know, I mean, because, you know, if you get panicked, I mean, when you start, you know, watching the news and you get panicked, then you start withdrawing your money, because then you will start feeling that, you know, okay, this is happening. Maybe it will affect the economy and then the markets will go down. So...

0: monitor the monthly unemployment data and the latest figures on core industries growth. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week with six new mainboard IPOs opening for subscription and five mainboard IPOs scheduled to make their stock market debut. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the West Asia conflict. In Japan, GDP estimates and trade data will remain on investors' radar, while inflation figures from the UK will also be closely watched. Akar, very quickly, we'd like to understand from you regarding the IPOs. Would you recommend our listeners to actively participate in the IPOs and go in for them?
1: For a normal retail investor, unless until you have those skills to evaluate it and you know, have that temperament, don't go for them directly, because if you invest in a mutual fund scheme, your fund manager is already there to, you know, do that hard bit of work and take those decisions. But yes, at the same time, if you know, you feel very strongly positive of a particular IPO, you have analyzed it yourself, you understand what kind of you know, work that company does, and you have gone through the annual the complete prospectus, and you know, you have that temperament that, you know, if soon after investing on the listing day there won't be much gains, but you still be able to okay and hold the stocks for a longer period of time, then yeah, definitely you can go and invest.
2: अगर मेरे पास कुछ पैसे हों जो मैं हर महीने खर्च करना चाहूँ, SIP में इन्वेस्ट निवेश करना चाहूँ, तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं, इसमें मैं परफॉर्मेंस देखते हुए मैं सब में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करूं, या मैं ये देखूं कि यहाँ इस पर्टिकुलर कैप में मुझे सबसे अच्छी बढ़त दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, तो मैं यहाँ पर अपना वो जो सारा पैसा है हर महीने जो
0: मैं
2: जी बिल्कुल
1: इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये तय करें कि आपको उस पैसे की आवश्यकता कितने सालों के बाद होगी, वो क्या पर्पस है जिसके लिए आप निवेश कर रहे हैं. क्योंकि इक्विटीज़ के अंदर भी, जैसे कि आपने कहा, जो सारी कैटेगरीज है, फ्लेक्सी कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, इन सब के लिए एक अलग अलग सूटेबल होराइजन होता है. केवल ये देखना कि यहाँ स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले साल बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए तो मैं उसमें निवेश कर देता हूँ, सही नहीं होएगा. क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, इनमें उतार चढ़ाव बहुत जोर से आता है, और आमतौर पर इसके लिए 7 से 10 साल का होराइजन रखना चाहिए. तो अपना होराइजन पक्का कीजिए, फिर फंड का चुनाव कीजिए.
2: बिल्कुल आकार, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और राजेश के सवालों के जवाब देने के लिए.
0: थैंक यू आकार फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 16,000 crore रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 weeks ऑफ ऑगस्ट. In bullion market, gold and silver prices rise for second straight week, and domestic investors to focus on FOMC minutes, corporate earning results and geopolitical developments for Qs next week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है. उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया. श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं.
5: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की. 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो.
4: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थियों लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेमा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कंठन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने 2014 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के विस्तार और उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रशांत कुमार सिन्हा। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government has introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum

0: इकोनॉमी और सातवां है सॉफ्ट पावर। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं?
1: सबसे पहले हर्जी, जैसे हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जब भी भाषण देते हैं लाल किले के प्राचीन, तो उनकी सरकार की जो उपलब्धियां रही है उसके ऊपर तो जरूर प्रकाश डालते ही है, और साथ ही साथ ये बताते हैं कि आगे चल के किस तरह से देश का चलन होगा, हमारे जो पूरा ढांचा किस तरह आगे बढ़े। और क्योंकि 1947 के 100 साल पूरे हुए हैं, यानी 2043 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के उभरना इस लक्ष्य को साधा हुआ है, तो उसके तहत जो सप्तधारा विकास है वो एक 7 सूत्रीय विजन है जो कि भारत की भविष्य की तरक्की के मुख्य आधार हो, चाहे वो उत्पादक हो, कृषि हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर, इन पे केंद्रित है। इस रूपरेखा का उद्देश्य भारत को आर्थिक और रणनीतिक क्षमताओं के मजबूत करना है और विकसित भारत की ओर, जैसे कहा कि देश की यात्राओं को एक तीव्र गति प्रदान करना है।
0: और ये सातों धाराएं मुझे लगता है कि अगर पूरी गति से चलनी शुरू कर दें, काफी इसमें से आगे प्रगति हो चुकी है, हो रही है लगातार, तो इसका जो फोर्स आएगा, जो बल मिलेगा देश के विकास के लिए, वो सप्तधारा से सहस्त्रधारा का बल मिल सकता है।
1: जी अभी जैसे आपने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो 7 बिंदु है या 7 रूपरेखा जो खींची है इन 7 धाराओं का, इन पे कार्य शुरू हो गया है, चल रहा है, अलग अलग गति है सब में, तो ऐसा नहीं है कि ये आज शुरू होगा, ये कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं और इसमें एक तरह से सम्मिलित तौर से, जैसे अगर आप जानते हैं कि भारत सरकार पिछले 10-12 साल से कहती है होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि पूरी सरकार एक तरह से काम करे, ना कि हर विभाग अलग काम करे।
0: प्रधानमंत्री जी ने जो पहली धारा की बात कही वो मैन्युफैक्चरिंग पावर की है, मैन्युफैक्चरिंग पावर ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ढले, कंपोनेंट डिजाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक पूरी जो वैल्यू चेन है वो भारत में ही हो और दुनिया भारत के पास आए, आप इसे कैसे देखते हैं?
1: मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादकता, जैसे हम जानते हैं कि भारत में पिछले कई दशकों से इस रहा है फोकस, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का जितना होना चाहिए प्रभाव वो नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सर्विसेज सेक्टर 50-55% GDP को कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद कृषि भी है करीब 17-18% और बाकी मैन्युफैक्चरिंग से आता है, तो ये हम चाहते हैं कि इस पे ज्यादा हो, क्योंकि जब तक किसी भी राष्ट्र के पास मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादक बनाने की क्षमता ना हो तो उसकी गति में, खासकर उनकी जो अर्थव्यवस्था पे, वो गति धीमी हो जाती है, और इस पे कई सालों से काम हो रहा है। इसके साथ साथ दो बहुत जरूरी है जो प्रधानमंत्री ने भी बार बार कल भी कहा और पहले भी कहे, एक तो गुणवत्ता, और इसमें सबसे ज्यादा ये है कि आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करने हो, ताकि आप देखें कि हम विश्व में जब विश्व पटल पे अपने साजो सामान रखते हैं तो आप द बेस्ट के साथ और जीरो डिफेक्ट के साथ कम्पीट करें, ताकि लोग कहें कि ये प्रोडक्ट आपने ले रहा है तो भारत जाएगी, तो इस तरह के वैश्विक मानकों में आप पूर्ण तरह से उतरे। इसमें लागत की प्रतिस्पर्धा है, अगर आप देखें 2014 में कच्चे माल और पूर्जे के लिए आयात पर ज्यादा निर्भरता के कारण लगातार ज्यादा थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिक्री हुई थी और बड़े पैमाने में उत्पादन के फायदा यानी इकोनॉमी खेल सीमित थी। इसको बदल के 26 में जब मेक इन इंडिया और PLI स्कीम जैसे नीतिगत सुधार किए तो आयात पर निर्भरता कम हुई, ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन ने उत्पादन की लागत कम की, तो इस पैमाने पे जिसे कहते हैं कि काम हो रहा है। जब रक्षा की ओर जाएं तो रक्षा कॉरिडोर की बात हुई है, मैन्युफैक्चरिंग बेस हम बना रहे हैं, और जैसे मैंने कहा जो गुणवत्ता मानक है इस पे भी काफी दिया जा रहा है, आज जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा उस पे ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही साथ ISO सर्टिफाइड चीजें प्लांट लगे, क्योंकि वैश्विक अगर आप प्रतिस्पर्धा में उतरे तो आपका उत्पाद उस गुणवत्ता के साथ हो ताकि कोई बाधा ना है, तो ये सब कुछ चीजें हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम चले तो फार्मा इंडस्ट्री एक है जो कि पिछले कई सालों से सिर्फ जेनरिक दवाइयों पे दबदबा था, लेकिन अब वो बायोटेक की ओर अग्रसर है।
0: दूसरी धारा की बात करें केवी प्रसाद जी, तो वो है कृषि और फूड प्रोसेसिंग, इसमें पारंपरिक खेती से आगे बढ़ने की बात कही गई है, क्या है ये पूरा विस्तार से बताएं?
1: हम सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब जो है सिर्फ कृषि के साथ जो वैल्यू एडेड जिसे कहते हैं कृषि के पैदावार के, तो एक तो उसके अंदर जो गुणवत्ता के अलावा उसके अंदर जो कार्य हो रहा है वो नई विधि से हो, उत्पादक तो खाद्य सुरक्षा, हमारे यहाँ ठीक है आज अनाज का इतना उत्पादन है 357 मिलियन टन का हो गया है, गेहूं के उत्पादन बढ़ाया, तिलहन के उत्पादन बढ़े, लेकिन इसमें कई सारी चीजें, बागवानी का उत्पादन बढ़ाया, पशुपालन और मत्स्य पालन पे डेयरी क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है। इसके बावजूद हमने देखा है कि आजकल विश्व में एक नई चीज है कि जलवायु के अनुकूल क्षमता पोषण के लिए जैसे हमने मोटा अनाज श्रीअन्न का जो बदलाव दिखाया, बढ़ावा दिया सरकार ने, वो भी एक पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ एक खाद्य पद्धति और पदार्थों का उसमें मिश्रण थोड़ा बदला है ताकि लोगों का अन्न के ऊपर ध्यान जाए। इस तरह से कई चीजें हैं, फूड प्रोसेसिंग और वैल्यूएशन जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ग्रामीण का आय बढ़ाना चाहते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ोतरी चाहते हैं तो ये एक है, कोल्ड चेन होना, मेगा फूड पार्क करना, एग्रो प्रोसेसिंग, ये सब चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ इसमें चुनौतियां भी हैं। जैसे मैंने कहा जलवायु संबंधी जोखिम है, छोटे किसानों का बिखराव है, फूड प्रोसेसिंग की कमी है, तो ये सब चीजें और कोल्ड चेन जिसे कहते हैं कि ताकि आपके पास ठंडी जगह हो जहाँ पे आपका जो पदार्थ है वो आप रख लें, खासकर फल और सब्जियां, और कुछ जो है ज्यादा दिन के बाद आप उसका प्रयोग भी ला सकते हैं। हर्ष जी
0: बिल्कुल, और साथ ही ये सब जब हम करने लगेंगे तो ग्लोबल मार्केट तक भारत की जो पहुंच है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। तीसरी धारा जिसकी बात कही गई है वो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। हमने पहले ही देखा कि पूरी दुनिया किस तरीके से मुरीद हो चुकी है भारत के UPI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता की, और भारत से बहुत कुछ सीख रही है। अब जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तीसरी धारा के रूप में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को आगे बढ़ाना है तो हमें इसे कैसे लेना चाहिए, ये कैसे समझना चाहिए?
1: हम सबको ज्ञात है कि इसी साल के शुरुआत में भारत में AI मिशन जो 2025 में लॉन्च हुआ था, एक बहुत बड़ा कृत्रिम इंटेलिजेंस का हमने यहाँ पे बहुत बड़ा सर्विस समिट किया था, तमाम सारे विशेषज्ञ आए थे, और ये ऐसा युग है, पूरी दुनिया जूझ रही है इसे, AI के ऊपर एक प्रतिस्पर्धा है, विश्व के बड़े राष्ट्र इसमें अग्रसर है, तो भारत के पास सब जानते हैं एक सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा पूल है और भारत के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दुनिया में उनका लोहा मानते हैं, तो ऐसे में भारत भी चाहता है कि देश में ही इसका विकास हो। सिर्फ AI तो एक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका आपने विशेष उल्लेख किया है, UPI इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी जगह काफी राष्ट्रों के साथ बात हुई है कि वहां के राष्ट्रों के साथ आपके पेमेंट UPI के जरिए हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो साइंस में जो होता है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये भारत का एक बहुत ही जिसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है विश्व में, और इसके ऊपर भी लगातार काम हो रहा है ताकि पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पब्लिकेशन आए इन चीजों में, और हमारे जो डॉक्टरेट है, जो ग्रेजुएट है, ऑलरेडी हमारे पास सबसे बड़ा साइंटिफिक पूल माना जाता है, और एक खास विशेष ध्यान इस पे दिया जा रहा है कि पेटेंट और इनोवेशन में बढ़ोतरी हो, क्योंकि पेटेंट जिसके पास है अमेरिका का लोग मानते हैं लोहा या चीन का मानते हैं तीन, उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी तेज से विकास किया है और उसमें पेटेंट लेके वो उसी पे टेक्नोलॉजी पे ही वो उनका अर्थव्यवस्था पर मजबूत कर रहे हैं, तो भारत जब अपने आप को प्रतिस्पर्धा में ला रहा है और 2047 का लक्ष्य रखा है कि आप एक विकासशील राष्ट्र हो, तो ये सारे चीज उसकी तरफ कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्ष जी
0: चौथी धारा जो है वो है गतिशक्ति। हमने पहले भी देखा है कि देश में तेज रफ्तार और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड रेल, हाईवे, जलमार्ग सबको पिछले 10-12 वर्षों में काफी मजबूती प्रदान की गई है। जो रास्ते हम पहले 12-12 घंटे में 14 घंटे में तय करते थे, अब वो रास्ते महज 3-4 घंटों में हम तय कर पा रहे हैं। गतिशक्ति देश को कैसे और आगे बढ़ाएगा?
1: हर जी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जैसे सड़क है, आपके एयरपोर्ट है, आपके रेलवेज है, आपके जल मार्ग से जो व्यवस्था है, इसमें भी काफी है, क्योंकि जब आपके पास जल प्रबंधन और जल मार्ग और सी पोर्ट्स आपके अच्छे हों तो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो टर्न अराउंड टाइम है वो जल्दी होगा, और जिस तरह से इन बंदरगाहों का विकास हो रहा है इसकी वजह यही है कि अगर आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करना चाह रहे हैं, आप आयात और निर्यात में, आप विश्व के जो बड़े बड़े जो सी पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह है उसमें देखिए, उसमें टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, यानी कि माल लदा हुआ जहाज आया 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसमें से सामान उतारा, फिर सामान चढ़ाया और चल देते, क्योंकि वक्त इतना कम देते हैं, तो गति जो है इसी से मिलेगी जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधाएं का तेजी करें। आपने फैक्ट्री तो लगा ली एक छोटे कस्बे में या गांव में, लेकिन अपना सामान जब तैयार किया अगर उसको एक्सपोर्ट के लिए आप नहीं बेच पाए और ज्यादा वक्त लगे तो उसमें नुकसान सबका होगा। ये इस चीजों को बहुत जरूरी है, इस पे जोर देना, और ये इसी पे ज्यादा फोकस है। हर्ष जी
0: बिल्कुल, और बंदरगाहों की बात आपने की, प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि बंदरगाहों को केवल माल उतारने और चढ़ाने की जगह न माना जाए बल्कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट के रूप में विकसित करना भी इसका बहुत प्रमुख उद्देश्य है, जिस दिशा में हम आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। पांचवी जो है धारा वो है रक्षा शक्ति। हमने देखा प्रसाद साहब की रक्षा के क्षेत्र में भारत ने पिछले 12 वर्षों में कितनी तरक्की की, पहले हम पूरी तरीके से आयात करते थे रक्षा से संबंधित उपकरण, अब ना सिर्फ वो आयात कम हुआ है बल्कि अब कई देशों को तो भारत निर्यात करने लगा है, क्या कहते हैं आप?
1: जी हर जी, अगर आपको मैं एक आंकड़ा दूं, 2014-15 में हमारा जो है स्वदेशी प्रोडक्शन है वो करीब 46,000 करोड़ था, वो 2025-26 में 1,78,00,000 करोड़ हो गया है। तो ये दिखाता है जो मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम है, आत्मनिर्भर भारत की सफलता दिखाता है, जिसमें आपने कहा एक्सपोर्ट्स की बात की, इसमें भी उछाल आया। डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 में कोई 686 करोड़ रुपए था, अब वो बढ़कर यानी 2025-26 में 38,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया और 80 से ज्यादा देशों

0: का यानी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को लेकर जो इंजन तैयार होने वो भारत में ही तैयार करने की एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है।
1: और जो छठी धारा है वो ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी, इसमें अब तक हमने क्या प्रगति की है और आगे हमें क्या करना चाहिए?
0: ग्रीन इकोनॉमी की बात करें तो सबसे बड़ा है नेशनल सोलर मिशन, और साथ ही साथ भारत और फ्रांस ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर एक परिकल्पना कल्पनी, जिसमें करीब 70 से 80 ज्यादा देश इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो इक्वेटर है उसके आसपास इतने रेडियस तक जो राष्ट्र हैं, और भारत ने अब जैसे 70 गीगावाट से ज्यादा इंडस्ट्रियल सोलर कैपेसिटी हासिल कर ली है, जो 2030 तक 5000 गीगावाट, और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की है एक तरह से जिसके पर दारोमदार है, और साथ ही साथ एक फेम स्कीम लॉन्च किया है जिसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाकर उनका निर्माण करे, और 2015 में शुरू किया एक प्रोग्राम था इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और आज हम जानते हैं कि ईवी के ऊपर भारत सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि आप खरीदे ईवी व्हीकल, अलग अलग जगह चार्जिंग पॉइंट है। ग्रीन इकोनॉमी इसलिए भी है, जैसे मैंने कहा प्रतिस्पर्धा के दौर में विकासशील राष्ट्र आप पे मापदंड लगाते हैं कि नहीं आप पोल्यूशन कम कीजिए, आप इस पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम कीजिए, एनर्जी पे खर्चा अलग कीजिए, और इसी वजह से हम कोयले की ऊर्जा से नहीं, तो ये सब है। ब्लू इकोनॉमी की जहां तक बात है, सागरमाला प्रोग्राम जो हमारा फोकस है, समुद्री व्यापार की क्षमता की जो हम बात कर रहे हैं, और डीप ओशन मिशन जिसके पर प्रधानमंत्री जी ने कल भी अपने भाषण में बताया था कि किस तरह से हमने कई नो गो एरियाज को खोल दिया है।
1: जी, और प्रसाद जी, भारत के पास तो इतनी विशाल समुद्री तटरेखा है, महासागर है, तो हम मत्स्य पालन और समुद्री पर्यटन की संभावनाओं को पूरी तरीके से इसका दोहन कर सकते हैं। और साथ ही जो सातवीं धारा है वो है भारत का सॉफ्ट पावर, यानी योग, हस्तशिल्प, भारतीय संस्कृति, सिनेमा, VFX, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कॉन्टेंट, जिसमें हम पहले से ही काफी आगे बढ़े हुए हैं वैश्विक पैमाने पर, और अब और आगे बढ़ेंगे आने वाले वर्षों में। केवी प्रसाद साहब, आपका आकाशवाणी से जुड़ने और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सप्तधारा से विकसित भारत की विकास यात्रा को मिलती नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:26 हो गए हैं और आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर ये समय है कार्यक्रम सांझ ढले का। सांझ ढले आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ रेशमा, और आइए सुनते हैं फिल्म काला बाजार से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये मधुर सा गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया है SD बर्मन ने। चांद को देखकर महबूब को याद करते हुए उसके साथ होने का अरमान जाहिर करते इस गीत में SD बर्मन ने राग शिवरंजनी से ऐसा रंग भरा है कि मोहम्मद रफ़ी इसे गाते हुए पूरा दृश्य आंखों के सामने पेंट कर देते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत और मन की आंखों से देखते हैं वो दृश्य।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जी हाँ, आकाशवाणी FM गोल्ड है ये 100.1 MHz पर सुन रहे हैं आप इसे। समय हुआ है 7:36 और FM गोल्ड पर इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सांझ ढले मेरे यानी रेशमा के साथ। और चलिए सांझ ढले में गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए ये अगला गीत सुनवा रही हूँ मैं आपको, फिल्म आरजू से, जिसमें पर्दे पर हैं साधना और आवाज़ है लता मंगेशकर की। नायक की बेरुखी से आहत नायिका का दर्द बयां करने में हसरत जयपुरी के बोलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस गीत में, और पुराने दिनों की यादों और अब बिरहा की घड़ियों का कॉन्ट्रास्ट न सिर्फ बोलों और दृश्यों में दिखता है बल्कि शंकर जयकिशन के संगीत के साथ इसकी चुभन और गहरी हो जाती है, और उस पर आवाज़ लता मंगेशकर की। तो आइए महसूस करते हैं वही मीठा सा

हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन और लता मंगेशकर का जादू आइए एक बार फिर दोहराते हैं। और इस बार जादूगरी बढ़ाती हुई एक और आवाज है इस गीत में, मोहम्मद रफी की। 1961 में जंगली फिल्म से लता और रफी की आवाज में इस गीत के साथ सांझ ढले का आज का सफर यहीं तक रहेगा। मैं आपसे एक बार फिर मिलूंगी 8:10 पर कार्यक्रम मधुरिमा में, और फिलहाल इस गीत के उस पार आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए, आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर 25 नई अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया। सरकार ने डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। और बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी।

0: अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को 18 अगस्त तक चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेज प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर भी भरोसा करें। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल्द ही आधुनिक ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया। इस दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत बैठक कर पूरी प्रणाली की रूपरेखा पर चर्चा की।
1: प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत कैबिनेट की पूरी प्रक्रिया कागज रहित, सुरक्षित, तेज और पारदर्शी होगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठकों से जुड़ी पूरी प्रक्रियाएं जैसे नोट्स, एजेंडा, संलग्न दस्तावेज, निर्णय और बैठक की कार्यवाही डिजिटल माध्यम से संचालित की जा सकेगी। इससे निर्णय लेने की गति बढ़ेगी, गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा मजबूत होगी और विभागों के बीच समन्वय भी अधिक प्रभावी बनेगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिससे सरकारी प्रक्रियाएं सरल हो सके, साथ ही प्रिंटिंग और दस्तावेजों के रखरखाव पर होने वाला खर्च भी कम होगा तथा कागजों पर निर्भरता लगभग समाप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना नहीं बल्कि शासन को अधिक तेज, पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका पहला कार्यकाल वर्ष 1996 में मात्र 13 दिनों का था। इसके बाद उन्होंने 1998 से 1999 तक करीब 11 महीने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1999 से 2004 तक उन्होंने अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। वर्ष 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र निर्माण, समावेशी नेतृत्व और राष्ट्रीय गौरव के प्रति उनकी वचनबद्धता भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक ऐसे दिग्गज थे जिनका व्यक्तित्व देशभक्ति, लोकतांत्रिक मूल्यों, संवेदनशीलता और असाधारण वाक्पटुता का अनूठा संगम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए वाजपेयी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य बोध और जनसेवा की अखंड प्रेरणा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सुशासन के मजबूत नींव से लेकर पोखरण से साहसिक निर्णय तक उनका प्रत्येक कदम राष्ट्रहित और भारत के सामर्थ्य को समर्पित रहा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज तिमारपुर से 25 नई अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राजधानी में कैंटीनों की संख्या 100 हो गई। इस योजना के अंतर्गत करीब 1,00,000 श्रमिकों, जरूरतमंदों, दिहाड़ी मजदूरों और अन्य निम्न आय वर्ग के लोगों को प्रतिदिन केवल ₹5 में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि इन कैंटीनों का शुभारंभ अत्यंत

0: सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य गरीबों, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों और दिल्ली में रोजगार के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोगों को सस्ता तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।
1: ये अन्न योजना दिल्ली राजधानी का महत्वपूर्ण योजना है। काम करने वाले को कम से कम भोजन मिले, वो भोजन भी पाँच रुपए में क्या आते, कुछ नहीं आते। सरकार अपना पैसा कच्चा कर रहे और ये महत्वपूर्ण योजना चला रहे। ये अटल कैंटीन दिल्ली के चुने हुए जे क्लस्टर श्रमिक कॉलोनी के आसपास खोले गया है। प्रतिदिन 70,000 से अधिक मील्स इन अटल कैंटीन से वितरित किए जाते हैं। अब तक 75 अटल कैंटीन से 95 लाख मील्स वितरित किया जा चुका है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 100 अटल कैंटीन का संकल्प अटल बिहारी वाजपेयी के अंत्योदय और जनसेवा की भावना को आगे बढ़ाने वाला है।
2: अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष और हमने संकल्प लिया कि 100 अटल कैंटीन हम पूरी में खोलेंगे, जहां पे रोजाना 1,000 लोगों को खाना दिया जाएगा। 100 कैंटीन के माध्यम से रोजाना 1,00,000 लोग भोजन करेंगे, हर पेट भोजन 5 रुपए में। ये वो हमारा संकल्प था, जिसके माध्यम से दिल्ली की जनता में एक हमारा संवेदनशील जो विचार है वो पहुँचना चाहिए था।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम DTC बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की मौजूदा व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस फैसले के अंतर्गत बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को 1 सितंबर से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाना अनिवार्य हो जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों और रक्षाबंधन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, ताकि महिला यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। निगम के अनुसार अब तक 18,13,866 से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं। साथ ही निगम ने महिलाओं से समय सीमा से पहले स्मार्ट कार्ड बनवाने की अपील की। दिल्ली जल बोर्ड ने लंबित पानी के बिलों पर 100% विलंबित भुगतान अधिभार माफ करने की सुविधा को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि इस निर्णय के अंतर्गत उपभोक्ताओं को केवल मूल बकाया राशि जमा करनी होगी और पूरा LPSC माफ कर दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि जिन परिवारों पर पुराने पानी के बिल बकाया हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है। इसके अलावा उन्होंने शहरवासियों से लंबित पानी के बिलों का भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज अशोक रोड स्थित आदित्य सदन NDMC हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत लगातार 37वें रविवार को पौधारोपण किया। श्री चहल ने कहा कि केवल पौधा लगाना ही नहीं, बल्कि उसकी नियमित देखभाल और सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह में अपनी दिनचर्या का एक वीडियो साझा किया है। इसमें प्रधानमंत्री 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करने के लिए लाल किले जाने से पहले अपने लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर गायों और मोरों को खाना खिलाते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है।

भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होगी। पूर्व विश्व विजेता और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में ओलंपिक की मेजबानी के विजन का समर्थन किया। संवाददाताओं से बात करते हुए सिंधु ने बताया कि भारत के पास पर्याप्त सुविधाएं हैं और उन्हें और बेहतर बनाने पर बल दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय में से रह रहे आइवरी कोस्ट के एक नागरिक को डाबरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वर्ष 2020 में विदेशी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज था और वे मामले की सुनवाई से बच रहा था, जबकि अदालत द्वारा आरोपी को वर्ष 2024 से भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। सरकार ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान को लेकर जांच आयोग के गठन के बारे में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पीआईबी ने नागरिकों से सतर्क रहने और सत्यापित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। राजधानी दिल्ली में आज तेज धूप रही जिसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं विभाग ने बताया है कि कल आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर 25 नई अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया। सरकार ने डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। और बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। लगभग 600 करोड़ रूपये की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने

0: कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने 2014 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के विस्तार और उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। भारत के लिए देवदत्त पड्डीकल ने 167 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, The news read by Abhineet Shukla. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan, today after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price.
3: Not a single year between 2014 and 2026 has passed without the government launching a major scheme for farmers. Today, I want to tell the Congress leaders that if anyone has procured the highest quantity of food grain at the minimum support price MSP, it is the Narendra Modi government.
2: Army Chief General Dhiraj Seth embarked on an official visit to Nepal today. The three-day visit aims to further strengthen the close defence cooperation and military-to-military ties between India and Nepal. Tomorrow, General Seth will lay a wreath at the Army Pavilion, Tundikhel, and receive a guard of honour at the Nepali Army headquarters. He will interact with the Chief of the Army Staff, Nepali Army, and will be briefed by the Director General Military Operations, Nepali Army, on issues of mutual interest. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:11 और ये हुए 2 सेकंड और एफएम गोल्ड पर ये समय है कार्यक्रम मधुरिमा का। आज मधुरिमा में मैं हूँ आपके साथ रेशमा और आपको सुनवा रही हूँ कुछ गीत राग सोहनी पर आधारित।

1961 में आई फिल्म करोड़पति से ये गीत सुना आपने आशा भोसले की आवाज़ में, जिसमें संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, और ये संगीत जो था ये आधारित था राग सोहनी पर। जी हाँ, तो राग सोहनी पर ही बात कर रही हूँ मैं रेशमा आज आपके साथ कार्यक्रम मधुरिमा में। और राग सोहनी एक चंचल प्रकृति का राग है जिसमें विलंबित आलाप लेने से राग पूरिया की झलक आने की संभावना रहती है। पूरिया के अलावा राग हिंडोल भी एक ऐसा राग है जो सोहनी के काफ़ी करीब लगता है। उत्तरांग प्रधान ये राग यानी राग सोहनी अवरोह में ज़्यादा स्पष्ट हो पाता है। मारवा थाट से उत्पन्न है ये, और इसमें आरोह में ऋषभ और पंचम और अवरोह में केवल पंचम वर्ज्य होने से इसके जाति औड़व शाड़व मानी गई है। राग सोहनी के बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म संगीत सम्राट तानसेन से मुकेश की आवाज़ में।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, जिसमें कार्यक्रम है ये मधुरिमा। और मधुरिमा में राग सोहनी की बात हो रही है। तो राग सोहनी के परिचय में कहा जाता है कि कोमल ऋषभ मध्यम तीव्र पंचम वर्जित मान धग संवाद थाट मारवा संधि प्रकाश पहचान। यानी इस राग में ऋषभ कोमल लगता है और मध्यम होता है तीव्र, पंचम वर्जित है जैसा मैंने पहले भी बताया है, और इसका थाट है मारवा। वादी स्वर है धैवत, संवादी स्वर गंधार। गायन वादन समय संधि प्रकाश यानी रात्रि का अंतिम प्रहर, सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच का। आइए सोहनी पर ही आधारित ये अगला गीत सुनते हैं, फिल्म गृहस्थी से लता मंगेशकर की आवाज़ में, माफ कीजिए आशा भोसले की आवाज़ में है गीत।

तो श्रोताओं, आज मधुरिमा में हमने बात की राग सोहनी की और गीत भी सुने इसी राग पर आधारित। तो मधुरिमा में आज ये आखिरी गीत सुनवा रही हूँ आपको इसी राग की झलक लिए हुए फिल्म स्वर्ण सुंदरी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। और इसी के साथ रेशमा को दीजिएगा अनुमति आप।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी क्रिकेट के मैदान की, जहां भारत ने गोल में श्रीलंका के खिलाफ अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने 9 विकेट खोकर 460 रन बना लिए थे। वहीं एक और खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से, जहां बांग्लादेश ने कंगारुओं को हरा करके रचा है टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास। बात की जाएगी कार्यक्रम में महिला हॉकी विश्व कप की, जहाँ भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलते हुए इस ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट टीम को एक कड़ी टक्कर दी है। और बैडमिंटन का मैदान अब सज चुका है राजधानी नई दिल्ली में, जहां कल से शुरू होगी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। और अंत में कार्यक्रम में बात की जाएगी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं गोल में। भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाकर के अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के लिए देवदत्त पड्डीकल ने 167 रन का शानदार योगदान दिया। दिन का पहला सत्र बारिश के कारण पूरी तरीके से धुल गया। इसके बाद भारत ने अपने कल के स्कोर 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू किया। और क्रिकेट की खबरों पे और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, आज के मैच पहला सेशन जिस तरह से गया, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना मौका मिल पाएगा खेलने का, इतने रन बन पाएंगे, लेकिन भारत ने कह सकते हैं एक मजबूत पकड़ हासिल कर ली है मैच में।
1: जी शक्ति, बिल्कुल, जिस तरीके से बारिश आज हो रही थी उस समय ऐसा ही लग रहा था कि आज का खेल जो है वो धुल जाएगा, लेकिन देवदत्त पड्डीकल जब बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से आए तो उसी लय में नजर आए और शानदार बल्लेबाजी का उन्होंने प्रदर्शन किया। ऋषभ पंत ने भी उनका अच्छा साथ निभाया, 39 रन का योगदान दिया। लेकिन जब ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 68 गेंदों पर 51 रन बनाए उन्होंने। एक अच्छी पारी, एक बैलेंस्ड पारी उन्होंने खेली और टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ाया। लास्ट में मानव सुथार ने भी 43 गेंद पर 24 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को 460 रन के स्कोर तक पहुंचाया।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक मजबूत पकड़ भारत ने आज हासिल कर ली और 2 सेशन का खेल हो पाया।

0: आपने देवदत्त पड्डिकल की बात की, इसके पहले इस खिलाड़ी ने 2 टेस्ट मैच खेले थे, 90 रन बनाए थे, लेकिन कह सकते हैं कि सारी भरपाई कर दी इस तीसरे मुकाबले में।
1: जी बिल्कुल, और कई कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किए हैं। नंबर 3 पर श्रीलंका की धरती पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया, और इसके साथ ही साथ वो तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं नंबर 3 पर खेलते हुए जिन्होंने 150 प्लस स्कोर बनाया है श्रीलंका की धरती पर। इससे पहले ये कारनामा सिर्फ द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा ने कर पाया था। इसके अलावा अगर शक्ति बात करें तो इंडिपेंडेंस डे के दिन शतक लगाने वाले वे पहले टेस्ट बैटर बन चुके हैं, और अगर अंतर्राष्ट्रीय शतकों की बात करें तो उन्होंने विराट कोहली की लिस्ट को ज्वाइन किया है जिन्होंने ओडीआई शतक लगाया था। तो इसके अलावा अगर कहीं कहा जाए तो 2024 के बाद नंबर 3 पर किसी ने शतक लगाया ही नहीं था भारत के लिए टेस्ट में। 19 मुकाबलों के बाद 7 बल्लेबाजों को आजमाने के बाद देवदत्त पड्डिकल निखर कर आए और उन्होंने शतक जमाया।
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं, और शतक का और मोल तब बढ़ेगा जब भारत इस मुकाबले में जीत हासिल करता है, और शायद वो स्वतंत्रता दिवस के शतक की जो लहर है वो और मजबूत होती भी नजर आएगी। भारत को 2 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं, इसके बाद भारतीय टीम अगला टेस्ट जो है वो 19 नवंबर को खेलेगी। बीच में एक लंबा फासला है और बहुत तेज़ी से बदलती हुई WTC की टेबल है जो आपका स्लॉट फिक्स करेगी फाइनल में। लेकिन भारत के साथ ही आज बात होनी चाहिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के टेस्ट क्रिकेट में सफ़ेद जर्सी में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया है, और 23 साल बाद वो टेस्ट श्रृंखला खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली ये बांग्लादेश की टीम बनी है, जिसने डार्विन में पहले टेस्ट मैच में जब उसको चौथी पारी में जीत के लिए 57 रन की आवश्यकता थी, टीम ने महज 1 विकेट खोकर के ये लक्ष्य हासिल कर लिया। और जिस तरह का ये पूरा का पूरा मुकाबला रहा, आज शादमान इस्लाम 25 रन और मोमिनुल हक 30 रन बनाकर नाबाद रहे, और वो जीत दिलाई जो शायद दशकों तक बांग्लादेश क्रिकेट में और विश्व क्रिकेट में याद की जाएगी। भारत जैसा मजबूत देश, न्यूजीलैंड जैसी टीम भी उनकी धरती पर ऑस्ट्रेलिया को हराने से पहले कई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने कर दिखाया।
1: जी बिल्कुल शक्ति, और ऑस्ट्रेलिया जब मैदान पर उतरी तो उन्होंने टॉस के साथ ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे बल्लेबाजी चुन के कि वो इस मुकाबले को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने पहली पारी से ही मुकाबले पर पकड़ बनानी मजबूत कर दी। उनके गेंदबाज हसन महमूद ने पहली पारी में 6 विकेट लिए और पहले ऐसे गेंदबाज बने, बांग्लादेशी गेंदबाज बने, जिन्होंने 5 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर और 198 रन पर ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद तंजीद हसन जो कि पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक लगाया और 426 रन के स्कोर तक टीम को पहुंचाया। इसके बाद मेहंदी हसन मिराज ने तीसरी पारी में शानदार 5 विकेट हॉल लेते हुए ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर पहुंचा दिया, और आखिरी पारी में तो सबने देखा ही कि बांग्लादेश ने किस तरीके से आसान जीत दर्ज कर ली। ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है शक्ति, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने तीसरे प्रयास में ही ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मुकाबला जीत लिया है, जबकि पाकिस्तान को 7 और भारत को 12 मुकाबले लगे थे। तंजीद हसन, मेहदी हसन मिराज, हसन महमूद, इन सब खिलाड़ियों की जितनी भी बात करें उतनी कम। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने रंगना हैरत का 433 विकेट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, और वो बाएं हाथ के गेंदबाज सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में, और जोश हेजलवुड ने भी 300 विकेट का आंकड़ा जो है छू लिया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला चला और बहुत ही ऐतिहासिक ये मैच, जहाँ बांग्लादेश तीसरी एशियाई टीम बनी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मुकाबला जीतने वाली।
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं कि सफ़ेद जर्सी में ऑस्ट्रेलिया को हराना हर टेस्ट प्लेइंग नेशन का एक ख्वाब होता है, और इसके पहले जब बांग्लादेश की टीम टेस्ट मैच खेलने उतरी थी तो उसे जिम्बाब्वे से 1 पारी और 85 रन से हार का सामना करना पड़ा था, और काफ़ी आलोचना हुई थी उस टीम की। लेकिन कह सकते हैं कि एक नई रणनीति नए जोश के साथ उतरी, और ये वही बांग्लादेश टीम है जिसने इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया को 1 दिवसीय श्रृंखला में 2-1 से हराया है, पाकिस्तान को टेस्ट श्रृंखला में 2-0 से हराया है, आयरलैंड पे 2-0 की जीत दर्ज की है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा उदय नज़र आता हुआ इस टीम का क्रिकेट के मैदान पर, और एक बहुत शानदार जीत जो शायद ये टीम, इस टीम का हर खिलाड़ी अपने दिल में सालों सालों तक सजो के रखेगा। और अब क्रिकेट के मैदान के बाद बात की जाए हॉकी की, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत एक दमदार प्रदर्शन के साथ की है। भारत ने 2024 ओलंपिक की रजत पदक विजेता चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। सुनते हैं इस मैच पर ये रिपोर्ट।
2: अम्स्टेलविन के वागिनर हॉकी स्टेडियम में चीन के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करने उतरी भारतीय महिला टीम भले ही नतीजे को जीत में तब्दील नहीं कर सकी, लेकिन टीम ने अपने शानदार

0: खेल की बदौलत मुकाबले को 2-2 के स्कोर से ड्रॉ पर रोक दिया। भारत की ओर से नवनीत और दीपिका ने गोल किए। भारत ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। भारत को मैच के 8वें मिनट में पहली सफलता मिली जब नेहा ने डी के बाहर से गेंद सर्किल में भेजी, जिस पर नवनीत ने अंतिम टच देते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। 14वें मिनट में चीन की झांग यिंग ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में भारत ने एक बार फिर आक्रामक खेल दिखाया। दीपिका ने शानदार प्रयास करते हुए चीनी सर्किल में प्रवेश किया और बेस लाइन तक पहुंचकर फाउल हासिल किया, जिससे भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने खुद जिम्मेदारी संभाली और बेहतरीन ड्रैग फ्लिक के जरिए गेंद को गोल में पहुंचा दिया। भारत ने 2-1 की बढ़त बना ली और इसी स्कोर के साथ हाफ टाइम तक आगे रहा। हालांकि 39वें मिनट में चीन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जहां मा निंग ने शानदार ड्रैग फ्लिक लगाकर गेंद को भारतीय गोल में पहुंचा दिया और स्कोर 2-2 कर दिया। चौथे क्वार्टर में चीन ने विजयी गोल के लिए लगातार हमले किए, जबकि भारतीय टीम ने भी जवाबी हमले के जरिए मौके तलाशे। मैच के अंतिम मिनटों में चीन को पेनल्टी कॉर्नर भी मिले, लेकिन भारतीय डिफेंस ने शानदार संयम दिखाते हुए सभी खतरों को टाल दिया। आखिरकार दोनों टीमें निर्णायक गोल नहीं कर सकी और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारतीय महिला हॉकी टीम अब 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला पूल डी मुकाबला खेलेगी। भारत की नज़र इस मुकाबले में वर्ल्ड कप की पहली जीत दर्ज करने पर होगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जहां पर भारतीय महिला टीम ने एक शानदार शुरुआत कर दी है, अब पुरुष टीम जो पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हरा चुकी है, अब कल अपना दूसरा मुकाबला शाम 6:30 बजे से भारतीय समय अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। और अब बात की जाए नई दिल्ली में सेट हो चुके BWF विश्व बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप के स्टेज की, जो कि कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। पूर्व चैंपियन पीवी सिंधु और भारत की शीर्ष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इस प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। 2009 के बाद यह दूसरा मौका है जब भारत इस वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। 23 अगस्त तक चलने वाली इस 30वीं BWF विश्व चैंपियनशिप में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भारतीय सरजमी पर अपना दमखम आजमाते नजर आएंगे।
2: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पिछले महीने जापान ओपन का खिताब जीतने के बाद अपनी शानदार फॉर्म को इस टूर्नामेंट में भी बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगी। पीवी सिंधु 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट रही हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा भारत की दूसरी प्रतिनिधि है, वहीं पुरुष सिंगल्स में 2021 में इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी भारतीय चुनौती रखेंगे। आयुष को एक कठिन शुरुआती दौर का मैच मिला है, जहां उनका मुकाबला मौजूदा विश्व विजेता और टॉप सीड चीन के शी युकी से होगा। पुरुष डबल्स की बात की जाए तो एशियाई खेलों के चैंपियन और 5वीं सीड सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर बैडमिंटन ओपन वाली अपनी फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हरिहरन, अमसा करुणन और MR अर्जुन की जोड़ी भी भारतीय दल का हिस्सा है। महिला डबल्स में भारत को त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद तथा कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी से उम्मीदें होंगी, जबकि मिक्स डबल्स में देश की 3 जोड़ियां हिस्सा लेंगी, जिसमें सबसे अधिक उम्मीद ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो से होगी। वहीं रोहन कपूर और ऋत्विका गदे तथा आशित सूर्या और अमृता प्रमुतेश की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 4 रजत और 10 कांस्य समेत कुल 15 पदक जीते हैं। 2011 के बाद से भारत ने हर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम से कम 1 पदक जीता है। ऐसे में अपनी सरजमीं पर खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों की उम्मीदें घरेलू दर्शकों के बीच अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर होगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि इन खिलाड़ियों के साथ साथ जो सबसे मजबूत फैक्टर होगा वो होगा घरेलू दर्शक और अपनी घर की कंडीशंस। पीवी सिंधु ने कहा है कि वो भारतीय सरजमीं पर इस टूर्नामेंट के लिए बेहद उत्साहित हैं।
3: It gives me a lot of confidence and of course I'm really looking forward for the World Championships to start, and since it's happening in India, it's I think really excited and definitely, I mean, to answer your question, I think after the Japan Open, I think winning that gave me a lot of boost and a lot of confidence.
1: संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सिंधु ने खेलों

0: के क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की भी प्रशंसा की है।
1: I think it's really good to have that scope of thinking and making it happen in India. I think PM sir has that vision that, you know, we can host it. You know, there's nothing wrong in making it happen when PM sir said, you know, we want to make it happen. Now we all have to like work backwards since, you know, we have the facilities. It's just that we have to improvise it in a right way. And I'm hoping that we could, and that will be an amazing thing that even we can do it.
0: वहीं पीवी सिंधु के साथ उन्नति हुड्डा ने भी कहा कि वो भारतीय सरजमी पर खेलने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं।
2: It's my first world championships and it's happening in India. So I am really excited and looking forward for each match at a time. So I've prepared well mentally and physically.
0: और आयुष शेट्टी ने अपनी तैयारियों को लेकर के क्या कहा है, चलते चलते ये भी सुन लिया जाए।
3: As far as I think world championship, I think it's a really big tournament for everyone, even you know, for the world's best players. I think it's a huge stage, and it's happening in India. I think it's more special for me.
0: तो एक बड़ा अवसर होगा इन खिलाड़ियों के लिए। और नई दिल्ली में आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देश भर में ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रित रहा। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पहलवान शिवानी पवार ने कहा कि इस तरह की पहल हमारे दैनिक जीवन में फिटनेस को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।
4: संडे ऑन साइकिल का मेरा ये पांचवा इवेंट है। संडे ऑन साइकिल हमारे निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है फिटनेस की तरफ जाने के लिए, ज्यादातर उन लोगों के लिए जो अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जो घर में रहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा फिटनेस का एक मॉडल है।
0: और विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों 2025 की स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज पूनम बिष्ट ने भी इस दौरान साइकिल चलाई और लोगों को फिटनेस का संदेश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि फिट इंडिया अभियान एक बेहतरीन पहल है जो साइकिल चलाना किफायती और प्रदूषण मुक्त होने के साथ साथ फिट रहने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, इसके बारे में संदेश देती है। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
7: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं,

0: युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
0: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
1: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृहमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
3: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग

0: कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकर और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
3: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी

0: एक प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंद्र और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state.
3: If we want to make India a fully developed nation by 2047, we need to empower the youth, the poor, farmers and women. With this objective, farmers are being provided with the Kisan Samman Nidhi scheme benefits. Dairy facilities worth 500 crore rupees are being established for livestock. Employment opportunities are being created for the youth, and the BJP government has taken steps to expand Saras Dairy for women.
2: He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced

0: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है रानी दुर्गावती पर केंद्रित योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक रानी दुर्गावती। संयोजक हैं पुष्पेंद्र सौरभ और निर्देशक हैं विनोद कुमार।
1: समय 16वीं शताब्दी। चारों तरफ फैले अराजकता के माहौल के बीच गढ़ा कटंगा शायद एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, समृद्ध थी। गोंडवाना साम्राज्य के महाराज दलपत शाह अपनी पत्नी दुर्गावती, पुत्र वीर नारायण और राजमाता पद्मावती के साथ राजकाज संभाल रहे थे। किंतु समय कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। राजा दलपत शाह अचानक बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए। रानी दुर्गावती पर यह वज्रपात से कम न था।

0: रानी जी, राजमाता पद्मावती और राज पुरोहित महेश ठाकुर पधार रहे हैं।
1: पुत्री दुर्गावती, पुत्री दुर्गावती, हमारी प्रसन्नता पर काल की कुदृष्टि पड़ गई। पुत्री, काल की कुदृष्टि,
2: अपने आप को संभालिए राजमाता।
3: राजमाता, क्षमा चाहता हूं। नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती सती होंगी।
0: क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
4: मैं सती नहीं होंगी। मैंने प्राण और मन से अपने पति को स्वीकार किया था। वो चले गए, किंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दायित्व अब मेरा है। मां दुर्गा का दिया हुआ ये अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजमाता, आशीर्वाद दीजिए।
0: पुत्री,
4: आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा और सम्मान में समर्पित होगी।
0: पुत्री दुर्गावती।
5: महारानी।

0: महारानी, प्रणाम राजमाता।
1: क्या बात है दीवान आधार सिंह?
0: क्षमा चाहता हूं राजमाता, ये सब कुंवर चंद्र शाह के कहने पर किया गया था।
1: चंद्र शाह? बड़े भाई की मृत्यु के बाद कुंवर चंद्र शाह के कुकृत्य का अर्थ समझ आता है हमें। लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। दीवान जी।
0: जी राजमाता।
1: हमें सावधान रहना होगा। राजकुमार वीर नारायण को राजगद्दी पर बिठाते समय यदि चंद्र शाह कोई भी चाल चलता है तो हमारी आज्ञा है उसे बंदी बना लीजिए।
0: जो आज्ञा राजमाता।

0: और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। चंद्रशाह ने वीर नारायण के राज्याभिषेक में रुकावट डाली और रानी ने उसे बंदी बनाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। जिस तरह से यहाँ गढ़ा की गद्दी पर बालक वीर नारायण को बिठाकर रानी दुर्गावती शासन संभाल रही थी, ठीक उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर बालक अकबर को बिठाकर सल्तनत को संभालने में जुटा था बैरम खान। लेकिन विरासत में मिली साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खान की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। वो 18 वर्ष की उम्र का होते होते क्रूरता और अवसरवादिता की उस हद पर पहुंच गया था जहां उसे अपनों का खून भी पानी लगने लगा था।
1: जिल्ले इलाही गोंड रियासत की महारानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है, साथ ही जान भी बख्श दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती की बहादुरी और महानता की चर्चे हैं।
2: बहादुरी, महानता, बीरबल, हमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को किसी और की बहादुरी और महानता के किस्से पसंद नहीं। विजयनगर तो चलो दूर दक्षिण में है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप और गढ़ा की इस बेवा दुर्गावती को अपनी सल्तनत में मिलाना निहायत जरूरी है।
1: हुजूर, गढ़ा एक छोटा और शांत राज्य है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं।
2: खतरा सरहद का नहीं बीरबल, खतरा तारीख का है। आने वाला समय हमें महान अकबर कहे, इसके लिए हमें हर उस सिर को झुकाना होगा जो ऊंचा उठने की जुर्रत करता है, हर उस राजा और राज्य को जीतना होगा जो सचमुच महान हैं या हो सकते हैं। हम किसी और की महानता की परछाई में नहीं जी सकते।
1: बेहतर जहां पना, लेकिन
2: लोग कहते थे कि हम तो एक बच्चा है, लेकिन हमने उस बैरम खान से भी पीछा छुड़ा लिया जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्यों करना पड़ता है अगर महान बनना है तो, क्योंकि लोग उसे महान कहने लगेंगे, कहेंगे कि बैरम खान ने अकबर को तराशा और शहंशाह बना दिया, वरना वो तो इस लायक ही नहीं था।
1: और जो राजा आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे,
2: मिट्टी में मिला देंगे उन्हें भी और उनके नाम को भी।
3: जहांपना, रतनपुर के राजा कल्याण शाही आपसे मिलना चाहते हैं।
2: मिलने आया है या कुछ मांगने? ये रतनपुर है कहां?
1: जहांपना, रतनपुर गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर है।
2: ओ, तब तो पक्का दुर्गावती के खिलाफ कोई मशवरा देने आया। यहां के राजाओं को दूसरे राजा से इतनी जलन क्यों होती है बीरबल? बुलाओ उसे, देखें क्या है उसके पास देने या सुनाने के लिए।
3: रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हो।
4: जहां पना का इकबाल बुलंद रहे।
2: बैठिए। आप यहां किस लिए आए हैं कल्याण शाही?
4: जहां पना, गोंड राज्य की रानी दुर्गावती ने जब से मियां बाज बहादुर को मात दी है।
2: हमें मालूम है, कुछ ऐसा कहिए जो हम नहीं जानते।
4: जी, तब से हम पड़ोसी राज्य उनसे बहुत डरे हुए हैं। वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं।
2: अगर ऐसा होता तो अब तक उसने मालवा पर हमला बोल दिया होता। क्यों बीरबल?
1: जी, आपने सही फरमाया हुजूर।
4: जहां पना, मालवा पर हमला ना करके वो खुद को महान दिखाना चाहती हैं। और असलियत यह है कि वो मुगल सल्तनत को भी हथियाने की तैयारी कर रही हैं।
2: भला वो किसके दम पर?
4: एक तो उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है जहां पना, और दूसरे उसके पास एक नायाब हाथी और एक नायाब सलाहकार है जहां पना।
2: इन दोनों को हमारे दरबार में हाजिर कराने का फरमान भेजा जाए। क्या हुआ बीरबल, तुम खामोश क्यों?
1: आलीचा, अंदेशा है कि बेवकूफी में वो कहीं आपके हुक्म की बेअदबी ना कर दे।
2: तब तो और भी अच्छा होगा बीरबल, हमें गढ़ा को कुचलने का सीधा बहाना मिल जाएगा। महान हिंदुस्तान के एक और महान राज्य की महान रानी की महानता साबित होने से पहले ही खत्म हो जाएगी।

0: महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है।
1: मुगल बादशाह का दूत? अंदर ले आओ उसे।
0: जो आज्ञा।
2: महारानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। कहा है कि अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजें।
1: और इस थाल में तोहफा क्या है?
2: दमकते सोने का बना पिंजरा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक औरत का काम राजपाट संभालना और जंग के मैदान में उतरना नहीं है, महल के अंदर रहना है।
1: आप अतिथि गृह में विश्राम करिए, हमारा जवाब लेकर जाइएगा।
2: जो हुक्म महारानी साहिब।
1: जलालुद्दीन की ये जुर्रत कि उसने हम

0: हमारे प्रिय सरमन हाथी और आधार सिंह जी आपको आपको मांग लिया।
1: वो ऐसा ही करता है महारानी, वो कमजोर राज्यों को डराने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाता है।
0: जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। वो हमें सोने के पिंजरे में कैद पंछी बनाना चाहता है।
1: आपने सही अनुमान लगाया है रानी साहिबा।
0: उस मुगलिया दूत को वापस यहां लेकर आओ।
2: जो आज्ञा महारानी। हुक्म महारानी साहिबा।
0: अब आप जा सकते हैं, आपका काम पूरा हो गया। अपने जहां पनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। हां, उनके इस नायाब तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे।
2: जो हुक्म।
1: महारानी, यदि हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा।
3: वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए?
0: एक पिंजिना बनवाइए, वो भी शुद्ध सोने का। उसने मुझे पिंजरा भिजवाया है ना, हम उसे कपास धुनने का पिंजिना भिजवाएंगे। उसे संदेश देंगे कि बेहतर है कि वो गोंडवाना पर नजर ना डाले, वरना पूरी जिंदगी बैठकर कपास धुनने के अलावा किसी और काम के लायक नहीं बचेगा। गढ़ा पर नजर ना डाले।
3: परंतु सोने का?
0: हाँ, ठीक उतने ही वजन का जितने वजन का उसका पिंजरा है, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि गढ़ा की महारानी कोई भिखारिन नहीं है जो उसके सोने से तब जाए।
4: और इसे लेकर दिल्ली कौन जाएगा माँ?
1: मैं जाऊंगा, यदि महारानी उचित समझें।
0: उचित है। आखिर उस अहंकारी को पिंजिना भिजवाने का सही अर्थ भी तो समझाना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए।
1: जो होगा महारानी।

0: बा मुलायजा होशियार शहंशाह हिंदुस्तान जिल्ले इलाही जिल्ले सुभानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं।
1: जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे, जहां पनाह गढ़ा रियासत के मंत्री आधार सिंह आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
2: अंदर ले आओ।
3: प्रणाम।
2: तो तुम हो आधार सिंह?
3: जी हां जहां पना, छोटी रियासत का एक छोटा सा कारिंदा।
2: बहुत नाम सुना है तुम्हारा।
3: आपने हमारी महारानी जी को एक तोहफा भेजा था, उन्होंने भी आपके लिए ये विशेष उपहार भेजा है।
2: देखे तो इस थाल में है क्या, तोहफा पेश किया जाए।
3: ये
2: क्या है? ये
3: पिंजना है हुजूर, हमारी भाषा में इसे पिंजना कहते हैं। इससे कपास धोनी जाती है सूत तैयार करने से पहले।
2: पिंजना, वो भी सोने का? बीरबल, इस पिंजने का क्या मतलब हुआ?
4: आलीजान, महारानी दुर्गावती का मतलब है कि आप गढ़ा जीतने के मर्दाना ख्वाब छोड़कर स्त्रियों की तरह रुई ढूंढने का

0: काम शुरू करते हैं। एक और अर्थ भी हो सकता है हुजूर।
1: वो क्या?
0: अगर आपने गवाह पर हमला किया तो आपको कैद में डाल देंगे। और आलीजा, कैदियों को कपास धुलने का काम दिया जाता है और आपको भी
1: बिनी जरूरत। लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास।
2: आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना भी है और शौर्य भी। हमारा राज्य करेले की तरह है, जो हमें निगलने की कोशिश करेगा उसका गला कड़वाहट से भर जाए।
1: आधार सिंह, जंग के लिए तैयार रहे, जाकर कह देना दुर्गावती से।
2: महारानी दुर्गावती कहिए आलीजा, महारानी दुर्गावती।
1: हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती, जा सकते हो तुम। आसफ खान, जंग की तैयारी की जाए। गढ़ा पर तुरंत चढ़ाई करो, हमें गढ़ा चाहिए, समझे तुम?
3: ऐसा ही होगा जहां पर। हाँ,

0: महारानी की जय हो।
1: महारानी की जय हो।
2: लौट आए आधार सिंह जी, कैसा लगा हमारा पिंजना जलालुद्दीन को?
0: अकबर गुस्से से पागल हो गया महारानी। खबर मिली है कि उसने सिपह सालार आसफ खां को आदेश दिया है गढ़ा पर हमला करने के लिए। वो निकल चुका है युद्ध के लिए।
2: हम गोंडवाना के वासी हैं, हम युद्ध की तैयारी करते नहीं बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं। आने दो उन्हें।
3: युद्ध हुआ, नरई नाले के पास हुआ, जमकर हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने 1000 सैनिकों के साथ शत्रुओं की विशाल सेना को पहले तो अपने छापामार युद्ध कौशल से मार भगाया था। नरई नाले के पास संकरे दर्रे में फंसे मुगल सेना के हजारों सैनिक गाजर मूली की तरह काटे गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर आसफ खान बुरी तरह घबरा गया और अपनी बची खुची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे दिन 24 जून 1564 को वो वापस आया।
1: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। इस बार तो आसफ खां अपनी पूरी तोपें पहाड़ी के मुहाने पर ले आया है। सामने बहुत सारी तोपें दिख रही हैं।
2: कितनी बड़ी भूल हुई हमसे। यदि हमने कल रात ही धावा बोल दिया होता तो उनकी तोपों के मुंह खुलने से पहले ही नष्ट हो चुके होते।
1: जी महारानी।
2: खैर, अब पीछे देखने का समय नहीं है। वीर सैनिकों, आक्रमण करो!
4: दुर्गावती का हाथी बहुत ऊपर पहाड़ी पर है। कुछ कुशल तीरंदाजों को ऊंचाई पर भेजो और नीचे से गोलाबारी जारी रखो।
5: जो हुक्म हुजूर। तीरंदाजों, ऊपर बढ़ो।
2: हिम्मत मत हारना मेरे वीर सैनिकों। कुछ तीरंदाज ऊपर आ गए हैं, उन पर निशाना साधो। मेरी आँख!
5: अरे महारानी की आँखों को
4: हर दो।
5: अरे इस पर गले में।

0: सुरक्षित पालकी में रखकर दुर्ग की तरफ ले जाओ। जाओ
1: मैं रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी।
2: नहीं मारा नहीं,
1: इस जलालुद्दीन को तो पता चले कि किससे सामना हुआ था उसका।
2: महारानी काफी खून बह गया है, संभालिए अपने आप को महारानी।
1: ये आओ,
0: महारानी महारानी महारानी
1: कौन?
0: रानी मैं आपका सेवक आधार सिंह।
1: आधार सिंह, लगता है बहुत खून बह गया है मेरा। ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। सामने देखिए वो उनकी विशाल सेना हमारी तरफ पड़ रही है। इसके लिए इससे पहले कि वो दुष्ट मुगल मुझे बंदी बनाकर मेरा अपमान करे, ये लीजिए मेरी कटार, और अपने हाथों से मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए, मुझे वीर गति दे दीजिए।
0: नहीं महारानी, नहीं, ये अधर्म ये दास अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता मारा, कभी नहीं। हम आपको मार कर जीने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। आप चलिए, आप चलिए, हम घेरा बनाकर आपको दुर्ग में ले चलते हैं।
1: चलिए, क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा अपमान हो? गढ़ा की रानी मुगलों की कैद में जाएगी? नहीं, रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आधार सिंह जी, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो गढ़ा की बेटी अपना फैसला खुद करना चाहती है।
0: महारानी छोड़िए मेरी कटार, छोड़िए।
1: आधार सिंह जी, मैंने हमेशा माना है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं होती। मृत्यु भी तो इस अमर जीवन का एक छोटा सा अंश ही है। हे मातृभूमि, हे मेरी गढ़ा माटी, तेरी सदा ही जय हो। जय पड़ोते।
0: महारानी धन्य है आपका ये बलिदान महारानी दुर्गावती।
3: ये युद्ध इतिहास के पन्नों में भले ही अकबर ने जीता, लेकिन कीर्ति और गौरव की अमर पताका महारानी दुर्गावती की ही फहराई। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए चंदेल राजवंश की बेटी और गोंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती के इस सर्वोच्च बलिदान ने लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में देश के लिए मर मिटने की ऐसी अलख जगाई जो आज भी जिंदा है

0: और सदियों तक जिंदा रहेगी।
1: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक सुन रहे थे, रानी दुर्गावती। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार राजेश आहूजा, रानी दुर्गावती कुमकुम जैन, राजमाता पद्मावती सुचित्रा गुप्ता, राजपुरोहित महेश ठाकुर सुनील लोहिया, दीवान आधार सिंह योगेंद्र टिकू, अकबर राजेश काम्बोज, बीरबल कीमती आनंद, चंद्रशाह सुरेंद्र सागर, रामचेरी जया रामधर। अन्य भूमिकाओं में थे किशोर सहिजानी और ऐशान शर्मा। सहयोग हरदीप सिंह का था और संयोजक थे पुष्पेंद्र सौरभ। इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.akashvani@gmail.com पर भेज सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका होगी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की घोषणा की। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आज आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी।

0: जाएगी। राजस्व व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेश बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से अधिक के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए जिसमें 6 लोग मारे गए। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारत 17 वर्षों बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीदें होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees. Across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government has introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building, guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kattanakulathur near Chennai, the Vice President said India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047.
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM's growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future.
1: Recalling India's response to COVID-19 pandemic, Mr. Radhakrishnan said India supplied vaccines to more than 100 countries, demonstrating its commitment to global welfare and humanity. In Jharkhand, students protesting against irregularities in state's recruitment examinations today burnt effigies of Chief Minister Hemant Soren, Congress leader Rahul Gandhi and RJD leader Tejaswi Yadav in Ranchi. Students raised slogans against the state government and reiterated their demand for the cancellation of JPSC and JSSC examinations, alleging irregularities in the recruitment process. The protesters have also announced plans to gear out the Chief Minister's residence on the 20th of this month. The Directorate of Revenue Intelligence, DRI, has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area, SAFTA. The Finance Minister said the investigation has so far revealed a potential revenue loss of more than 2,500 crore rupees. 9 persons have been arrested in connection with the case. Import of areca nuts into India attracts a basic custom duty of 100%. However, eligible imports under the SAFTA agreement are exempt from customs duty. Areca nuts originating in Bangladesh qualify

0: for the exemption, provided the imports meet the prescribed rules of origin criteria. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today formally launched the Ayushman Bharat, the central government's flagship health insurance scheme in the state. He also launched the Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana. Union Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel was also present at the event. Ukraine and Russia exchanged missiles and drones today, with attacks killing at least 11 people on both sides. Ukraine launched hundreds of drones across Russia in one of the Kyiv's largest aerial attacks of the war, killing 6 people. 5 people were killed in Russia's southwestern Rostov region after drone attacks targeted 3 towns. In Jammu and Kashmir, the much-awaited Sungal Tunnel on the Jammu-Poonch National Highway has been opened to public, providing a major boost to connectivity with the twin border districts of Rajouri and Poonch and surrounding areas. Constructed by the Border Roads Organization, the tunnel was earlier scheduled to open to public on the 22nd of August. The India Meteorological Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha for tomorrow. Similar conditions are also expected over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Eastern Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Ladakh and Uttarakhand for the next 2 days. And in the BWF Badminton World Championship is set to begin at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi tomorrow. India is hosting the World Championships after 17 years. Shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen, Ayush Shetty, Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty, Trisha Jolly and Gayatri Gopichand will be leading the charge for the Indian contingent. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद 14 दिनों के लिए आपातकाल घोषित, मृतकों की संख्या 51 हुई। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था और उसे दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा के अंतर्गत रियायती शुल्क का गलत फायदा मिलता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार संगठन पाक ने 3 बलूच पुरुषों के जबरन लापता करने की कड़ी निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से उनके ठिकानों का खुलासा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
3: सोशल मीडिया पोस्ट में बलूच मानवाधिकार संगठन पांक ने कहा कि जबरन लापता करना बलूच छात्रों और नागरिकों के मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है। संगठन ने कहा कि आसिफ अली और 17

0: वर्षीय असफंद बलूच को पाकिस्तानी खुफिया और सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से अलग अलग घटनाओं में जबरन अगवा किया गया था। इसने वाजिद बलूच के लगातार लापता होने की भी निंदा की। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्षेत्र में जबरन लापता होने के बढ़ते मामलों पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तानी अधिकारियों पर लापता व्यक्तियों के ठिकाने का खुलासा करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और पीड़ितों तथा उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए दबाव डालने का भी आह्वान किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 150 से ज्यादा ड्रोन हमलों में कई घर और एक रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा और जंगल में आग लग गई। मॉस्को के गवर्नर ने भी पुष्टि की है कि यूक्रेनी हमलों से पोर्डोलस्क में वाइल्ड रैबिस के गोदाम में आग लग गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि क्रिवी रिह पर मिसाइल हमले में 2 लोग मारे गए और 14 अन्य घायल हो गए। इसके बाद हुए हमलों में सुमी में 1 और ज़ापोरिज़्या में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने क्रिवी रिह में 1 मेटलर्जिकल संयंत्र और कीव में कई सैन्य औद्योगिक केंद्रों को निशाना बनाया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में आपदा से निपटने, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, राहत सामग्री वितरण और पुनर्निर्माण प्रयासों को सुगम बनाना है। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 7.7 के भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 अन्य घायल हो गए। पूरे क्षेत्र में सैकड़ों इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा में कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त इमारतों में अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं भूस्खलन की भी सूचना मिली है जिससे मलबा सड़कों पर आ रहा है, जिससे बचाव और राहत कार्य में बाधा पहुंच रही है। बेल्जियम के पूर्वी इलाके हाई फेंस के जंगल में लगी भीषण आग लगभग 27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है। ये आग बेल्जियम के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। आग से प्रभावित इलाकों से करीब 600 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से नेपाल के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ कल टुंडीखेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। वे नेपाली सेना प्रमुख के साथ बातचीत करेंगे और नेपाली सेना के सैन्य संचालन के महानिदेशक उन्हें आपसी हित के मुद्दों पर जानकारी देंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI अगस्त के पहले 2 सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार के शुद्ध खरीदार बने हुए हैं। नवीनतम डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने अब तक घरेलू शेयर बाजार में 16,621 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में से 11,199 करोड़ रुपए शेयर बाजारों में लिवाली के जरिए जबकि 5,422 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। भारत की ओर से नवनीत 8वें और दीपिका ने 25वें मिनट में गोल किया जबकि चीन के लिए झांग

यिंग और मानिंग ने गोल किए। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। पूर्व चैंपियन पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष डबल्स जोड़ी भारतीय चुनौती की अगुवाई करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 लोग गिरफ्तार। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद 14 दिनों के लिए आपातकाल घोषित, मृतकों की संख्या 51 हुई। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

10:30 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार। आपके साथ मैं विकास। संगीत के साथ यूं तो बहुत से नाम जुड़े होते हैं, कई गीतकार, कई अरेंजर्स, कई म्यूजिशियंस, लेकिन पर्दे के पीछे के लोग कई दफा हमें याद नहीं रहते और उन्हीं कलाकारों को आज हम हर सिंगार में याद करेंगे, यानी याद करेंगे कुछ अरेंजर्स को। किसी म्यूजिक डायरेक्टर की सोच को अरेंज करना और इस तरह से पिरोना कि जनता की जबान पर वो गीत कई बरसों तक नया बना रहे, शायद यही सबसे दिलचस्प काम रहता है इन अरेंजर्स का।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

10:36 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम हर सिंगार। गीत के पहले मैंने आपसे ये बात कही थी कि कोई संगीतकार जो होता है उसको एक धुन हो सकता है उसने उसको पसंद आ गई हो और अब उसके सामने एक चैलेंज ये होता है कि इस धुन को पिरोया कैसे जाए, इसका नोटेशन कैसे लिया जाए। और यहीं से जो काम शुरू होता है वो होता है अरेंजमेंट का। और इसी अरेंजमेंट के लिए हमारे सामने बहुत से ऐसे नाम रहे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया। इनमें से कई नाम ऐसे भी रहे जिनको हम जानते हैं और कईयों को हमने भुला दिया। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गोवा के इन कलाकारों ने उन गीतों में वेस्टर्न अंदाज देने के बावजूद हिंदुस्तान की मिठास को बनाए रखा।

1957 की ये फिल्म थी और फिल्म का नाम था आशा, और किशोर कुमार का ये गीत चितलकर यानी सी रामचंद्र साहब का संगीत। देखिए 1957 का गीत आप तक पहुंचा और हम अभी जी रहे हैं 2026 में, और मैं जानता हूं जब तक ये गीत आपके साथ बना रहा, और हो सकता है कि जहन के किसी कोने में आपने भी एक बार ईना मीना डी का गाया जरूर होगा। और इसे गाने की एक खास वजह जो मुझे लगती है वो इस पूरे गीत का अरेंजमेंट जो आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। तो इस गीत को अरेंज किया एक बेहतरीन कलाकार ने, उनका नाम रहा चिक चॉकलेट। कई गीतों के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है सी रामचंद्र और बाकी संगीतकारों के लिए। चिक चॉकलेट ट्रम्पेट के लिए काफी मशहूर रहे और कहते हैं कि उन्होंने ट्रम्पेट खुद सीखा। इतना ही नहीं, उस दौर में अपना खुद का एक जैज बैंड भी तैयार किया। प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार, आपके साथ मैं इस सफर में विकास।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

देखा जाए तो मेलोडी और रिदम को संगीत से अगर अलग कर दिया जाए या किसी गीत से बाहर कर दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ गीत के तौर पर हमारे सामने शरीर बच जाता है और उसमें से आत्मा नहीं रहती। और संगीतकारों का ये काम था कि उस गीत को इस तरह से पेश किया जाए कि ना सिर्फ गीत हमारे सामने हो बल्कि वो अपनी आत्मा के साथ भी रहे। और ऐसे में गोवा के ये म्यूजिशियंस बड़े काम के निकले और उन्होंने अपने संगीत से, अपने अरेंजमेंट से संगीतकार की उस सोच को पर्दे पर और संगीत के जरिए सामने पेश किया। अरेंजमेंट्स की अगर बात करूं या अरेंजर्स की अगर बात की जाए तो उसमें कई नाम हमारे सामने आते हैं, जिनमें फ्रैंक फर्नांड, एंथनी गोंसाल्वेस, चिक चॉकलेट और सेबेस्टियन डिसूजा। और इन सभी नामों ने कई संगीतकारों के साथ अलग अलग फिल्मों में काम किया। जैसे अगर आपने फिल्म देखी हो जंजीर, डॉन और हेरा फेरी, तो इस फिल्म में एक अरेंजर या कहूँ टेक्नीशियन जो थे उनका नाम था फ्रैंक फर्नांड। और अगली दफा जब आप जंजीर फिल्म को देखें तो इसके संगीत को, इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनते हुए पर्दे पर बदलते हुए दृश्यों

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के

10:55 होने को हैं और प्रोग्राम का आखिरी गीत अब तक पहुंच रहा है और प्रोग्राम का आखिरी गीत जुड़ा हुआ है उसी अरेंजर से जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने अब तक पहुंचाया। उनका नाम था सेबेस्टियन डिसूजा। सेबेस्टियन डिसूजा ने तकरीबन 30 साल तक शंकर जयकिशन के साथ काम किया और लाहौर से मुंबई का रुख किया था इन्होंने और उसके बाद वायलिनिस्ट के रूप में इन्होंने धीरे धीरे काम समझा और सीखा, क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत की ज़रूरत उस दौर में रागों से जुड़ी हुई थी, तो इन्होंने रागों की भी अपनी जो विरासत थी उसको पहचाना और उसे भी सीखने की कोशिश की और उस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। प्रोग्राम का आखिरी गीत पहुंचता है अब तक दिल अपना और प्रीत पराई इस फिल्म का, और इस फिल्म में भी बेहद खूबसूरत इस्तेमाल किया गया वेस्टर्न अंदाज का और साथ में हिंदुस्तानी अंदाज का, और उसका परिणाम ये है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये गीत हमारी और आपकी जबान पर बना हुआ है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर

0: Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra. Today being Sunday, we'll be taking your calls on mutual funds and matters related with them. But do remember that we will not be addressing fund-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन।
0: वार्म वेलकम आकार।
2: थैंक यू।
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले सुर्खियां।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 16,000 करोड़ रुपीस इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ ऑगस्ट। In bullion market, gold and silver prices rise for second straight week. And domestic investors to focus on FOMC minutes, corporate earning results and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले दो सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ोतरी हुई और घरेलू निवेशक अगले सप्ताह एफओएमसी मिनट्स, कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजे और भू राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: दिल्ली से हमारे साथ ललित जुड़ रहे हैं। ललित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरा सवाल ये था कि अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन में लॉस बुक करते हैं 1,00,000 रुपए का, और सेम फाइनेंशियल ईयर में किसी और शेयर में हम 5,00,000 रुपए का कैपिटल गेन ले लेते हैं, तो मुझे क्या जो टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन में वो किस अमाउंट पे देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा?
2: ललित जी, जो आपका सवाल है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ कैपिटल लॉस करते हैं, जैसे अगर कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेच के करते हैं, और वहीं पर अगर उस सेम फाइनेंशियल ईयर में कहीं दूसरे कुछ कैपिटल गेन्स

0: होते हैं, तो दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ ही हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म है वो दोनों के साथ हो सकते हैं। तो एक ये सर्टेन कंडीशंस होती है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो है आपका, इसके लिए आपकी जो रिटर्न है वो टाइम पे फाइल होनी चाहिए। जो 31 जुलाई की डेडलाइन होती है आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते। जो आप बाद में लेट रिटर्न फाइल अगर करेंगे तो फिर आप ये वाला बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और अगर कुछ एक जो लॉस रह जाता है उसको आप नेक्स्ट 8 ईयर्स तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी इसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि ये जो मैंने आपको बताया है, आप एक दफ़ा बेहतर रहेगा अगर किसी एक टैक्स एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें।
1: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, अन्य खबरों में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई अगस्त के पहले 2 सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार के शुद्ध खरीदार बने हुए हैं। नवीनतम डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस महीने अब तक घरेलू शेयर बाजार में 16,621 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में से 11,199 करोड़ रुपए शेयर बाजार में लिवाली के जरिए, जबकि 5,422 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए हैं। जुलाई में तेज हुई खरीदारी की रफ्तार अगस्त में भी जारी है। मजबूत घरेलू आर्थिक बुनियाद और कंपनियों के बेहतर तिमाही परिणामों के कारण खरीदारी को समर्थन मिला है। इस बीच ऋण बाजार में भी विदेशी निवेशकों की रुचि देखी गई है। अगस्त में अब तक जनरल लिमिट रूट के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों में 69 करोड़ रुपए का निवेश आया है। वहीं फुल्ली एक्सेसिबल रूट के माध्यम से इस अवधि में विदेशी निवेशकों ने 972 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
2: Okay, Akar, very interesting point somebody was discussing with me, and I'm in turn asking you about this. What should I choose, dollar or gold?
0: I would say gold here because when it comes to the Indian portfolios, so gold has a different role in your portfolio. It basically helps you hedge the risk. So what we have seen over the years is that whenever equities fall or there is uncertainty in the market, the fear in market, gold generally shines. So in such a scenario, it is better to have gold, but at the same time ensure that it does not form major part of your portfolio, because it is not a productive asset. When we invest in equities, when we invest in equity stocks, there we do get dividend. There the whole system, a business is working wherein you know, it is earnings, quarterly earnings comes in. When we are investing in fixed income, therein the earnings happen through the way of interest, a fixed charge on the revenue of the companies, whether they are making profit or not. But in the case of gold, the price depends only on the demand and supply. So it is basically dependent on the other person, which is willing to pay you know, over and above or less than what you actually paid. So for that reason, hold it in your portfolio, but only as an insurance, maybe 5 to 10% or maximum 15%, not more than that.
2: Okay, and you just answered our listener about July 31st being the last date to, you know, file our IT returns. What is important is that people do not plan their tax outgo throughout the year. So what kind of planning should one do so that they are not taken in by surprise towards the end of March, that okay, where should I, you know, invest so that my tax exposure is not much? How should one plan this?
0: So firstly, I mean, in this particular case, it was broadly related to the setting off and the carry forward of capital losses, which isn't possible if, you know, someone doesn't file the returns on time, 31st July. More than that, this planning was, you know, had more relation in towards the deductions which we used to, you know, take on and the investments we used to make during the month of January to March, the Section 80C investments. All these, you know, deductions have by far gone in the new tax regime. So, but even in that case, I would say for that reason, I mean, one should not stop investing and rather look at their, you know, the whole income or the income plan at the very beginning of the financial year, plan their advance taxes and, you know, if capital losses or gains planned any, I mean, plan their everything systematically.

0: अमित हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल।
1: मैडम, थैंक यू। मैडम, मुझे एक्सपर्ट से सवाल ये था कि हम ऑनलाइन यदि गोल्ड लेना है 1 ग्राम 2 ग्राम ये ले सकते हैं क्या? जो इसे गोल्ड परचेस करते, म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं, यूनिट्स परचेस करते हैं हम लोग, तो सपोज मुझे सिर्फ 1 ग्राम परचेस करना है या तो 5 ग्राम, तो क्या कुछ सोर्स कैसा है? थैंक यू।
2: अमित जी, बिल्कुल, गोल्ड अगर आपको जैसे ऑनलाइन परचेज करना है तो देखिए, सबसे पहले जो बहुत एक अच्छा तरीका था वो भारत गवर्नमेंट की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स थे जो कि 1 ग्राम के यूनिट में इशू होते थे, और इसमें जो भी गोल्ड का प्राइस होता था उसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता था। बट अभी काफ़ी समय से जो इसके जो प्राइमरी इशू होता था, जो फ्रेश ट्रांचेज होती थी, वो नहीं आई है, तो ये केवल सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है। तो उसके एब्सेंस में जो एक बहुत अच्छा तरीका आपके पास गोल्ड ETF या गोल्ड फंड ऑफ फंड है। इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जो गोल्ड ETF है वो एक नॉर्मल शेयर के तरह स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड करता है, और इसमें निवेश करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हो। ये एकदम फिजिकल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है। आप काफी सारी कंपनीज के गोल्ड ETF से, उनमें से आप कोई भी जो कम खर्चे वाला, कम एक्सपेंस रेशियो का हो, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, या फिर आप नॉर्मली शेयर्स में ट्रेड नहीं करते, या फिर आप एक सिस्टमैटिकली भी करना चाहते हैं SIP के जरिए, तो बहुत ही एक आसान तरीका है, आप गोल्ड फंड ऑफ फंड में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड फंड ऑफ फंड एक म्यूचुअल फंड है जो कि इन टर्न आपका पैसा जाके ETF में इन्वेस्ट कर देगा। तो एक कन्वीनियंस के तौर पर और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए गोल्ड फंड ऑफ फंड वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है।
0: गाजियाबाद से हम आशू को जोड़ेंगे, मगर उससे पहले श्रोताओं आइए जान लेते हैं कि सप्ताह के दौरान सर्राफा बाजार की स्थिति कैसी रही। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त दर्ज की गई। अमरीकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट तथा उम्मीद से कम अमरीकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के चलते फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम हुई। इन सभी कारणों से सोने और चांदी की कीमतों को बल मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 1.8% बढ़ा और 1,54,506 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी लगभग 2% कर 2,35,924 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 0.8% से अधिक बढ़कर $4,437 से अधिक प्रति ट्रायउंस पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान 2.5% की बढ़त के साथ $65.10 प्रति ट्रायउंस पर पहुंच गई। और गाजियाबाद से हम जोड़ रहे हैं आशु को। आशु जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: थैंक यू। एक्चुअली लिटिल कंफ्यूज्ड, आई एम अ रेगुलर इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड्स, बट द पॉइंट इज आई रेड एन आर्टिकल दैट मोस्ट ऑफ द और द बिगेस्ट मिस्टेक अ पर्सन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड डज इज दैट नॉट ट्रैकिंग इट। लाइक आई वाज टोल्ड लाइक यू इन्वेस्टेड एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग इट एंड फॉरगेट अबाउट इट, डोंट थिंक लुक इन टू इट मच। So I did this and then I started tracking it through one of the applications on cell phone, etc. I came to know that some funds which were doing pretty good, according to me, they said this is not doing good, this is off the track, do this, do that. So I am now confused, like I am a regular investor, and what is the approach which I should follow? Should I look into it and track it regularly, and should I trust on the various applications which are there available, growth, it's like some there were 2-3 desire growth or something that they are saying that stop investing in this mutual fund and invest in that mutual fund. So I don't know which way to go as of now.
4: Too many voices.
3: So that is one thing, and yes. In related to this is, what is XIRR? So these are the two things. I just need some clarity on these two points. Thank you.
2: Sure. So this is actually a very common problem which, you know, a normal investor goes through, and we often get these kind of questions. So firstly, when we say that you don't have to track it regularly, what we mean is that some people get obsessed with their portfolios, with their investments, like investment in direct equities. What they start doing is that they start opening their portfolio every single day, or maybe 2 times in a day, and start tracking it, like whether it performed better than the previous day or not. So

0: we need to do is we don't have to, you know, get out of a scheme immediately when, you know, it goes through a very short-term underperformance. So it is quite possible that a fund may have underperformed over the last 1 month, over the last 3 months, but that should not be the sole reason to, you know, just get out of it. What one should be doing is to go and check the long-term performance and, you know, the reasons behind it. So, you know, give it sufficient time. At the same time, you know, as you have been saying that, you know, there are multiple apps, yeah, definitely. So while, you know, increased number of fintech apps have, you know, made it very simpler for us to, you know, start investing and, you know, track our portfolios, this is one of the problems which has emerged because, you know, you get to hear, as Sir was saying, from too many voices. So here the best part would be to compare its performance from the category average and other schemes in that particular category. The XIRR you were talking about is basically the annualized return when you do not invest in a lump sum, when you invest in SIP, when the money outflow and inflow is at irregular intervals. So when you just make one lump sum investment and then make a withdrawal, there are just 2 points. That is basically the CAGR. And when you invest through SIPs and, you know, there are multiple inflows or any other transaction, then the annualized return calculated is XIRR.
1: आकार, एक और सवाल मेरे मन में है जो बहुत सारे लोग, मैं यकीन करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के भी मन में होगा जो नए इन्वेस्टर होंगे या जो कुछ समय से इन्वेस्ट कर रहे होंगे थ्रू SIPs. हमारे पास अगर एक कॉर्पस ऑफ मनी है तो हम उसे सीधे तौर पर लमसम अमाउंट की तरह किसी फंड में लगाएं जो फंड हमें लगे कि ये फंड ठीक है, या हमें एक रोज़ रोज़ धीरे धीरे करके हमें ख़रीदना चाहिए जबकि हमारे पास एक साथ ही उतने पैसे मौजूद हैं, फिर भी हम फ्रैक्शंस में ख़रीदें या हम एक साथ ही जो पूरा बकेट है वो पोर कर दें?
0: बिल्कुल फ्रैक्शंस में एक साथ बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो हमारे को नहीं पता कि उस दिन जो मार्केट का लेवल है वो उसके आगे वो और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा. शॉर्ट टर्म में हम लोग कभी भी मार्केट की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते. तो ऐसे में जो सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि मान लीजिए अगर किसी के पास लमसम अमाउंट है और उसने आज के आज पूरा का पूरा अमाउंट निवेश कर दिया और ठीक एक हफ्ते के बाद मार्केट एकदम से नीचे गिर गई 10%, 20%, तो जो पूरा का पूरा पैसा है उस पूरे के पूरे पे वो रिस्क आ जाएगा, वो वैल्यू एकदम से नीचे आ जाएगा. यहाँ पे
1: 10-20% का तुरंत का घाटा.
0: बिल्कुल. अगर मान लीजिए अगर किसने 1 लाख लगाया वो सीधा 90,000 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा. और यहाँ पे एकदम से इतना बड़ा लॉस देख करके बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टर्स को एक एंग्जाइटी होती है,
1: हतोत्साहित मन हो जाता है.
0: हाँ जी. तो वो उस वक्त तो फिर उनको ये लगता है कि जितना पैसा बचा है वो मार्केट से निकालो और यहाँ से भागो, और उसके बाद वो लोग फिर कभी इक्विटी में निवेश नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी गलती हो जाती है. तो यहाँ पे बेनिफिट जो अगर आप फ्रैक्शंस में पैसे लगाएंगे तोड़ तोड़ के, तो ये रहेगा कि मान लीजिए उस 1 लाख में से आज आपने खाली 10,000 लगाया हो, तो आपने सोचा होता कि मैं हर महीने एक इक्वल इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा, अगले महीने तक वो मार्केट 10% गिर गया होता. तो यहाँ पे आप जब वो और नए 10,000 लगा रहे हैं, आप अपने परचेज कॉस्ट को एक तरीके से एवरेज आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पहले आपने थोड़ा महंगा खरीदा था, अभी आप थोड़ा सस्ता खरीदे और थोड़े ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप SIP के थ्रू निवेश करिए. अगर आपके पास लमसम है भी तो आप उसको एक अलग बैंक अकाउंट में डाल के वहां से SIP चालू कर सकते हैं. और अगर आपको इस चीज का डर लगता है कि आप वो पैसा वहां से कहीं और खर्च कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे, जो कि आमतौर पर रहते हैं, तो आप STP का सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपना फंड हाउस चुनिए, उनके एक लिक्विड फंड में उस पैसे को पूरे लमसम को डालिए और वहां से एक STP सेटअप कर दीजिए अपने इक्विटी फंड के लिए.
1: बिल्कुल. दिल्ली से हमारे साथ वीर जुड़ रहे हैं. वीर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपने सवाल पूछिए.
2: नमस्कार सर.
0: नमस्कार
2: सर. मैं ये पूछना चाहता था कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म गेन्स एप्रिशिएट कोर्स हो जाएगा जी?
0: शॉर्ट टर्म से अगर जो शॉर्ट टर्म गेन से आप लॉन्ग टर्म लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो जहां तक मेरी जानकारी है वो संभव नहीं है. लॉन्ग टर्म लॉस केवल लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही हो पाते, बट इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दफ़े एक टैक्स एक्सपर्ट को ज़रूर कंसल्ट कर लें.
3: सो अकाल, वी बीन टॉकिंग अबाउट क्वाइट अ बिट ऑन यू नो हाउ द मार्केट पैनिक हैपेंस अमंगस्ट द पीपल एंड यू हैव एड्रेस्ड इट क्वाइट अ बिट एज वेल.

0: के अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
1: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

11:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत, आपके साथ मैं विकास।

फिल्म का नाम है प्यार का मौसम और 1969 की ये फिल्म है। और इस प्रोग्राम के आखिरी गीत के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टनकुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स यानी वाणिज्य का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में आयोजित किया जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पाई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने के पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उपायों के अंतर्गत वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। एयर इंडिया ने कल कहा कि विशाखापत्तनम माने जाने वाली उसकी सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। इसके लिए मौजूदा एयरपोर्ट कोड VTZ का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में एयर इंडिया ने बताया कि भोगपुरम और दिल्ली के बीच हर हफ्ते 14 उड़ानें होंगी। 70,342 वर्ग मीटर में फैले इस नए टर्मिनल से यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और परिचालन क्षमता भी बढ़ेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Abhineet Shukla. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan, yesterday after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building, guided by the principle of Nation First. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kattankulathur near Chennai, the Vice President said, India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047. Recalling India's response to the COVID-19 pandemic, Mr. Radhakrishnan said, India supplied vaccines to more than 100 countries, demonstrating its commitment to global welfare and humanity. Air India has announced that all its flights to and from Visakhapatnam will operate from the new Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram from today, using the existing airport code VTZ. In a press release, Air India informed that the airline will continue to operate 14 weekly flights from Bhogapuram and Delhi, providing convenient connectivity to major domestic and international destinations through its hubs. Spread over 77,342 square meters, the new terminal offers enhanced passenger comfort and operational efficiency. Following the Controller and Auditor General of India CAG report on drinking water quality, Railway Minister Ashwini Vaishnaw yesterday conducted a day-long review of drinking water quality across the railway network. He also directed officials to take immediate corrective measures to ensure safe and clean drinking water for passengers. As part of the measures, a new tank-to-tap water filtration and monitoring system will be installed at nearly 20,000 locations, including water coolers, and a comprehensive water filtration and monitoring system will be installed at approximately 20,000 points across the railway network, along with the replacement of water tanks. The minister stressed the need for strict compliance with regular water quality testing at both source and outlet points. He also called for centralized monitoring, clear accountability and regular cleaning and maintenance of water storage tanks. The National Testing Agency NTA has announced retests for three papers of the UGC NET examination, English, Commerce and Sociology, following complaints about several errors in these papers. The NTA said the English paper will be held on the 9th of September from 9 a.m. to 12 noon in Shift 1, while the Commerce paper will be conducted the same day from 3 p.m. to 6 p.m. in Shift 2. The sociology paper will be held on the 10th of September from 9 a.m. to 12 noon in Shift 1. The NTA had conducted the UGC NET June 2026 examination from the 22nd to 30th of June across 87 subjects for the award of Junior Research Fellowship, eligibility for Assistant Professor and admission to PhD programs. The BWF Badminton World Championships is set to begin at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi today. India is hosting the World Championships after 17 years. Shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen, Ayush Shetty, Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty, Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will be leading the charge for the Indian contingent. Talking to media ahead of the tournament, former world champion and two-time Olympic medalist P.V. Sindhu backed Prime Minister Narendra Modi's vision of hosting Olympics in India. India Meteorological Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं धर्मेंद्र मणि राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का फॉलो अप प्रोग्राम है और उनके द्वारा लिए गए विषयों का विस्तार है। इस बार मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय खेलों के बारे में बहुत सी बात की थी। पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा था।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है।
2: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रधानमंत्री जी के मन की बात का वो अंश जिसमें उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम को देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं भी दी थीं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वचनों के बाद तो ग्लासगो में कमाल ही हो गया। हमारे खिलाड़ियों ने न सिर्फ शामिल किए गए खेलों में पिछली बार से ज्यादा पदक जीते बल्कि मैदान से पोडियम तक की इस यात्रा में कई इतिहास भी रच दिए। इस दौरान खेल के मैदान पर भारत की बेटियों की ताकत को भी पूरी दुनिया ने देखा। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ भारतीय खेल प्राधिकरण साई के उपमहानिदेशक और आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, आपका भी बहुत स्वागत।
5: धन्यवाद।
2: तो अब मैं अपने मन में उठ रही जिज्ञासा और सवालों के साथ साथ आप श्रोताओं के प्रश्नों को लेकर भी तैयार हूं अपने स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से उसका जवाब जानने के लिए। सवालों की शुरुआत करते हैं मयंक श्रीवास्तव जी के साथ। मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने साथ साथ देशवासियों की तरफ से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक के लिए मैदान पर पसीना झोंक रहे खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के इन शब्दों ने जैसे जादू की झप्पी का काम किया और उनके शब्दों के बाद ऐसा असर हुआ कि पदकों की झड़ी सी लग गई और हमारे खिलाड़ियों ने कमाल ही कर दिया। पिछली बार के पदकों का आंकड़ा पीछे छूट गया, क्या आपको लगता है कि कमाल प्रधानमंत्री जी के ऊर्जावान शब्दों का असर था?
4: निश्चित रूप से, हम लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी खेलों के सबसे बड़े लवर हैं और वो बहुत चाहते हैं कि भारत के खेलों की उन्नति हो और उसका

0: ता जागता उदाहरण है जिस प्रकार की स्कीम भारत सरकार ने उनके मार्गदर्शन में लेके आए हैं, जो कि नया खेलो इंडिया है और जो टॉप स्कीम है। आप अगर देखेंगे इन खिलाड़ियों का जो भी इनका रिकॉर्ड है और जहां से भी इनको सहायता मिली है, यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि खेलो इंडिया और टॉप स्कीम का बहुत बड़ा योगदान था। तो न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों की प्रेरणा इन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पूंजी थी, बल्कि वो जो योजनाएं लेके आए हैं खेल के क्षेत्र में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए।
1: और राजा रमन जी, अब तो ये जाहिर सी बात है कि जब खुद प्रधानमंत्री जी खेल में इतनी रुचि लेते हो तो खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो आप मानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी खुद इतना इंटरेस्ट लेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा तो आएगा ही आएगा?
2: 2014 से ये देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ही खिलाड़ियों से गेम्स के पहले मिलते हैं, गेम्स के बाद मिलते हैं। खिलाड़ी को पता है कि देश के सबसे बड़ी व्यक्ति का प्यार उनको मिला है। उनके मार्गदर्शन में अच्छे नतीजे आए हैं, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक गेम्स की बात क्यों न हो, पेरिस की बात क्यों न हो, पिछले बार एशियाई खेलों की बात क्यों न हो, या कोई भी राष्ट्रमंडल खेल की बात क्यों न कर ले। खिलाड़ियों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा देश हमारे साथ है। जब भारत सरकार का इतना सपोर्ट मिलता है, एक टाइम था जब आपको 3-3 महीने वेट करना पड़ता था, आप अपना प्रपोजल दे रहे और प्रपोजल के 3 महीने बाद आपको पता चला कि क्लियरेंस आधा हुआ है या नहीं हुआ है। आज की तारीख में क्लियरेंस 3 या 4 दिन में मिल जाता है। खिलाड़ी जब मांगता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और जो सॉफ्ट पावर है खेल, इसको प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, उसका पूरा फायदा भारत देश को मिल रहा है। आप देखेंगे पिछले सालों में भारत का जो स्तर है वो उठता जा रहा है और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: और मैं जी, हमने अन्य क्षेत्रों की तरह नए भारत में खेल के क्षेत्र में भी बदलाव को देखा है और महसूस किया है। प्रधानमंत्री जी के मैदान से पोडियम तक की सोच और खेलों को भी अन्य क्षेत्रों की तरह महत्व देने की रणनीति का भारत के खेलों पर कितना सकारात्मक असर हुआ है?
0: निश्चित रूप से, पहले भी बात कर चुका हूँ उनके विजन की, उनकी दूरदृष्टि की और किस प्रकार से भारत सरकार ने नई योजनाएं ले आई है। खेलो इंडिया और टॉप्स, ये दोनों स्कीम इसी मोटो को चरितार्थ करती हैं जिसको आपने भी कहा, मैदान से पोडियम तक को। क्योंकि खेलो इंडिया आपको ग्रास रूट क्षेत्र में सपोर्ट प्रारंभ करती है, और ये पहले जो खेलो इंडिया का स्वरूप था, मैं उसको 360 डिग्री सपोर्ट बोलता था। एक खिलाड़ी को, इकोसिस्टम को वो 360 डिग्री सपोर्ट करती थी। अभी जो नई खेलो इंडिया कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में पास की है, वो 720 डिग्री सपोर्ट है। और टॉप्स को तो मैं तथास्तु स्कीम बोलता हूँ। शायद ही ऐसी योजना कभी भी आई हो कि जिसमें खिलाड़ी जो कि टॉप्स एथलीट है, एलीट एथलीट है, टॉप्स का कोर एथलीट है, वो कुछ भी मांगता है जनरली उसको दिया जाता है। ये इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम इन दोनों योजनाओं ने खड़ा किया है कि आज खिलाड़ियों के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे और किसी भी करियर के उनके किसी भी पड़ाव पे जो समस्याएं हैं उसका कोई असर नहीं होता है
1: जी। और राजा, एक कहावत बड़ी मशहूर हुआ करती थी या है भी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। क्या आज भी ये कहावत सच दिखती है? अगर नहीं तो आम लोगों के बीच खेलों को लेकर सोच में कितना और कैसा परिवर्तन आपने महसूस किया है?
2: रविंद्र, पूर्ण रूप से बदल चुका है। आज की तारीख में आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब वाली बात है। ये मेरी बात नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात है। और ये सच है कि खिलाड़ी को आज पता है, खिलाड़ी के घर वालों को पता है कि आप खेल के माध्यम से अपना पूरा जीवन संभाल सकते हैं। आपको पढ़ाई की जितनी जरूरत थी वही जरूरत आज खेल की महसूस हो रही है लोगों को। अगर आप एक्सेलेंस की ओर बढ़े जा रहे हो तो आप पढ़ाई शायद कम कर लें, लेकिन आप खेल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के दिल को जीत सकते हैं, राज कर सकते हैं। ये कई खिलाड़ियों को समझ आ गया है। और अगर हम खेलो इंडिया मिशन, जो नई मिशन पिछले दिनों लॉन्च हुई है, उसकी अगर बात करें तो पिछले खेलो इंडिया स्कीम से अगर कंपेयर करते हैं तो 8 गुना पैसा बढ़ा है 5 सालों में। करीब 36,000 करोड़ की बात हो रही है। ये कम पैसे नहीं होते धर्मेंद्र। एक देश की सरकार अगर जुड़ जाता है खेलों के साथ इस तरीके से, जाहिर सी बात है कि आगे ही बढ़ेगा देश। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एथलीट का डेवलपमेंट हो, चाहे कोचेस का डेवलपमेंट हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ का या स्पोर्ट्स साइंस की बात करें, हर तरीके से आगे बढ़ने की बात हो रही है। अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और पूरा फायदा उठाते हैं इस स्कीम का, तो भारत 2036 के जो ओलंपिक गेम होपफुली भारत में ही आयोजन होंगे, वहां पे अच्छा प्रदर्शन, अच्छे नतीजे, 20 मेडल उनके आसपास या टॉप 5 वाली पोजीशन का पूरा उम्मीद लेके बैठ सकते हैं।
1: जी तो मयंक जी, पहले हमारे खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंचते थे लेकिन पोडियम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। इसकी वजह खेल संसाधनों की कमी थी।

0: योगदान की कमी थी और साथ ही साथ खेलों के जरिए नौकरी न मिल पाने की एक जो सोच थी वो बड़ी समस्या थी। बहुत से बच्चे इन दुश्वारियों के चलते चाहकर भी खेलों की तरफ नहीं जा पाते थे, करियर नहीं बना पाते थे। अब नए भारत में इन बुनियादी मुद्दों पर कितना काम हुआ है?
1: मैं तो ये बोलूंगा कि आपने जो पहली लाइन बोली कि खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंच जाते थे, वहां से ही शुरू करता हूँ। एक्चुअली मैदान तक भी नहीं पहुंच पाते थे। वजह ये थी कि अगर आप एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो आप ये पाएंगे कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में हमारे करीब 750 से थोड़े से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, सभी जगह खेलों का एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। खेलो इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से उद्भूत ये योजना है, इसमें सबसे पहले ये कमी महसूस की गई कि सारे जगहों पे, सारे पे कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। तो यह तय किया गया कि हर जिले में हम कम से कम एक खेलो इंडिया सेंटर खोलेंगे। खेलो इंडिया सेंटर वो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा, वो जगह होगी जहां पे खिलाड़ी आएगा और खेलेगा। कम से कम 25 खिलाड़ी वहां पे खेलेंगे एक पर्टिकुलर खेल का, हर जगह पे एक एक खेल का हम सहायता देंगे। तब ये दूसरा भी प्रश्न आया कि भाई इतने कोच है, कोच ही नहीं थे। तो जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको पास्ट चैंपियन एथलीट बना करके उनको एम्प्लॉय किया गया, उनको बतौर कोच इन खेलो इंडिया सेंटर्स में रखा गया, तो पुराने खिलाड़ियों को भी रोजगार मिला। तो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ हर जगह पे, ग्रास रूट पे। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ग्रास रूट पे करने से तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा एलीट लेवल पे भी होना चाहिए। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस हर राज्य की राजधानी, हर यूटी की राजधानी में ये खड़ा किया गया। भारत सरकार ने इसका पैसा दिया और इसमें स्पोर्ट्स साइंस जो अब तक भारत के खेलों में सम्मिलित नहीं होता था उसमें बहुत बड़ा एक निवेश था। इसमें स्पोर्ट्स साइंस के जो जितने पद होते थे भारत सरकार सभी का पे देगी और इत्यादि इत्यादि मशीनें देगी, उसका सामान देगी। तो एक एलीट सिस्टम भी खड़ा हो गया। भारत सरकार को यह भी गुमान था कि सारा कुछ वही नहीं कर पाएगी, तो कुछ लोग प्राइवेट लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको खेलो इंडिया अक्रेडिटेड एकेडमी बनाया गया। तो इस प्रकार से एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ। अब ये खिलाड़ी खेलेंगे तो इनको खेलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनुभव वाला एक हमें खेल का प्रतियोगिता देनी चाहिए। तो खेलो इंडिया गेम्स का एक सिस्टम शुरू हुआ, यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, पैरा गेम, विंटर गेम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से पहले जब से ये शुरू हुआ है खेलो इंडिया में, भारत में कोई जानता नहीं था विंटर गेम। नेशनल गेम्स तो होते हैं, ओलंपिक और एशियन गेम्स के साथ पैरा गेम्स भी होते हैं, परंतु ये प्रथा नहीं थी। और ये पैरा गेम्स शुरू हुआ खेलो इंडिया में, वो भारत में एक तरह से नेशनल गेम है पैरा स्पोर्ट्स में। तो अब यहाँ से खिलाड़ी जो खेले, जिनको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दिया, अपनी कम्पिटेटिव स्किल को निखार सके, उनको एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी, खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में एंड डेवलपमेंट वाले वर्टिकल में से उन्होंने उसमें से प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुने, उन खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाया, जिनको 10,000 रुपए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे ट्रेनिंग करते हैं उनको वित्तीय सहायता करीब 6 लाख की वो भारत सरकार ने दिया। 360 डिग्री सपोर्ट था, ये वो सिस्टम है। अब इसी में से जो खिलाड़ी उन्नति किया वो टॉप्स जैसे सुपर एलीट लेवल पे आ गया। टॉप्स में एलीट खिलाड़ी जो मांगता है जनरली वो मिलता है। अब नए वाले सिस्टम में क्या है, 720 डिग्री सपोर्ट कैसा है, पहले जिन चीजों की चिंता की थी उससे आगे बढ़ गए। हमने देखा कि आईटी सपोर्ट नहीं है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को नहीं है, साई को नहीं है, तो इसमें नए वाले खेलो इंडिया में आईटी सपोर्ट का एक वर्टिकल खड़ा हुआ। सबसे बड़ी समस्या इस देश में है कोच की, कोच कहाँ है और स्तरीय कोच कहाँ है। तो कोच का विकास के लिए एक कोच डेवलपमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ डेवलपमेंट का वर्टिकल खड़ा हुआ। तो सिर्फ कोच की बात नहीं है, स्पोर्ट्स साइंस जिसकी मैंने अभी बात की उसका पूरा एक सिस्टम खड़ा होगा, इको सिस्टम खड़ा होगा। उसमें लोग खड़े होंगे, वैज्ञानिक खड़े होंगे, बायो मैकेनिक्स खड़ी होगी, मैसर खड़ा होगा, न्यूट्रिशनिस्ट खड़ा होगा। अब ये पूरा एक सिस्टम जो है बन के आ रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो एक वर्टिकल है खेलो इंडिया का, उसने पूरे देश में जो अधोसंरचना है उसकी एक समझ लीजिए उसमें क्रांति ला दी है। पूर्व में 300 से भी अधिक अधोसंरचनाएं खड़ी हुई थी, नए वाला जो खेलो इंडिया है इसमें और ज्यादा इसमें सपोर्ट है और त्रिस्तरीय सपोर्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हमने पहले खेलो इंडिया सेंटर की ही बात की जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात की, अब नए वाले में स्कूलों में भी खेलो इंडिया सेंटर होंगे। स्कूल में न बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि खेलेंगे भी और भारत सरकार उसको फंड करेगी ऐसे खिलाड़ियों को। साथ ही साथ और बहुत से कॉलेजेस उनको भी खेलो इंडिया सेंटर या सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना पाएंगे हम लोग। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा हो रहा है। पहले तो मैदान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब न सिर्फ वो मैदान पे पहुंचेंगे बल्कि अपनी खेल प्रतिभाओं को कंपटीशन और लीग से निखारेंगे, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान होगा, टैलेंट स्काउट होंगे, कम्युनिटी कोच होंगे जो उनकी प्रतिभाएं देखेंगे, ग्राम स्तर पे भी देख पाएंगे क्योंकि कम्युनिटी कोच और जो टैलेंट स्काउट है वो ग्राम ग्राम स्तर तक जा सकेंगे। जोनल टैलेंट सर्च कमेटी बनेगी और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी तो पहले से थी। तो इस प्रकार से ये पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया है जिस

0: बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार। मैं तो कुंदन लाल सहगल इरा से अभी अरिजीत सिंह के इरा तक के गाने सुनता हूँ, तो वही मुझे पहले दिमाग में स्ट्राइक किया।
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: किसी की

0: और इस सुमधुर गीत के बाद फिर लौटते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात और अपने विषय मैदान से पोडियम तक की तरफ। और राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पीवी सिंधु की जापान की सफलता का जिक्र किया और वो जीत सचमुच अविस्मरणीय रही, क्योंकि किसी भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन में ट्रॉफी जीती है। सिंधु की ये जो जीत रही, इसने ट्रॉफी का जो एक लंबे समय का उनका सूखा था, न सिर्फ उसको खत्म किया बल्कि एक उम्मीद भी जगाई है। उनकी इस सफलता से आप कितने प्रभावित हुए हैं?
1: कोई भी खिलाड़ी जब ऐसा प्रदर्शन करता है या करती है, जाहिर सी बात है देश का हर वो व्यक्ति खुश हो जाता है। खास करके पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी की बात करें, क्योंकि आप देखिए उनके पास 5 विश्व चैंपियनशिप के मेडल्स हैं, वो चैंपियन भी रही है। उसके अलावा उनके पास 2 ओलंपिक पदक भी है और बेहतरीन खिलाड़ी रही है। कई सालों से भारत का रिप्रेजेंटेशन करते आई है और 2 साल से उनके पास कुछ था नहीं दिखाने के लिए। सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फर्स्ट राउंड में जब हार एक खिलाड़ी के पीछे लगातार पड़ जाती है तो उस खिलाड़ी के अंदर शंका पैदा हो जाती है कि एम आई गुड इनफ, क्या मैं अभी भी अच्छा खिलाड़ी हूँ, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वो शंका को दूर करने वाली बात हो गई टोक्यो में, और जापान में जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि रही है सिंधु के लिए। शादी के बाद एक महिला खेल सकती है, उन्होंने दिखाया है, टोटल फोकस के साथ दिखाया। हम सब के लिए एक सबक है कि किसी को राइट ऑफ ना करें। शायद उनमें से मैं भी था कि सिंधु पे डाउट होने लग गया कि सिंधु अभी आगे करेगी क्या, सिंधु के बाद कौन होगा, ये सारे सवाल आ गए थे। लेकिन सिंधु ने एक बार फिर अपने और ध्यान को आकर्षित किया है, टेरिफिक परफॉर्मेंस, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा

0: सिंधु एक प्रेरणा है और हमेशा रहेगी
1: जी। और मैंग जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि सिंधु से हम लगातार सफलता की उम्मीद करते हैं, एक आदत सी हो गई उनकी सफलता की, उनकी ट्रॉफियों की। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम खासतौर पर पिछले 2 साल की बात करें तो वो पीक पर अपने नजर नहीं आ रही थी, तो ऐसे में जापान ओपन की ये जो कामयाबी है उनकी वापसी की तरफ इशारा करती है या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि देश के लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुकी?
2: नहीं, बिल्कुल मैं राजा राम जी की बात से सहमत हूँ, इसको वापसी ही मानेंगे हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं। और मैं आपको कुछ अंदरूनी जैसी बातें बता सकूं तो सिंधु बहुत फोकस्ड प्लेयर है और सिंधु की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो तो वो लाजवाब है। मानसिक क्षमताओं में भी उसके अंदर बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, उसका फोकस बहुत बड़ा है। फोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारा बेंगलुरु केंद्र है, रीजनल सेंटर, वहां के जो स्पोर्ट्स साइंस सेटअप है, मैंने एक बार वहां पे देखा था, सिंधु आई थी, उनका फोकस एकदम क्लियर है कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, इसका क्या है। उन्होंने बकायदा चेकअप कराया, उसका एक सलूशन निकलवाया और उस चीज पे वर्क किया। तो अगर ये खिलाड़ी इतने अनुभवी होने के बाद ये इस स्तर पे स्पोर्ट्स साइंस के लेवल पे चीजें सोच रहे हैं तो ये उनका फोकस, उनका एक ये दिखाता है कि वो उसमें पूरी तरह से रमे हुए हैं। मुझे लगता है कि सिंधु में अभी मतलब LA 28 तक मुझे वो काफी सक्रिय और काफी सक्सेसफुल दिखाई देती है
1: जी। और राजा रमन जी, साल 2028 ओलंपिक ईयर है, ऐसे में 31 साल की 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु के लिए टूर्नामेंट को चूज करना और अगले 2 सालों तक फिटनेस को बनाए रखना कितना जरूरी है?
0: बहुत जरूरी है धर्मेंद्र, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि प्लेयर के सामने चुनौती है, लगातार टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं रैंकिंग पॉइंट्स जमाने के लिए और रैंकिंग बना के रखने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ओलंपिक गेम्स में क्वालिफिकेशन रैंकिंग के बदौलत होती है। अगर आप टॉप 16 में है तो आपका गारंटी स्पॉट बन जाता है, उसके बाहर होते हैं तो मुश्किल होता है आपका क्वालिफिकेशन, क्योंकि कम खिलाड़ियों को बुलाते हैं, कुछ कोटा देना पड़ता है, या तो फिर आप एशियन गेम जीत के दिखा दें या फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने या फिर टॉप रैंकिंग में बने रहे। तो सिंधु के सामने एक चुनौती रहेगी कि अपना रैंकिंग बना के रखना होगा और इसके लिए लगातार खेलता रहना पड़ेगा उन्हें, और दिस इज अ चैलेंज, क्योंकि एक तो उम्र उनका बढ़ता जा रहा है लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में चैनलाइज करके सिंधु इज फेसिंग द चैलेंजेस। और मुझे पूरा विश्वास है कि लॉस एंजलिस 2028 तक वो रैंकिंग भी बना के रखेगी और फिर वहां पे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी करेगी।
1: बैडमिंटन से जुड़ा एक और सवाल है कि भारत में जो है बैडमिंटन की बेहद मजबूत परंपरा रही है, उस परंपरा को खासकर महिला बैडमिंटन के जरिए साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने एक बड़ा ऊंचा मकाम दिया है, उस स्तर को बनाए रखने के लिए बैडमिंटन की नई पौध मयंक जी कितनी दमदार दिखाई देती है?
2: बैडमिंटन में बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। आपने तो केवल महिला खिलाड़ियों की बात की पर मुझे लगता है कि पुरुष खिलाड़ी भी इसमें कम नहीं है। बहुत सारे अभी खिलाड़ी अंडर 18, हालिया एक टूर्नामेंट हुआ है उस टूर्नामेंट में उस 18 प्लेयर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बॉडीली भी वो बहुत अच्छा एडवांटेजियस पोजीशन में है। इसके अलावा जो आपने बात की कि महिला खिलाड़ी विशेष रूप से ज्यादा उनके अंदर संभावना है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मैंने जितना इन लोगों का प्रदर्शन देखा है, न सिर्फ प्रदर्शन की बात है, जिस प्रकार से अपने खेल को ये अप्रोच करती है, जिस प्रकार से अपने खेल को सीरियसली लेती है और जिस प्रकार से इनका फोकस है, ये सभी खिलाड़ी, मेरा काडर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के ऐसे खिलाड़ियों को देख करके, अभी गुवाहाटी कुछ दिन पहले मैं गया था जहाँ पे एक बहुत अच्छी एकेडमी है और कोरियन, रशियन और मलेशियन कोच वहाँ पे हैं, जिनके भाई जो है BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो वहाँ पे ट्रेनिंग कराती है अपने प्लेयर्स को। तो इनका फोकस देखकर, उनका प्रोफेशनलिज्म देख करके और उनका एम्बिशन देख करके मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आगे आने वाले समय में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एशियन गेम्स में कुछ सरप्राइज भी हो जाए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाला जो ओलंपिक है उसमें भी कुछ सरप्राइज हो जाए।
0: मैं आपको बता दूं
1: जी,
0: उन्नति हुडा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, अस्मिता चलिहा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, और न सिर्फ सिंधु और साइना नेहवाल की बात कर सकते हैं, हम ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोन्नप्पा की भी बात कर सकते हैं, और गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली, ये भी दुनिया में अच्छा प्रदर्शन देते आए हैं। खिलाड़ी को चोट लगता है, कुछ खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं, लेकिन भारत का बैडमिंटन बहुत अच्छे हेल्थ में है। मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा डाउट होता है कि सिंधु के बाद कौन, लेकिन ये युवा खिलाड़ी आई है, ये जवाब दे रही है हम सबको।
2: मैं इसमें चिराग और उसको भी हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, सात्विक और चिराग को आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
0: लक्ष्य सेन खेल ही रहा है अच्छे,
2: लक्ष्य सेन भी अच्छा खेल रहा है, और अभी भले उसकी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि उसने, लेकिन स्टिल इन द फ्रे, एंड चिराग और ये लोग तो बहुत अच्छे उसमें हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है

0: कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एशियन गेम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हम लोग बिल्कुल इसका एक मुजाहिरा जरूर देखेंगे वहाँ।
1: बिल्कुल, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात में खेलों के बारे में की गई चर्चा की। हमारे आज के दो मेहमान हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक और IPS मयंक श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लॉर्ड्स मैदान में खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम की शानदार सफलता का जिक्र किया था। इसे उन्होंने भारतीय पुरुष टीम की 1983 की विश्व कप की विजय से जोड़ा। ये जुड़ाव स्वाभाविक भी है क्योंकि उस कामयाबी के बाद हमने दुनिया को अपनी क्रिकेट महाशक्ति होने का एहसास कराया था। महिला टीम की टेस्ट क्रिकेट में ये जीत उसे इस लॉन्ग फॉर्मेट का सुपर बनाने की दिशा में कितना मदद करेगी?
2: बहुत ज्यादा। मुझे ये लगता है कि भारत कई सालों से महिला क्रिकेट की अगर बात करें तो टेस्ट मैचेस की ओर ध्यान नहीं दिया था और लॉर्ड्स में जाकर टेस्ट मैच खेलना और पहले ही मैच में मेजबान इंग्लैंड को पराजित करना, ये बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि हमारी महिला टीम के अंदर जो जोश है, जो ऊर्जा है, जो बिलीफ है, जो एक स्वाभिमान वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है देखने को मिला है। वहां पे शतक भी जड़े हैं हमारे खिलाड़ी, 5 विकेट इन एन इनिंग्स वाली भी बात हुई है। अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला ही मैच जीतना, हालांकि कंपैरिजन गलत होगा, लेकिन पुरुष टीम की अगर बात करें कई साल लग गए भारतीय पुरुष टीम को टेस्ट मैच जीतने में लॉर्ड्स में, और महिलाओं ने वो कर दिखाया कि हम इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड को हराएंगे।
1: राजा, वनडे विश्व कप जीतने और लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट जीत के बाद महिला टीम की सोच और अप्रोच में कितना बदलाव आया है और कितना बदलाव आना चाहिए?
2: मुझे लगता है कि भारतीय महिला टीम में सोच और अप्रोच दोनों सही थे, लेकिन अब विश्वास बढ़ जाएगा कि हम दूसरे देश के मैदान में, वो भी सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से माना जाता है, इट इज नोन एज द होलीएस्ट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, वहां पे जाके जीतना पहले ही मैच में, टीम का हौसला बुलंद हो जाता है, पहले से बुलंद है, विश्व चैंपियन रही है भारतीय टीम, लेकिन इंग्लैंड में जाकर जीतना हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेशल मीनिंग आ जाता है कि ब्रिटेन में जाके इंग्लैंड को हराना, देयर इज अ स्पेशलिटी टू इट। और मुझे लगता है कि महिला टीम ये कर दिखाई है और फिर उनके अंदर जो हौसला अफजाई चाहिए था उन्हें खुद उन्होंने ढूंढ के निकाला है और फिर सबको दे भी दिया है।
1: और मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने खेल के मैदान पर नारी शक्ति का भी अपनी बातों में जिक्र किया, ये स्वाभाविक भी है क्योंकि नारी शक्ति की वजह से ही हम ग्लासगो में 13 गोल्ड मेडल जीत कर मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंच सके और उसमें 8 गोल्ड मेडल महिलाओं के थे। यानी हम कह सकते हैं कि हम खेल महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और में हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है।
0: ये बात न सिर्फ मौजूद है, रेलेवेंट है, बल्कि ये बात बहुत एक तरह से कह लें कि ये टैक्ट फुलनेस की भी बात है, ये एक रणनीति की भी बात है। मैं ऐसे ही एक बार अध्ययन कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, जो कि ओलंपिक खेलों में पहले दूसरे उस पे रहते हैं, इनका क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनके स्वर्ण पदकों का, और मैंने पाया कि इनके अधिकतर जो पदक हैं वो महिला खिलाड़ी जीत रही हैं। और कुछ ऐसा अभी भी पूरे विश्व में जो वातावरण है, खेल परिदृश्य जो है, मैं समझता हूं कि भारतीय महिला खिलाड़ियों का जो अभी पूरी क्षमता का निर्माण नहीं हुआ है, अब ऑब्वियसली उसमें लग गए हैं और इसमें बहुत स्कोप है। हमने यदि महिला खिलाड़ियों को सशक्त कर दिया और उनको अच्छी ट्रेनिंग दे दी तो निश्चित रूप से हमारा वो जो लक्ष्य है कि हम 2036 तक पहले 10 खेल महाशक्ति होंगे, वो बिल्कुल संभव है। और आपने जो उदाहरण दिया, निश्चित रूप से वो एक फैक्ट तो है ही है कि 13 में से 8 मेडल जो है वो महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। आप अगर विश्लेषण कीजिए पिछले कुछ सालों में रेसलिंग में, जो कि हमारी वैसे भी ताकत रही है, और हमारा पहला जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में वो भी रेसलिंग में मिला था, पुरुष खिलाड़ी ने दिया था, पर अगर आप अभी आप देखें तो महिला रेसलर्स जो हैं उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं, महिला बॉक्सर्स उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। सबसे बड़ा सुखद क्षण मुझे लगा इस कॉमनवेल्थ में वो जूडो में खिलाड़ियों का आगे आना। जूडो एक ऐसा खेल है कि जिसमें हम लोग संभवतः पहली बार ऐसे मेडल जीते हैं और उसमें भी महिला खिलाड़ियों का ही प्रमुखता रही है, और ये बहुत ही अच्छा एक सुखद संकेत है आगे आने वाले समय के लिए। तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये मेरा मानना है कि महिला खिलाड़ी न सिर्फ अभी योगदान दे रही हैं बल्कि आगे भी हमारे खेल परिदृश्य में बहुत अच्छा योगदान करने वाली हैं।
1: और राजा, खेलों को आम जन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी छोटी जगहों और छोटी घटनाओं का भी जिक्र करते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने केरलम के एर्नाकुलम के एक स्कूल के संस्कृत शिक्षक की फुटबॉल पहल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरक उदाहरण आम लोगों के मन में खेलों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए कितने अहम होते हैं।
2: बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो खेल की ओर ध्यान देते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है 2020 का और जो अभी स्पोर्ट्स का पॉलिसी बना है, इसमें खेल और पढ़ाई दोनों को मिलाने का, मिश्रण बनाने का एक प्लान है। तब जाके भारत का खेल आगे बढ़ेगा। और उनका ध्यान देखिए, एक अध्यापक पे गई है जहां पे वो संस्कृत को यूज करते हुए खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलने में प्रोत्साहित करती है। हालांकि केरला में फुटबॉल के लिए कमी नहीं होती है, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। लेकिन एक और महिला है जो साड़ी पहनकर कोचिंग करती है। फुटबॉल की ही बात करें अगर, हालांकि कईयों को पता नहीं है ये, अगर हम विश्व में रैंकिंग की बात करें, हमारे महिला टीम, फुटबॉल की टीम की बात कर रहा हूं मैं, उनका बहुत बेहतर रैंकिंग है व्हेन कंपेयर टू मेन। और हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को, बहुत बेहतरीन प्लेयर्स आए हैं। और जाहिर सी बात है कि एक अध्यापक अगर संस्कृत को लेके खिलाड़ियों को संस्कृत और खेल दोनों को मिला के एक अच्छा मैसेज, और ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है और ही हैज ओनली एलोबरेटेड इट, और ये अच्छी बात है। और भी अध्यापक में एक जोश और ऊर्जा पैदा हो जाएगा कि हम भी कुछ ऐसा करें ताकि उनकी नजर हम पे भी पड़े।
1: जी, सवालों और जवाबों का ये सिलसिला तो जारी रहेगा। फिलहाल बारी है एक और गीत की। मयंक जी, अपनी पसंद का एक और गीत बताइए।
0: इस बार थोड़ा सा नया गीत बताता हूँ। दिल समझ जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू।

0: और इस गीत के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी की बात पर लौटते हैं, जो देश में खेलों के विकास और भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए बेहद गंभीर हैं। इसी का नतीजा है कि अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, साथ ही 2036 में हमारी ओलंपिक मेजबानी की भी योजना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ संशोधित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है। मयंक जी, इस संशोधित खेलो इंडिया योजना का प्राइमरी लॉन्ग टर्म गोल क्या है और जो पैसों का आवंटन है वो किस तरह से किया गया है?
1: संभवतः हमारी किसी बात में ये जिक्र आया था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2036 तक हम खेलों में प्रथम 10 स्थानों पर रहने वाले देश बन सके, 2047 तक हम प्रथम 5 देशों में से एक हों, ऐसा एक बृहद लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसा मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा खेलो इंडिया जो योजना है उसके बारे में बताया था कि कैसे वो 720 डिग्री सपोर्ट देती है और 360 डिग्री सपोर्ट के आगे वो कोच की भी बात करती है, स्पोर्ट्स साइंस की भी बात करती है, आईटी सपोर्ट की भी बात करती है, हर जिले में और स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल की बात करती है, इसके अलावा जो राज्य के साथ भागीदारी में अधोसंरचना की बात करती है, जिसमें केंद्र सरकार 60% योगदान देगी और राज्य सरकारें 40% और नॉर्थ ईस्ट में 90% तक का योगदान भारत सरकार देगी। इसी प्रकार से एक ट्रेनिंग इकोसिस्टम खड़ा किया गया, जिसमें साई के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अंग है, एनसीओई, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस, साई ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब का भी एक पूरा एक वो चलेगा, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं पहले बात किया था कि आईएससी ओकेआईसी वो तो रहेंगी। तो एक पूरा एक अधोसंरचना, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम हर क्षेत्र में इसमें आ गया। जहां तक पैसों के आवंटन का प्रश्न आपने किया है, तो पैसों का आवंटन अभी इसको बोल सकते हैं कि अभी फ्लूइड है और आवश्यकता अनुसार इसमें किया जाएगा, जो एक तरह से कह लें कि एलोकेशन इसमें आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। निश्चित रूप से जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी एलिमेंट है, उनमें चूंकि उसका संगठन ऐसा होता है कि उसमें पैसा ज्यादा लगता है, तो निश्चित रूप से वहां पे ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन जो लक्ष्य है वो है ट्रेनिंग में खर्चा करने का, एथलीट के ऊपर खर्चा करने का, और अकेडमिक या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बनाना है उसमें खर्चा करने का।
0: जी, तो राजारमन जी, खेलो इंडिया के नए स्वरूप के तहत खिलाड़ियों को मिलने वाले साइंटिफिक ट्रेनिंग में बदलाव की कितनी आवश्यकता है? जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि ट्रेनिंग भी एक फोकस विषय है इस संशोधित खेलो इंडिया का।
2: धर्मेंद्र, जितना भी मैं खेला हूँ और देखा हूँ, करीब 50 साल तो हो गए होंगे इन सबको, स्पोर्ट्स साइंस का बहुत जरूरी होता है। अभी तक बहुत कम यूज हुआ है स्पोर्ट्स साइंस, हम सिर्फ एलीट लेवल पे यूज करते आए हैं स्पोर्ट्स साइंस को। मयंक जी ने कोचिंग की बात की, कोचेस हमारे पास कम है जो विश्व स्तर का कोचिंग कर सकें, जो स्टैंडर्ड कोचिंग करें, ताकि जो खिलाड़ी मैदान में सीखता है, बेसिक्स जहां पे उसके पढ़ते हैं, फंडामेंटल जहां पे आते हैं, अगर वहां से उठना है तो वो फंडामेंटल सही पढ़े। फाउंडेशन अगर सही गिरता है, नींव अगर सही पड़ता है, तो आगे चल के वो स्टार बन सकता है। धर्मेंद्र, आप भी सुन चुके होंगे, मैं भी सुनता हूँ, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोचेस आते हैं वो कहते हैं कि आपका टेक्निक ही गलत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिखाना पड़ता है कि टेक्निक कैसे सुधारा जाए। अगर हम इस पे फोकस करते हैं, और अब फोकस आ रहा है, कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस दोनों में फोकस आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो खेलो इंडिया के ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगे हर जिले में होगा, और हर स्कूल में शायद एक अच्छा सा कोच होगा जो स्पोर्ट्स साइंस को समझ सके। जब तक आप इसको जोड़ नहीं लेते, आपके खिलाड़ियों को भी समझ नहीं आता है। कई खिलाड़ी

0: ऐसे हैं जो फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से झिझकते हैं, कि वो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास हम क्यों जाएं, हमें कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी तो नहीं है। ये सब बदल रहा है और ये नया देश देखने को मिल रहा है। हमारे खिलाड़ी फियरलेस होते जा रहे हैं, उनके अंदर जो डर था वो दूर हो रहा है और वो चाहते हैं कि दुनिया को जाके कॉन्कर कर आए और फिर अपने घर में राज करें। दे आर सेलिब्रेटेड और हम क्यों ना पूजे उनको। वो ऐसे इंसान है जो विदेश में भी हमारे झंडा को लहरा के आते हैं। बहुत कम लोग कर सकते हैं ये काम और खिलाड़ी ही करते हैं, लगातार करते हैं। क्या कहूं, राष्ट्रगान जब बजता है विद द फ्लैग गोइंग अप, चाहे वो ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, रोंगटे खड़े होते हैं और ये खिलाड़ी ही कर सकता है। अगर 20 मेडल चाहिए, 30 मेडल चाहिए, हमें चाहिए कि ग्रास रूट में स्पोर्ट्स साइंस लाए। और ये खेलो इंडिया मिशन का एक बहुत अच्छा फोकस है कि कोचिंग भी सही हो और फिर स्पोर्ट्स साइंस भी सही हो।
1: मैन जी, इस संशोधित योजना में प्रतिभाशाली एथलीटों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता के लिए क्या कुछ नए नियम बनाए गए हैं?
2: जहां तक नियमों का सवाल है, नियम तो लगभग वही रहेंगे। नियमों से परे जो चीज हुई है, जो क्रांति इसमें हुई है, पहले हम मात्र 3,000 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाते थे और उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन संस्थानों को वित्तीय सहायता देते थे। अब ये संख्या बढ़ के 30,000 हो जाएगी। 30,000 लोगों को वित्तीय सहायता मिलेगी, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस मिलेगा। वो जिन संस्थानों में अभ्यास करते हैं उन संस्थानों को इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में और अनुकूल सहायता देने के लिए वो जो वित्तीय सहायता थी वो मिला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 8 गुना वृद्धि हुई है टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन में और 10 गुना वृद्धि हुई है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बकेट में। 10 गुना अधिक खिलाड़ियों को डायरेक्ट सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि मिला करेगा।
1: स्पॉन्सरशिप बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि मयंक जी ने बताया कि जो स्कॉलरशिप है उसके लिए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है, इसका कितना पॉजिटिव असर खेलों पर, खिलाड़ियों पर पड़ेगा?
0: बहुत ज्यादा पड़ेगा और एक विश्वास बढ़ जाएगा खिलाड़ी के अंदर। और जो हमेशा डाउट रहता है कि अगर मुझे चोट लग गया, मैं बीमार हो गया या खेल से बाहर हो गया तो मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब अब शायद मिलने लगा है खिलाड़ी को। वो निडर होके खेलने लगे हैं धर्मेंद्र। और मुझे लगता है कि जो खेलो इंडिया का स्कॉलरशिप स्कीम है, अगर 3,000 से बढ़कर 30,000 खिलाड़ी तक जा रहा है
1: जी,
0: तो आपका जो बेस है वो और ब्रॉड होता जा रहा है। मुझे लगता है कि क्रीम और बेहतर होगा आगे चल के। 2036 की ओर ध्यान है, आज शुरू करना चाहिए और शुरू हो गया है। अच्छे नतीजे आएंगे, वी विल सी वेरी गुड रिजल्ट। और मेरा ये मानना है कि हर वो एंगल कवर्ड है, पॉजिटिविटी भरा हुआ है देश के अंदर और खिलाड़ियों के अंदर और भी ज्यादा हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर उसको सही दिशा दे, सही चैनलाइज करें, तो हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल के देशों में हम एक जरूर बन सकते हैं।
1: और मयंक जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमने खेलो इंडिया स्कीम से निकले खिलाड़ियों का जलवा देखा, ढेर सारे मेडल खेलो इंडिया के खिलाड़ियों की तरफ से आए। जो प्रदर्शन रहा है अद्भुत रहा है, क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल, वो जो आपने शुरू में एक स्लोगन कहा था, मैदान से पोडियम तक का, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया था आपने उसे दोहराया। तो ये खेलो इंडिया इस कॉमनवेल्थ गेम में आप बिल्कुल उसको फलीभूत होते हुए देख पाएंगे। 122 खिलाड़ी थे, उनमें से 70 खिलाड़ी खेलो इंडिया से किसी न किसी रूप में संबद्ध रहे हैं। और जो मेडल विनर्स थे, 39 मेडल्स हमारे आए, 39 मेडल्स में से 16 मेडल्स, 16 पदक
1: जी,
2: वो खेलो इंडिया से संबद्ध खिलाड़ियों के
1: जी।
2: तो आप देख सकते हैं कि वो जो मैदान से पोडियम तक, यहाँ पे एकदम साकार हो रहा है, एकदम फलीभूत हो रहा है
1: जी। और राजा, कहते हैं कि खेल प्रतिभाएं वो गांवों में भी बहुत छुपी हुई हैं और उनके पहचान की आवश्यकता है। वहां से बहुत सारे ऐसे एथलीट, ऐसे खिलाड़ी निकलकर सामने भी आते हैं जिन्होंने देश के लिए ढेर सारे मेडल जीते हैं। अभी इस दिशा में खेलो इंडिया के तहत और कितना काम करने की आवश्यकता है?
0: धर्मेंद्र, मेरा यह मानना है कि भारत के जो मेडल्स अभी तक आए हैं वो हिंटरलैंड से ही आए हैं। ज्यादातर आप खेलों में देखें तो वो खिलाड़ी रूरल एरियाज से हैं, बैकवर्ड एरियाज से हैं। उनके अंदर एक भूख है जो शायद शहरी खिलाड़ियों में कम है। मैं नहीं कह रहा कि शहरी खिलाड़ी कम है, किसी स्तर पे भी कम है, लेकिन भूख उनके अंदर ज्यादा दिखता है। है और इनको खोजने में जो खेलो इंडिया का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम है ये अभी मदद करेगा। मेरा ये मानना है कि खेलो इंडिया के जो अधिकारी है उनको समझ आया होगा, 2 साल पहले उन्होंने एक स्कीम चलाया था उसमें से सीख मिली होगी, कीर्ति स्कीम था खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम, उसमें से कुछ सीख मिला होगा और आगे जो करना है हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में इसमें सुधार लाकर अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जो 30,000 खिलाड़ियों की बात हो रही है खेलो इंडिया स्कॉलर

0: की ये हमारा भविष्य होंगे और मेरा ये मानना है कि ये सारे अच्छे खिलाड़ी होंगे और बेहतरीन रिजल्ट्स भारत के लिए लेकर आएंगे आगे चलकर। ये कोई भी देश में ये होता है धर्मेंद्र के, आज अगर आपके पास 30,000 खिलाड़ी हैं, वो सारे 30,000 वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे, उनमें से छाट कर आपको 30 वर्ल्ड क्लास एथलीट मिलेंगे। अगर आपके पास बेस 3,000 का ही है तो 3 खिलाड़ी आपको मिलते हैं। अच्छी बात है कि बेस हम बढ़ा रहे हैं और वहां से हमारे खिलाड़ी उभर कर आएंगे और विश्व स्तर पर अच्छे चैंपियंस बनेंगे और फिर गर्व से हमारा दिल धड़कने लगेगा।
1: अमन जी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जो है देश में, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक आए हैं और भविष्य में क्या योजनाएं हैं?
2: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है भारत सरकार ने इस उद्देश्य से शुरू की थी कि जो हमारे एलीट एथलीट हैं, एलीट एथलीट का आशय उन एथलीट से है जिनको कि हम ये मान करके चलते हैं कि इनके अंदर इतनी प्रतिभा है और उनकी स्किल लेवल इतनी अच्छी है कि ओलंपिक और एशियन गेम्स इस तरह के जो टॉप नॉच जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें ये भारत को पदक दिलाने में सक्षम है, तो उनको इस तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल न फेस करना पड़े, कोई अन्य गतिरोध न फेस करना पड़े, ट्रेनिंग का हो, चाहे जगह का हो ट्रेनिंग के लिए, चाहे ट्रेनिंग के लिए सामानों का हो, या जो रिकवरी का हिस्सा है ना, मतलब उनके जो मैसर्स होते हैं, उनके जो फिजियो होते हैं, इन सभी की दृष्टि से उनको कोई ऑब्स्टिकल का सामना न करना पड़े और कोई उनके पास कमी न रह जाए, इसलिए टॉप्स जो है स्कीम लाई गई थी। और इसमें ऐसे एथलीटों का चयन किया जाता है, एक समिति होती है जो साई में कार्य करती है, उस समिति में रिनाउंड प्लेयर्स हैं, रिनाउंड कोचेस हैं, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के भी रिनाउंड जो पुराने लोग हैं वो लोग हैं, और ऑफ कोर्स अधिकारी ही हैं, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीईओ टॉप्स एक अधिकारी है जो कि वर्तमान में कर्नल जोहल हैं जो स्वयं भी ओलंपियन रह चुके हैं, तो ये अधिकारी जो है उनके अधीन ये समिति उनका निर्धारण करती है, उनके पैमाना बना होता है कि किस प्रकार के लोग इसमें टॉप स्कोर एथलीट बनेंगे। टॉप स्कोर एथलीट को ज्यादा स्कॉलरशिप बोल लें, अलाउंस बोल लें, वो मिलता है, एक टॉप्स डेवलपमेंट है जिनको हम दूसरी रंग मान सकते हैं कि ये कोर से तुरंत ही कोर बन सकते हैं, इनके अंदर भी मेडल क्षमताएं हैं, तो उनको थोड़ा सा कम पैसा मिलता है। और जो बाकी सुविधाएं जैसे मैंने आपको बताया, जितनी चीजें स्पोर्ट्स साइंस हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे उनकी रिकवरी के हिस्से हो, चाहे उनके स्पोर्ट्स का सामान हो, इत्यादि इत्यादि। उदाहरण के लिए नीरज चोपड़ा जैसे, तो साउथ अफ्रीका में जो उनकी ट्रेनिंग थी उसकी फंडिंग टॉप्स के द्वारा ही की गई थी। तो इस प्रकार से एलीट एथलीट को सहायता देने का एक प्रयास टॉप्स के माध्यम से होता है, और आप देख रहे होंगे कि एलीट एथलीट के हिसाब की ही चीजें उनको प्रदाय की जा रही है। जैसे नीरज चोपड़ा ने कहा था कि साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस कर सके, तो वो सुविधा उनको टॉप्स के माध्यम से प्रदान की गई थी।
0: मयंक जी ने नीरज चोपड़ा की बात की, मैं मीराबाई चानू की बात करूंगा आपसे। मीराबाई चानू को चोट लग गया था, बैक में प्रॉब्लम था, मैं 2021 ओलंपिक गेम जो 20 में होने थे लेकिन 21 में हुआ है, उस गेम्स की बात कर रहा हूँ। मीराबाई चानू को वहां पे मेडल मिला था, हम सब जानते हैं, लेकिन 3 महीने पहले मीराबाई चानू को चोट लगी थी और डाउट्स हो गए थे कि इनका क्या होगा। टॉप्स के सपोर्ट से वो गई अमेरिका, सेंट लुइस, वहां पे स्कॉट यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर है जिन्होंने उनका इलाज किया और उनका स्क्वाट लिफ्टिंग भी इम्प्रूव कर दिया और तब जाके ओलंपिक में मेडल मिला है। कई सारी बातें टॉप्स की जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है इसकी हमारे सामने आती नहीं है, लेकिन जरूरी है कि जब खिलाड़ी को मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे मीराबाई चानू को ऐन वक्त पे पड़ गई थी और किसी का भी क्लियरेंस का टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। एक टाइम था जब मीराबाई चानू चिट्ठी लिखती थी 3 महीने वेट करो, फिर उसके बाद क्लियरेंस हो ना हो पता नहीं, तब तक आपके पीठ का क्या हाल हो रहा है पता ही नहीं। लेकिन ये मेडल अगर किसी को जाता है, हालांकि मीराबाई चानू के हुनर को जाता है, उनके कोच को जाता है, लेकिन अगर कहीं क्रेडिट जाना पड़ेगा किसी को तो वो टॉप्स को जाता है।
1: और राजा, सच कहें तो नए भारत में खेलों के मैदान पर सफलता का सिलसिला जारी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047

0: तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों में पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने के पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उपायों के अंतर्गत वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। एयर इंडिया ने कहा है कि विशाखापत्तनम आने और जाने वाली उसकी सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। इसके लिए मौजूदा एयरपोर्ट कोड VTZ का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में एयर इंडिया ने बताया कि भोगपुरम और दिल्ली के बीच हर हफ्ते 14 उड़ानें होंगी। 70,342 वर्ग मीटर में फैले इस नए टर्मिनल से यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और परिचालन क्षमता भी बढ़ेगी। विश्व कप में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। वहीं कल भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में ग्रुप डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 साल बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संग हूं मैं श्रेयसी और कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर आपके साथ ही यहां पर स्टूडियो से सीधा आपके संग संग कुछ गाने गुनगुनाने आई हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत से और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम।

लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में सहरा फिल्म का ये गीत दोस्तों आपने सुना। बोल सजाए हसरत जयपुरी ने और संगीत रामलाल हीरा पन्ना का। आइए अब रुख करें अपने इस अगले गीत की तरफ जो हमने लिया फिल्म अनुपमा से। बोल हैं कैफी आज़मी के और संगीत दिया है हेमंत कुमार ने। फिल्माया गया धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर पर और गाया लता मंगेशकर ने।

न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। चार दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए।

0: मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ में दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म का नगमा भी आपने सुना दोस्तों, जो फिल्माया गया धर्मेंद्र, नूतन और रहमान पर। बोल सजाए जीएल रावल ने और संगीत दिया सोनी कोमी ने। बढ़ते हैं हम अपने इस अगले गीत की तरफ, जो लिया हमने फिल्म पारस मनी का। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, बोल हैं असद भोपाली के, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्माया गया है महिपाल और गीतांजलि पर।
1: वो जब याद आए बहुत

वो कहते हैं ना कि जब किसी की याद में डूबो तो बस टूट जाने का दिल करता है, पर क्या करें, अपने दिल को भी यूं ही संभालना पड़ता है। काश तुम चाहो मुझे मेरी तरह, काश तुम चाहो मुझे मेरी तरह, मुझे भी एहसास हो सब कुछ तेरी तरह। मुझे भी तकलीफ हो मेरी तरह, तुझे भी तकलीफ हो मेरी तरह, जब मैं नजरअंदाज करूं तुझे तेरी तरह, तू भी तरसे और जागे मेरी तरह, और मैं सोऊं बेपरवाह तेरी तरह।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस गीत से ही जाहिर है कि ये गीत हमने लिया फिल्म आए दिन बहार के से। आवाज़ लता मंगेशकर की, फिल्माया गया धर्मेंद्र और आशा पारेख पर। बोल सजाए आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने और आइए अब बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को अगले गीत से सजाते हुए। तो अगला नगमा जो मैं आपके सामने रख रही हूँ दिल दिया दर्द लिया फिल्म से है, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, बोल सजाए हैं शकील बदायूं ने और संगीत दिया है नौशाद अली ने।

नहीं होता आसान जिंदगी में कोई चाहिए से कोई नहीं चाहिए तक का सफर तय करना। बहुत मुश्किल है चाहिए से नहीं चाहिए तक पहुंच पाना, मगर जरूरी है ये सफर भी तय करना, क्योंकि किया जो सफर हमने चाहने से न चाहने तक का, वो मिला या ना मिला ये बाद की बात है। एक मुलाकात खुद से हो गई, बस यह कमाल की बात है।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म भीगी रात का ये नगमा आपने सुना दोस्तों। फिल्माया गया मीना कुमारी पर, बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत रोशन का। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, संघ में श्रेयसी, और आइए अब बढ़ चलें अगले इस गीत की तरफ। आरती फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत है रोशन का।
1: देख लिया कहाँ रहता हूँ, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे
2: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

अगर कभी जिंदगी मुझे थका दे या मैं अंदर ही अंदर बिखरने लगूं, अगर कभी जिंदगी मुझे थका दे या मैं अंदर ही अंदर बिखरने लगूं, तो मेरे आंसुओं की वजह मत पूछना, मुझे मजबूत बनने की सलाह भी मत देना, बस मेरे पास चुपचाप बैठ जाना और मेरा हाथ थाम लेना, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों से नहीं किसी अपने की मौजूदगी से हल्के हो जाते हैं, कुछ टूटन समझाने से नहीं साथ निभाने से जुड़ती है, और उस वक्त तुम्हारा कुछ ना कहना भी मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत तसल्ली होगी।

और दोस्तों, अब इसी नगमे के साथ हमें हमारे कार्यक्रम को देना होगा यहाँ विराम, और इसके बाद अब आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचारों के पार मैं श्रेयशी, अगला कार्यक्रम रात सुरमई लेकर फिर से आपके साथ जुड़ जाऊंगी। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पाई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने के पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उपायों के अंतर्गत वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिशों के अंतर्गत अमरीकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कल हमास के प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की। कुशनर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। ये बातचीत अमरीका के समर्थन वाले उस नए 15-सूत्रीय रोडमैप के लिए हो रही है जिसके तहत हमास को गजा में हथियार छोड़ने हैं और इसराइल को युद्ध से बर्बाद हुए फिलिस्तीनी इलाकों से पीछे हटना है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि राज्य में 1,440 चयनित डॉक्टरों के आने वाले दिनों में नियुक्ति किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 600 और डॉक्टरों की भर्ती का काम चल रहा है, साथ ही लगभग 250 डेंटिस्ट के भी जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ने की उम्मीद है। विश्व कप में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। वहीं कल भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले ग्रुप डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan yesterday after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price.

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 100.1 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम रात सुरमई। संघु मिश्र ऋषि और आइए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का इस गीत से।

गुलाम फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की, बोल सजाए समीर ने और संगीत है जतिन ललित का। बढ़ते हैं अब अपने अगले गीत की तरफ। पिक्चर है सलामी और आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और आशा भोसले ने, बोल सजाए हैं समीर ने और म्यूज़िक है नदीम श्रवण का।

फिल्म मिस्टर आशिक का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, आवाज़ कुमार सानू की, बोल सजा इंदीवर ने और म्यूजिक जतिन ललित का। बढ़ते हैं बकले गीत की तरफ। बाजीगर से लिया है हमने ये अगला नगमा, आवाज़ें हैं विनोद राठौर और अलका याग्निक की, बोल सजाए देव कोहली ने और संगीत है अनु मलिक की।

मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना।

खामोशी फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, आवाज़ें अलका याग्निक और हरिहरन की, बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत जतिन ललित का। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, आवाज़ है कविता कृष्णमूर्ति की, बोल सजाए हैं जावेद अख्तर साहब ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

वैसे तो गीतों का सिलसिला हमेशा ही एफएम गोल्ड पर जारी रहता है, ठीक उसी तरह हमारा ये कार्यक्रम रात सुरमई भी हमेशा यूं ही जारी रहेगा, ठीक इसी समय पर। लेकिन क्या करें, घड़ी जो है वो इशारा कर रही है कि जल्दी अब इस कार्यक्रम को हमें देना होगा विराम। लेकिन बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इसके बाद यूं ही एफएम गोल्ड पर गीतों का सिलसिला रहेगा जारी। लेकिन अचानक से कुछ बातें हैं जो जहन में घूमने लग गई हैं। क्यों कई बार ऐसा होता है कि इम्प्रेशन से लेकर डिप्रेशन तक, रिलेशनशिप से लेकर अकेलेपन तक, चैटिंग से लेकर ब्लॉक लिस्ट तक, और फिर समझ आ जाती है एक वो बात, कौन सी? ना जिक्र कर ना फिकर कर, बस अपने जज्बातों की कदर कर। जो तेरा होगा वो तुझे ढूंढ ही लेगा, बस तू अपनी बारी का सबर रख। कई बार ऐसा लगता है ना दोस्तों, कि जिंदगी भर हमने कईयों के पीछे भागा, चाहे वो इंसान हो, जज्बात हो या कोई चीज हो, अंततः समझ में यही आ जाता है कि वो अपने तक तभी आएगी जब उसका सही समय आ जाता है। तो मैं तो आपसे बस यही कह रही थी कि जब किसी का सही समय आएगा तो ही वो गीत आप तक पहुंच पाएगा। तो ठीक है, अब रात सुरमई कार्यक्रम को हमें समेटने से पहले एक ये आखिरी नगमा आपके साथ साझा करना चाह रही हूँ। फिल्म अशोका से लिया ये गीत हमने अलका याग्निक की आवाज़ में, बोल सजाए गुलजार ने, और म्यूजिक दिया अनु मलिक का।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए

0: अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। एयर इंडिया ने कहा है कि विशाखापत्तनम आने और जाने वाली उसकी सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। इसके लिए मौजूदा एयरपोर्ट कोड VTZ का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में एयर इंडिया ने बताया कि भोगपुरम और दिल्ली के बीच हर हफ्ते 14 उड़ानें होंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरा मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। कल इस प्रतिमा की आधारशिला रखी गई। इंदौर नगर निगम लगभग 1,97,00,000 रुपए की लागत से ये प्रतिमा और उसका चबूतरा बनवा रहा है। ये प्रतिमा गन मेटल से बनाई जाएगी और इसके लगभग चार महीने में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। ये जगह लोगों को देश के प्रति अटल बिहारी वाजपेयी की सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाएगी। विश्व कप में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। वहीं कल भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan yesterday after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Air India has announced that all its flights to and from Vishakhapatnam will operate from the new Alluri Sitarama Raja International Airport at Bhogapuram from today, using the existing airport code VTZ. In a press release, Air India informed that the airline will continue to operate 14 weekly flights from between Bhogapuram and Delhi, providing convenient connectivity to major domestic and international destinations through its hubs. Spread over 77,342 square meters, the new terminal offers enhanced passenger comfort and

3:56 हुए हैं दोस्तों। इस समय आपने ट्यून किया है FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम हमराही। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कहते हैं बारिश की पहली फुहार, मिट्टी की सौंधी खुशबू और खिड़की पर टप टप गिरती बूंदे। सावन का मौसम आते ही जैसे दिल भी कोई मीठी सी धुन गुनगुनाने लगता है। कहते हैं

ना, बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि ये तो पुराने एहसासों को भी जगा देती है, कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी अधूरे ख्वाब की तरह, और कभी बस चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनकर। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को अपने सुर में समेटे हैं फिल्म अनजाना का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

कभी कभी बारिश सिर्फ मौसम नहीं होती, वो अपने साथ कुछ अधूरी सी यादें, कुछ अनकहे एहसास और दिल को छूने वाली एक नर्म सी कहानी लेकर भी आती है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का। ये एक ऐसा गीत है जिसमें एहसास जगाता है बारिश की बूंदों के बीच। जब दो दिल करीब आते हैं तो लगता है जैसे प्रकृति भी उनकी मोहब्बत की गवाह बन गई हो। इस गीत में बारिश है, रोमांस है और एक ऐसी मासूमियत है जो आज भी सुनने वाले के मन को भिगो देती है। कभी खिड़की पर गिरती बूंदों को देखते हुए, कभी किसी पुरानी याद में खोए हुए, ये गीत हमें उस खूबसूरत एहसास तक ले जाता है जहाँ शब्द कम और भावनाएं ज्यादा होती हैं।

कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का ये प्यारा सा गीत। दोस्तों, काले बादल जब आसमान पर छाते हैं तो मौसम ही नहीं बदलता बल्कि दिल का मिजाज भी बदल जाता है। कभी ये बादल किसी पुरानी याद को साथ ले जाते हैं तो कभी आने वाले खूबसूरत पलों की उम्मीद जगा देते हैं। बारिश की बूंदों में एक अजीब सी मिठास होती है, जैसे प्रकृति धीरे से कह रही हो कि इंतजार कितना भी लंबा क्यों ना हो, एक दिन खुशियों की फुहार जरूर बरसेगी। और जब ऐसे मौसम में कोई प्यारा सा गीत गानों तक पहुंचे तो यकीन मानिए ये सफर और भी सुहाना हो जाता है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं अनजाने फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है सुरेश वाडेकर और साधना सरगम ने।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही मन किसी खूबसूरत सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म पहेली का, जिसमें एक प्यारा सा लोक रंग छुपा हुआ है। प्रेम और प्रकृति की खूबसूरती एक साथ घुली हुई महसूस होती है। तो आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर और हेमलता की आवाज़ों में फिल्म पहेली का ये प्यारा सा गीत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: तीन बजकर 34 मिनट और 20 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। तो दोस्तों, मौसम के बारे में और बारिश के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, अब कुछ अलग बात करते हैं। कभी किसी की एक मुस्कान दिल को रोक लेती है, कभी कोई अंदाज बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाता है, और फिर दिल है कि मानता ही नहीं। हाँ दोस्तों, हम आपको सुनवा रहे हैं इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत, जहाँ शिकायतें भी प्यारी लगती हैं और किसी की अदाएं दिल की धड़कनों को और भी तेज कर देती है। इस गीत में मोहब्बत का वो खूबसूरत अंदाज है जिसमें थोड़ी शरारत है, थोड़ी झिझक है और बहुत सारी अनकही बातें हैं। रिश्तों में भी यही छोटी छोटी अदाएं तो यादें बन जाती हैं, कभी मुस्कुराने की वजह तो कभी दिल को गुदगुदाने वाला एहसास। तो आइए सुनते हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत, आवाज़ें कुमार सानू और अनुराधा पौड़वाल की।

दोस्तों, कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो हर किसी की जिंदगी में पूरी नहीं होती, और कुछ रिश्ते, कुछ पल, कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जिनकी कीमत हमें उनके खोने के पास समझ आती है। अब जो गीत आप सुन रहे हैं, इसी खूबसूरत सच को बयां करता हुआ ये गीत है, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन सच्चा प्यार और किसी का सच्चा साथ, ये हर किसी के हिस्से में

इंतज़ार, ये भी मोहब्बत का एक खूबसूरत हिस्सा है। जब किसी अपने के आने की उम्मीद दिल में होती है तो वक्त की हर घड़ी जैसे उसी एक पल का इंतज़ार करने लगती है। शायद रिश्तों की खूबसूरती भी इसी में है कि किसी का साथ मिलने से के पहले भी और उसकी उम्मीद दिल को खुश रखती है, और जब इंतज़ार ख़त्म होता है तो वही पल सबसे खास बन जाता है। तो आइए उम्मीद और इंतज़ार की इसी मीठी सी कहानी को महसूस करते हुए सुनते हैं फिल्म दीवाना का ये खूबसूरत गीत, जिसे आवाज़ दी है कुमार सानू और साधना सरगम ने।

दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंत में बस हम यही कहना चाहेंगे कि कभी कभी जिंदगी में किसी एक इंसान का मिल जाना जैसे पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दे देता है। मुश्किलें वही रहती हैं, रास्ते वही होते हैं, लेकिन उन्हें देखने का नज़रिया बदल जाता है। किसी का साथ मिल जाए तो लगता है जैसे उदासी के बीच भी मुस्कुराने की वजह मिल गई हो, जैसे अकेलेपन के बीच कोई अपना हाथ थामने आ गया हो। रिश्तों की असली खूबसूरती शायद यही है, कोई आपकी जिंदगी की हर परेशानी खत्म भले ही ना कर सके, लेकिन उसका साथ आपको हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दे डाल सकता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं हंसते जख्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों, अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए

0: दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ कल नेपाल के 3 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना हुए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ आज टुंडीखेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। वे नेपाली सेना प्रमुख के साथ बातचीत करेंगे और नेपाली सेना के सैन्य संचालन के महानिदेशक उन्हें आपसी हित के मुद्दों पर जानकारी देंगे। भारत कल नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। आज इस सिलसिले में पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिश के अंतर्गत अमरीकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कल हमास के प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की। कुशनर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 साल बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होगी। विश्व कप में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan yesterday after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, will confer the National Anubhav Awards 2026 in New Delhi today. The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions said the event will also feature the release of the handbook on Pension Mitra and guidelines for the Nationwide Digital Life Certificate, DLC, Campaign 5. It also said that a bank exhibition will also be organized as part of the program, where 17 pension disbursing banks will showcase their products and services designed for the retiring employees. Air India has announced that all its flights to and from Visakhapatnam will operate from the new Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram from today, using the existing airport code VTZ. In a press release, Air India informed that the airline will continue to operate 14 weekly flights between Bhogapuram and Delhi, providing convenient connectivity to major domestic and international destinations through its hubs. Spread over 77,342 square meters, the new terminal offers enhanced passenger comfort and operational efficiency. More than 200 students from Indian schools in Muscat visited Indian naval ship INS Imphal, the indigenously built Indian warship at Sultan Qaboos Airport in the Omani state capital, the Indian embassy in Oman said. Earlier, the Indian Navy said that the country's maritime presence was reflected with Indian naval ships at various ports overseas, including Muscat, Ponta Delgada and Djibouti, on India's Independence Day. INS Imphal, a Vishakhapatnam-class destroyer, flew the tricolour in Oman during the port call at Muscat. India's ambassador to Oman, Prashant Pisay, visited the warship and congratulated the crew on the occasion. U.S. negotiator and President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner, held a rare meeting with the Hamas chief yesterday in a new diplomatic effort to make progress in the stalled Gaza ceasefire. Kushner will meet with Israel's PM today. The talk aims to salvage the new 15-point U.S.-backed roadmap for Hamas to disarm in Gaza and Israel to withdraw from the Palestinian territory shattered by war. A meeting between Kushner, fellow envoy Steve Witkoff, and Hamas leaders in Egypt last year helped clinch the ceasefire, whose progress until now had been stalled over the key issue of Hamas's disarmament. India Meteorological Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha for today. Similar conditions are also expected over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Eastern Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Uttarakhand for the next 24 hours. The Met Department said that heavy rainfall is expected over Assam, Meghalaya, Bihar, Haryana, Chandigarh and Delhi for today. The BWF Badminton World Championship is set to begin at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi today. India is hosting the World Championships after 17 years. Shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen, Ayush Shetty, Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty, Three Sajoli and Gayatri Gopichand will be leading the charge for the Indian contingent. The Indian men's hockey team will look to build on its winning start to the FIH Hockey World Cup 2026 when it takes on England in its second Pool D match at the Wagner Hockey Stadium in Amstelveen in Netherlands today. India began its campaign with a 3-1 win over Wales, while England also made a strong start by defeating Pakistan 4-1. With both teams looking for another victory, today's clash could play a key role in deciding which side finishes on top of Pool D. A win for either side would strengthen its position in Pool D. And that is the end of this news bulletin.

4:10 हुए हैं। आकाशवाणी का दिल्ली FM गोल्ड 100.1 MHz पर। दोस्तों आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम अरुणिमा। और एक बार फिर से हूँ आपके साथ मैं, आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जिंदगी की राह पर चलते हुए एक बात हमेशा याद रखिए, रास्ते कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, कदम संभाल कर रखना ज़रूरी है, क्योंकि मंजिल सिर्फ तेज चलने वालों को नहीं बल्कि सही दिशा में चलने वालों को ही मिलती है। कभी रास्ते में ठोकर मिले तो रुकिए मत, उससे सीखिए। कभी कोई आपको पीछे खींचे तो अपनी रफ्तार मत भूलिए। और जब रास्ता मुश्किल लगे तो खुद से बस इतना कहिए, मैं गिर सकता हूँ लेकिन रुकूंगा नहीं। जिंदगी भी तो यही कहती है कि आंखें खुली रखो, दिल मजबूत रखो और हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ, क्योंकि सफर लंबा है और मंजिल आपकी अपनी है।

दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

दोस्तों, जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा लगता है कि हम जैसे बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान के साथ एक ऐसा साथी हमेशा रहता है जो कभी उसका हाथ नहीं छोड़ता उसका, और वो है उसका अपना हौसला। जब रास्ते मुश्किल हों, जब अपने भी साथ नजर ना आए, तब अपने भीतर की आवाज़ को सुनिए। वही आवाज़ आपको याद दिलाती है कि आपने अब तक कितनी मुश्किलें पार की हैं। हर अंधेरे रास्ते में आपकी उम्मीद आपका साया बनकर आपके साथ चलती है। बस ज़रूरत है खुद पर भरोसा रखने की। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म मेरा साया में।

जिंदगी सचमुच एक खेल है, कभी जीत हमारे कदम चूमती है तो कभी हार हमें कुछ ऐसा सिखा जाती है जो कोई किताब भी नहीं सिखा सकती। इस खेल में हर किसी की अपनी पारी है, अपने उतार चढ़ाव हैं, कभी रास्ते आसान लगते हैं तो कभी मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है। लेकिन याद रखिए, खेल वही जीतता है जो मुश्किल चाल देखकर मैदान छोड़ता नहीं बल्कि अगली चाल सोचता है। तो अगर आज हालात आपके मुताबिक नहीं हैं तो मायूस मत होइए, क्योंकि जिंदगी का खेल अभी बाकी है, आपकी कहानी अभी बाकी है।

दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ किसी एक इंसान से जुड़ने का ही नाम नहीं, बल्कि प्यार तो उस एहसास का नाम है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। जब दिल में प्यार होता है तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं, रास्ते आसान नहीं तो कम से कम हौसले वाले ज़रूर लगते हैं। इसलिए अपने दिल में प्यार बचा कर रखिए, अपने सपनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए और सबसे ज़्यादा अपने उस सफ़र के लिए जो आपको हर दिन थोड़ा और मज़बूत बना देता है। क्योंकि जिस दिल में प्यार और उम्मीद जिंदा हो, उसे ज़िंदगी की कोई भी चुनौती लंबे समय तक नहीं रोक सकती।

4:34 हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ और चैनल वही है आपका आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वक्त कभी रुकता नहीं और जीवन के दिन सचमुच छोटे होते जाते हैं, तो शिकायतों में दिन क्यों गंवाना। जब जो कहना है आपको वो आज ही कह दीजिए, जिसे अपना मानते हैं उसे आज ही महसूस कराइए और जो सपना दिल में है उसके लिए आज ही एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि कल की गारंटी किसी के पास नहीं होती। जिंदगी छोटी हो सकती है मगर अगर आपका दिल बड़ा हो तो वही छोटी सी जिंदगी भी बहुत बड़ी कहानी बन जाती है।

दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हालात हमें पीछे हटने, लोगों से नज़रें चुराने और अपने सपनों को छुपा देने पर मजबूर कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी पहचान आपकी मुश्किलें नहीं बल्कि उनसे लड़ने का आपका हौसला है, आपका नज़रिया है। हर इंसान की कहानी में कुछ अधूरे पन्ने होते हैं, कुछ हार होती है, कुछ पछतावे भी, लेकिन कहानी खूबसूरत बनती है जब इंसान उन पन्नों को पलटकर आगे बढ़ना सीखता है। तो सिर उठाकर चलिए, क्योंकि ज़िंदगी छुपने के लिए नहीं, खुलकर जीने के लिए मिली है। और आपकी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि एक दिन पीछे मुड़कर देखे और कह सके, मैंने हालात से नहीं, अपने हौसले से अपनी पहचान बनाई है।

कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रिश्ते और ऐसे लोगों को का साथ देती है जिन्हें वक्त चाहे जितना आगे ले जाए, दिल उनसे दूर नहीं हो पाता। लेकिन किसी को याद रखना सिर्फ बीती हुई बातों में ठहर जाना नहीं है, बल्कि उनसे मिली सीख को अपनी जिंदगी में आगे लेकर चलना भी होता है। जिन लोगों ने हमारे सफर में हमारा साथ दिया, उनकी अच्छाइयों और उनकी बातों को दिल में संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, इंसान की असली पहचान उनके रिश्तों और उनकी एहसान से मिली होती है। जो गुजरे हुए कल को बोझ बनाते हैं वो हमेशा कठिनाइयों में रहते हैं, इसलिए गुजरे हुए कल को बोझ मत बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए। जिन्होंने आपका साथ थामा उन्हें याद रखिए और जो आज आपके साथ हैं उनकी कद्र कीजिए।

और चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे कि ज़िंदगी में कुछ मुलाकातें पल दो पल की होती हैं, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं। हर रिश्ता हमेशा के लिए हो ये ज़रूरी नहीं, ज़रूरी तो ये है कि जब तक आपका साथ हो उस पल को पूरी शिद्दत से जिया जाए। ज़िंदगी भी तो कुछ ऐसी ही होती है, आज जो समय हमारे पास है शायद वो समय कल ना हो, इसलिए बीते हुए कल को लेकर पछतावे के बजाय आज को मुस्कुराना सीखिए और आज मुस्कुराते रहिए। जो लोग आपकी ज़िंदगी में आए उन्होंने आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया, और जो चले गए उन्होंने आपको और मजबूत बनाया। तो इस पल को थाम लीजिए, अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए, दिल से कहिए जिंदगी लंबी हो या छोटी, खूबसूरत वही है जिसे हम पूरे दिल से जीते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे यानी अर्चना बिसारिया को आप अनुमति दीजिए, लेकिन आप सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। आज इस सिलसिले में पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में, वहीं वाणिज्य का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी

पाली में होगा। समाज शास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की अपनी योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए फिर से बुलाया है। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगा। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। इसमें 22 चेक इन काउंटर, 18 सेल्फ बैगेज ड्रॉप यूनिट, स्क्रीनिंग सिस्टम और आधुनिक सुविधाएं और 7 एरोब्रिज शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव कल खेल समाप्त होने के समय क्रीज पर थे। देवदत्त पड्डीकल अपना पहला टेस्ट शतक जड़कर 167 रन बनाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

5:10 हुए हैं। भोर स्वानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वाणी जयराम के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म गुड्डी से।

वाणी जयराम के गाए इस गीत के बाद आइए अब सुनवाते हैं आपको सरगम फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आपको सुनवाने जा रही हूँ उसे गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है सितारा।